सुप्रभात, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो वंदना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रभात। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में। और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज मंगलवार का दिन है और ये दिन होता है वीर हनुमान को समर्पित। भक्तगण सुबह सवेरे से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए चलने शुरू हो जाते हैं, आरती करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वीर हनुमान जी से वरदान मांगते हैं। पवनसुत हनुमान शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं और चतुर हैं। आइए हम सब उनका अनुसरण करें, उनके गुणगान गाएं, उनसे वर माने।

जिस रसना में राम नाम का जाप है, गुणगान है, व्याख्यान है, वो रचना अमृत के समान है। राम नाम का जाप पूरी तरीके से सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। श्री राम सबके दाता हैं, आइए उनका स्मरण करें।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।

हे अतुलित बल के धाम श्री राम दूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से इस पूरे संसार में जाने जाते हैं। हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करते हैं। आइए हम सब आपकी आरती करें।

वीर हनुमान जी की इस आरती के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे ए हरिहरन और संगीतकार सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सदियों पूर्व महाभारत का कालखंड वर्तमान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। राजनेताओं की स्तुति में लगे हुए बुद्धिजीवी सत्ता राज कृपा के अभिलाषी हैं। लेखक कवि विद्वान आदि समाज में आए दिन होने वाली घटनाओं के दमन, बलात्कार, अपहरण, छल कपट, घोटालों आदि को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। सरल मन, साधु स्वभाव, ज्ञानी जन की मन स्थिति बहुत कुछ अवश्य है। भीष्म और द्रोण की तरह यही तो महाभारत के कालखंड और वर्तमान की समानता है। महाभारत का कालखंड बहुत कुछ वर्तमान जैसी घटनाओं और ऐसे ही चरित्रों से भरा पड़ा है। दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसे शाश्वत ग्रंथ को पूजा और चर्चा की वस्तु बनाकर छोड़ दिया है और कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया है। यदि ऐसा किया होता तो हम भारतवासी वर्तमान के नारकीय जीवन की रचना न होने देते, पर ऐसा नहीं हो सका। आज स्थिति ये है कि मूल्यों के अवमूल्यन और विश्रंखलन की स्थिति वही है जो उस कालखंड में थी। व्यासकृत महाभारत के सभी सत्य वर्तमान में हमें भोगने पड़ रहे हैं। अवश्य मानसिकता वाले भीष्म और द्रोण की ओर संकेत हम कर चुके हैं। हमारे बीच कर्ण भी है जो समाज में अपने वांछित अधिकार पाने के लिए छटपटा रहे हैं, और वो व्यवस्था भी है जो कर्ण जैसे योग्य और क्षमता संपन्न व्यक्तियों को कुंठाग्रस्त करके उसे नाश का मोहरा बना सकती है। महाभिमानी और शक्ति मदांध दुर्योधनों के दर्शन पग पग पर होते हैं। आदि अंतर केवल इतना है, तब कृष्ण मौजूद थे और अब कृष्ण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, और उन्हें यदा यदा ही धर्मस्य वाले उनके संकल्प की याद दिला रहे हैं। तब अर्जुन मौजूद थे जिनके गांडीव की टंकार अधर्म के नाश का संदेश सुनाती थी। वर्तमान के मनुष्य में वो मानव विद्यमान है जो हर कालखंड में लिप्सा, घृणा, स्वार्थ, संवेदना, ममता, क्रोध, षड्यंत्र, लोभ आदि में निमग्न रहा है, जो मनुष्य की मूल वृत्तियां हैं और जिनसे उनके विलग होने की संभावनाएं प्रायः नहीं के बराबर हैं। दुर्भाग्य ये है कि मूल्यों की अवहेलना उन्हीं के हाथों हो रही है जिनके पूर्वजों ने कुछ पीढ़ियों पूर्व उनकी व्यवस्था दी थी। अधिक दूर क्यों जाएं? आज से 60-70 वर्ष पूर्व ही हमारे देश में एक नहीं अनेक अर्जुन थे जो मूल्यों की रक्षा करने और उनकी पुनर्स्थापना के लिए तन मन धन से कटिबद्ध थे।
0: ये था हमारा आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। काव्यधारा में लीजिए सुनिए श्री यशपाल का ये काव्य पाठ।
2: मत अवाक हो, देखो मेरे जीवन की पुस्तक। मत अवाक हो, देखो मेरे जीवन की पुस्तक। आंसू आंसू पृष्ठों पर छिटकी हैं मुस्काने। मत अवाक हो, देखो मेरे जीवन की पुस्तक। मत खोलो मत खोलो इसको, कितनी बार कहा। इन भीगे पन्नों में कुछ भी पढ़ना मुश्किल है। वर्तमान की छत से टपक रहा हूँ अतीत टप टप। वर्तमान की छत से टपक रहा हूँ अतीत टप टप। आंखें सावन सांसें खुटी खुटी मन पोचिल है। दूर दूर तक पसराओ अंधियारा ही अंधियारा। जाने कब से बैठे हैं, कितने दुख सिराने। मत अवाक हो, देखो मेरे जीवन की पुस्तक, भीतर भीतर विवलता का एक समंदर है, बाहर एक सधी सी मर्यादित जीवन रेखा।

रहे बांटते जीवन भर केवल विधि का लेखा। रोज द्वार पर होती नई

जाने मत अवाक हो, देखो मेरे जीवन की पुस्तक। चुप्पी से जीवन के सारे सुरले बदल गए, धीरे धीरे बदल गई सूरत हर रिश्ते की। अपनी

देखते किसी फरिश्ते की, यही सोच फिर खड़े हो गए संकल्पित होकर। अब जो भी हो जाए मैं जानू या वो जाने, मत अवाक हो देखो मेरे जीवन की पुस्तक, आंसू आंसू पृष्ठों पर छिटकी है मुस्काने, मत अवाक हो देखो मेरे जीवन की पुस्तक। अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी कैसी मिली अजीब जिंदगी, अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी कैसी मिली अजीब जिंदगी, अव्यवस्थित है सारी चीजें बिल्कुल बेतरतीब जिंदगी, अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी छोटी छोटी सी इच्छाएं, चलो अभी आले में रख लें बिगड़ा सारा स्वाद, चलो अब जरा जरा सी खुशियां चख लें, चाहे जो भी करे बचा लें रिश्तों की अनमोल धरोहर, चाहे जो भी करे बचा लें रिश्तों की अनमोल धरोहर, चीस चबक में पुलटस बांधे यानी नक्शा फाया रख लें, लगे सभी को अपनी सी बस ऐसी रख तहजीब जिंदगी, अव्यवस्थित है सारी चीजें बिल्कुल बेतरतीब जिंदगी, अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी जहां दर्द हो जहां पीर हो वहीं वहीं सुख का तड़का दें, मायूसी हो जहां घुटन हो जरा मुस्कुराहट छिड़का दें, एक सांस कोयल की कुकु एक चम्मच चिड़िया की चींची, एक सांस कोयल की कुकु एक चम्मच चिड़िया की चींची, एक शरारत एक चुहल एक कुलिया में भर कर लुढ़का दें, हंसी खुशी से कटे हर एक पल लगा कोई तरकीब जिंदगी, अव्यवस्थित है सारी चीजें बिल्कुल बेतरतीब जिंदगी, अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी सभी सुखों को स्टैचू करके, आओ चलो मूंद लें आके जकड़े रहे अभी तक जिनमें, चलो तोड़ दें सभी सलाखें फुला फुला कर गालों को, पट पट पट पट फोड़े गुब्बारे फुला फुला कर गालों को, पट पट पट पट फोड़े गुब्बारे लुलु लुलु करके चलो गुदगुदा दे फिर किसी फूल की पाके, हो ऐसा ताबीज कोई हो ऐसा ताबीज कोई बन जाए खूब हबीब जिंदगी, अव्यवस्थित है सारी चीजें बिल्कुल बेतरतीब जिंदगी, अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी कैसी मिली अजीब जिंदगी, अव्यवस्थित है सारी चीजें बिल्कुल बेतरतीब जिंदगी, अस्त व्यस्त कुछ बिखरी बिखरी। ये क्या फिर से वही पुराने पन्ने लेकर बैठ गए तुम, ये क्या फिर से वही पुराने पन्ने लेकर बैठ गए तुम, मेरे जीवन की किताब में कुछ उजले पन्ने भी तो हैं, ये क्या फिर से वही पन्ने पन्ने लेकर बैठ गए तुम, कभी नहीं क्या मन करता हर पल मुस्कानों का उत्सव हो, पहले से कुछ अलग अलग सा कुछ सरसाया सा अनुभव, जहां जहां से छीज गए
बस वही खोल कर बैठ गए तुम जहां जहां से छीज गए, बस वही खोल कर बैठ गए तुम मेरे जीवन की किताब में, खिले खिले पन्ने भी तो हैं। ये क्या हुँ? फिर से वही पुराने पन्ने लेकर बैठ गए तुम। सबकी अपनी अपनी दुनिया, बस अपनी अपनी मंजिल है, सिमटे रिश्तों की पगडंडी पर चलना कितना मुश्किल है। फिर भी

0: तुम मेरे जीवन की किताब में, प्रीत पगे पन्ने भी तो है। ये क्या फिर से वही पुराने पन्ने लेकर बैठ गए तुम, दुख को चिंदी चिंदी करके एक बार मन से बिसरा दो। आसपास कुछ सुखद पलों को पखरी पखरी कर बिखरा दो। क्यों आंखें नम करने वाली यादें लेकर बैठ गए तुम, मेरे जीवन की किताब में खुशबू के पन्ने भी तो हैं। ये क्या फिर से वही पुराने पन्ने लेकर बैठ गए तुम।
1: काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे श्री यशपाल का ये काव्य पाठ।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरान्तं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आन्ध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रिय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47,000,000-वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रिय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबंगस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन, अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000,000-वर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000,000-वर्षस्य फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000,000-वर्षस्य ICC महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं।

0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणी श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है जीवन शैली से संबंधित रोग।
2: लाइफस्टाइल का मतलब है कि जो हमने अपनी लाइफ में चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं, इनकॉर्पोरेट करने का मतलब अपनी लाइफ में हमने उनको ले आए हैं, जैसे टोबैको है, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल है। हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, आमतौर पे हमारे नींद कम होती है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत खाते हैं, शराब का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और यही बीमारियां आगे चल के नंबर 1 किलर बनने वाली हैं दुनिया में। सबसे पहली बीमारी है मोटापा। मोटापे को आमतौर पर लोग बीमारी नहीं मानते हैं, लेकिन मोटापा ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो जीवन शैली से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे प्रमुख हैं ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप, दूसरी चीज डायबिटीज है, तीसरी चीज दिल के दौरे हैं या दिल की बीमारियां हैं, चौथी चीज दिमाग की परेशानियां हैं जैसे फालिज के असर होते हैं, और कैंसर है। और अभी जो हम लोग के अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, कि हम लोग सब, हर आदमी मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल से रिलेटेड भी काफी सारी परेशानियां हैं, जैसे नए तरीके कैंसर उभर उभर के आ रहे हैं। जंक फूड का मेन जो परेशानी होती जंक फूड से, वो कैलोरी रिच होती हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती है, वो सिर्फ हमको एनर्जी देती है, वो एनर्जी हमारे अंदर शरीर पूरी की पूरी वैसी की वैसी ले लेता है, और उसका जो मेन जो परेशानी होती है उससे, वो होता है हमारा मोटापा बढ़ना। और मोटापा ही, जैसे मैंने बताया, हर बीमारी की जड़ है। प्रदूषण कई तरीके का होता है, जैसे हवा का प्रदूषण है, जैसे आवाज का या नॉइज पोल्यूशन है, और खाने में हमारे एडल्ट्रेशन बहुत है, और पानी का प्रदूषण है, तो इनसे बीमारियां बहुत होती है। जैसे मेनली हवा के प्रदूषण से सांस से रिलेटेड बहुत बीमारियां होती हैं, जिसमें खांसी भी आती है, जिसमें आप दमा भी शामिल कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इरिवर्सिबल होती है, जिनमें हम मरीज को वापस नहीं ला सकते नॉर्मल स्थिति तक की, उनको हम इंटरस्टीशियल लंग डिजीजेस कहते हैं। और उसके अलावा पानी के प्रदूषण से बहुत तरीके की बीमारियां, जैसे पेट की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, और कई तरीके के इन्फेक्शन भी होते हैं। नॉइज पोल्यूशन से आदमी बहरा हो सकता है, कई तरीके के कैंसर देखे गए हैं कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से होते हैं। साथ ही साथ रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, इतने मोबाइल टावर्स हर जगह लगे हुए हैं, लोगों के सर में दर्द रहती है जो उन मोबाइल टावर्स के आसपास रहते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं, और साथ ही साथ उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही साथ कई नए तरीके के दिमागी कैंसर भी उभर के आ रहे हैं, जो कि इन मोबाइल टावर्स की देन है। इनको रोकने के लिए अपनी जीवन पद्धति को हमें बदलना होगा, हमें वापस अपने पुरखों की तरफ जाना होगा, कि जैसे वो हेल्दी फूड खाते थे, सलाद का ज्यादा उपयोग करते थे, नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। हम अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना कर लें जो रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए तेज चाल से पैदल चलें। उससे ही काफी बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। और एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिसमें ये प्रूव किया गया है कि अगर हम ठीक खाना खाएं और ठीक ठाक एक्सरसाइज करें, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस करें, तो कैंसर्स का और दिल की बीमारियों का, दिमाग की बीमारियों का प्रचलन जो है वो करीब करीब 30-40% घटा सकते हैं। तनाव के कारण सबसे जो पहली बीमारी मैं कहूंगा वो दिल से रिलेटेड है। दिल का दौरा पड़ना, फालिज का असर होना, ये तनाव इनका एक मुख्य कारण है। साथ ही साथ तनाव के साथ कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी होने लगती, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परफॉर्म बहुत अच्छा करना है, बहुत पैसा कमाना है, टाइम बहुत लिमिटेड है जिसमें काम करना है, तो इससे तनाव बहुत ज्यादा पैदा होता है, और उस वजह से आदमी खाना पीना भूल जाता है, एक्सरसाइज भूल जाता है, नींद उसको कम आती है, और धीमे धीमे करके मनोरोग

0: इस ई है जो लिवर को खराब कर सकते हैं, आदमी की जान भी जा सकती है। जी हाँ, शराब के ऊपर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज की जीवन शैली का एक एक अंग बन गया है शराब। कोई भी चीज कम मात्रा में, मॉडरेट अमाउंट्स में की जाए तो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन शराब क्योंकि हमारी जीवन पद्धति का एक अंग बन गया है तो लोग शराब ज्यादा पीने लगे, उनके लिवर में खराबी होने लगी है, लिवर के कैंसर तक ये हो जाते हैं, पेट के कैंसर हो सकते हैं, खाने की नली के कैंसर हो सकते हैं, और कुछ हमारे अंग हैं जैसे पैंक्रियाज है जिससे डायबिटीज हो जाती है उसकी खराबी की वजह से, वो पैंक्रियाज भी डैमेज हो सकता है, उसका कैंसर भी हो सकता है शराब से।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था जीवन शैली से संबंधित रोग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, पोषक तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण विषय पर यह जानकारी।
2: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है फसलों में पोषक तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका सीधा संबंध फसल उत्पादन और गुणवत्ता से है। किसान भाइयों, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है, उसी प्रकार फसलों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यदि किसी भी आवश्यक तत्व की कमी हो जाए तो फसल की बढ़वार प्रभावित होती है और उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधों की हरी वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। ये पत्तियों में हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी होने पर पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं और बौने दिखाई देने लगते हैं और वृद्धि उनकी रुक जाती है। अब बात करते हैं फास्फोरस की। ये जड़ों के विकास, फूल और फल बनने और ऊर्जा संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस की कमी होने पर पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, जड़ें कमजोर रह जाती हैं और पत्तियों पर गहरा हरा या बैंगनी रंग दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, अगर पोटाश या पोटेशियम की बात की जाए तो ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर पत्तियों के किनारे पीले होकर बाद में भूरे और सूखे दिखाई देते हैं। इसे लीफ स्कॉर्चिंग भी कहा जाता है। किसान भाइयों, कैल्शियम भी पौधों की नई कोशिकाओं और निर्माण और जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर नई पत्तियां विकृत हो जाती हैं और पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। इसकी कमी सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देती है। पत्तियों की नसें हरी रहती हैं जबकि उनके बीच का भाग पीला पड़ जाता है। सल्फर प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर नई पत्तियां हल्की पीली दिखाई देती हैं और पौधों की वृद्धि कमजोर हो जाती है। कई बार इसके लक्षण नाइट्रोजन की कमी जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन सल्फर की कमी पहले नई पत्तियों में दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है लेकिन इनका जो महत्व है वो अधिक है। जिंक यानी जस्ता की कमी भारत की कृषि भूमि में सामान्य रूप से पाई जाती है। इसकी कमी होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। लौह तत्व अर्थात आयरन की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जबकि उनकी नसें हरी बनी रहती हैं। इसे आयरन क्लोरोसिस कहा जाता है। किसान भाइयों, बोरॉन फूल और फल बनने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से फूल और फल झड़ने लगते हैं और नई बढ़वार प्रभावित होती है। इसी प्रकार मैग्नीज और कॉपर की कमी भी पत्तियों के रंग और वृद्धि को प्रभावित करती है। वहीं मॉलिब्डेनम की कमी से नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता घट जाती है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्वों की कमी की सही पहचान करना बहुत जरूरी है। कई बार रोग और पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए खेत की मिट्टी की नियमित जांच कराना सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। संतुलित उर्वरक प्रबंधन के लिए जैविक खाद, गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद और रासायनिक उर्वरक

0: को का समन्वित उपयोग करें। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही हमें उनका छिड़काव या प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम तो यही कहेंगे कि स्वस्थ फसल के लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। यदि हम समय रहते पोषक तत्वों की कमी को पहचान लें और उचित प्रबंधन करें तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनाई जा सकती है। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था पोषक तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो जिले की हलचल सवेरे 9:15 पर और राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण में आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति आज रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 9:30 पर मुलाकात क्रम में, जी हां मुलाकात क्रम में, सुनिएगा डॉक्टर पीके सिंह से शोभित शर्मा की भेंट वार्ता। और श्रोताओं, एक जानकारी आपको मैं और दे दूं कार्यक्रम के जरिए कि आज से यानी कि 9 जून 2026 से आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे 10:00 से प्रसारित किया जाएगा और ये कार्यक्रम पूरे 1 घंटे तक रहेगा, यानी 10:00 से 11:00 तक। तो जुड़ना ना भूलिएगा हमसे उस ही वक्त, यानी 10:00 से 11:00। इसके अलावा महिला जगत में दिन में 1:15 पर दीपा शर्मा का कहानी पाठ मौन प्रेम की ताकत प्रसारित किया जाएगा। धरती गाती है कार्यक्रम में सवेरे 9:25 पर प्रेमलता के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर केशव अनुरागी के गाए गढ़वाली लोकगीत। और सुगम संगीत में शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें। तो सुनना ना भूलिएगा आज के ये सभी कार्यक्रम। और अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: से आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।

0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
4: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
5: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
6: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
7: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
8: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित

0: कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
1: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
2: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य

श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी सुधीर श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। मंगलवार की एक नई सुबह में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साथ ही साथ उनके सुख समृद्ध और स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना भी करते हैं। भाई, आज के सूरज के साथ साथ के अंक में क्या क्या रहेगा जरा एक बार मैं आपको बता दूं, तो हम आपको जानकारी देंगे विश्व प्रत्यायन दिवस की। इसके अलावा बात करेंगे रिकॉर्डों के महत्व की, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस भी है तो उसी के संदर्भ में बात की जाएगी। अच्छा, दो फिल्मी सफर की बात आज हम आपसे करेंगे। पहली रहेंगी हमारी अभिनेत्री सोनम कपूर और अमीषा पटेल। इसके अलावा प्रमुख घटनाएं भी हम आपसे शेयर करेंगे और कुछ अखबारों की सुर्खियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस की, जिसे हम आज मना रहे हैं। ये बहुत ही खास दिवस है जिसका नाम है विश्व प्रत्यायन दिवस, और ये हर साल की 9 जून को मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रत्यायन होता क्या है, तो बिल्कुल बताएंगे आपको। तो इस शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, यानी व्यापार और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो प्रत्यायन का अर्थ किसी संस्था, उत्पाद या व्यक्ति को उसकी गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता के आधार पर प्राप्त आधिकारिक मान्यता या उसके प्रमाण पत्र से है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा शुरू की गई थी। हम आपको इसके साथ ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे देश भारत में ये दिवस क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है।

तथा इस दिवस यानी विश्व प्रत्यायन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विश्व में दी जाने वाली उत्पाद सेवाएं और प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं या नहीं, क्योंकि अनेक उत्पादों का इस्तेमाल विश्व भर के उपभोक्ता करते हैं और ये उत्पाद सभी मानकों पर खरे उतरने चाहिए ताकि किसी को कोई हानि ना हो। तो ये बात हुई विश्व प्रत्यायन दिवस की। और आज 9 जून है, आज हम मना रहे हैं भारतीय अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्मदिन। तो सबसे पहले उन्हें उनके जन्मदिन की आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि इनका जन्म महाराष्ट्र में मुंबई शहर में 9 जून 1985 को हुआ। आप अभिनेत्री अनिल कपूर की बेटी और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर की पोती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़ाई की। बात अगर उनके फिल्मी करियर की करें तो उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ एक सहायक के रूप में काम किया और उनकी फिल्म ब्लैक में सहायता प्रदान की। लेकिन उसके बाद 2007 में सांवरिया फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अभिनय किया और उसके बाद सोनम ने सन 2009 में अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म दिल्ली 6 में भी काम किया। इस फिल्म में उन्हें काफी सराहा गया। उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स, भाग मिल्खा भाग, रांझणा, प्रेम रतन धायो पायो, नीरजा, पैडमैन, संजू आदि जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। उन्हें उनके काम के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, स्टार डस्ट जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे आज भी कई और फिल्मों में काम कर रही हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं मनोज वर्मा। एक बार फिर हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस मानव जीवन में रिकॉर्ड्स या अभिलेखों का बहुत गहरा महत्व माना गया है। ये रिकॉर्ड्स व्यक्तिगत तौर पर डायरी, फोटोग्राफी के जरिए यादों को सहेजना हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देते हैं। तो वहीं कानूनी और प्रशासनिक तौर पर जन्म, विवाह, मृत्यु, जमीन जायदाद, राशन कार्ड, पासबुक, शिक्षा आदि जीवन में काम आने वाले अभिलेख हमारी पहचान का आधार होते हैं, हमारा हिस्सा होते हैं। इसके अलावा दैनिक गतिविधियों का, खर्चों का रिकॉर्ड भी कई व्यक्ति रखते हैं, जिससे वे अपना सही मूल्यांकन भी कर सकते हैं, भी काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। दैनिक हिसाब रखना भी कई लोगों की आदत होती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड्स या अभिलेख का हम सबके जीवन में बहुत महत्व है, इस बात को हम भी मानते हैं। इन सब बातों के मद्देनजर ही हर साल की 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। अब हम सब समझ ही गए हैं कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अभिलेखों का संरक्षण करना और उनके प्रबंधन को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, आज के इस डिजिटल युग में किसी भी अभिलेख को हम एक क्लिक पर कहीं भी बैठे देख सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि भाई कहीं भी बैठे हों हम और किसी भी जगह अगर हमें कोई अभिलेख या डॉक्यूमेंट हमें देखना हो तो उसको देख सकते हैं। और आजकल तो डिजिटल दौर है, इसके अंदर एक आपने सुना होगा डिजी लॉकर, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हम रख सकते हैं। मार्कशीट हो गई, राशन कार्ड हो गए, आप उसमें अपलोड करेंगे तुरंत वो आपके पास में पूरा डेटा उसके साथ में आ जाएगा और सरकारी तौर पर वो मान्य होता है। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बार बार देखने से उनके नष्ट होने का भी खतरा होता है, यानी कागजी

जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी के लिए वो डिजिटल युग की बात करना चाह रहे हैं हम आपसे कि उसको सहेजने के लिए भी डिजिटल फॉर्म में उसको हम सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, और इससे उसके खतरा जो कम होने का है ना, जो खतरा होता है वो बहुत कम होता है। सदियों पुराने अभिलेखों को भी आधुनिक तकनीक से संरक्षित किया जा रहा है, जो बहुत आवश्यक है। आइए हम सब भी इसके प्रति जागरूक रहें और रिकॉर्ड्स के महत्व को समझे अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस के मौके पर। तो ये बात हुई रिकॉर्डों के महत्व के बारे में। और अब नजर डाल लेते हैं बीते वर्षों की 9 जून को हुई कुछ अहम घटनाओं की तरफ भी। तो 9 जून सन 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। हम आपको बता दें कि आप अपनी सादगी ईमानदारी के साथ साथ जय जवान जय किसान के प्रसिद्ध नारे के लिए प्रसिद्ध रहे, और उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में देश को विजय दिलाई थी। इसके अलावा 9 जून सन 2008 को भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा बोलते हैं इसको, AIFA पुरस्कार समारोह में भारतीय फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। 9 जून सन 1949 को भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म हुआ। उन्होंने सन 1972 में पुलिस सेवा ज्वाइन की। उनकी कार्यशैली सख्त रही, इसके साथ ही वे अपनी ईमानदारी और दूरदर्शिता के लिए क्रेन बेदी के नाम से भी मशहूर रहीं। उन्होंने तिहाड़ जेल सुधारों और पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में भी अहम योगदान दिया है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। 9 जून सन 1991 को हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक राज खोसला का निधन हुआ। तो वहीं प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली का निधन भी आज ही की तारीख को सन 1990 में हुआ। और हम आपको बता दें कि उन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। असद अपनी शायरी के चलते चलते धीरे धीरे असद भोपाली के नाम से मशहूर हो गए, और मात्र 28 साल की उम्र में ये गीतकार बनने के लिए बम्बई आ गए, और अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें पूरे जीवन बहुत संघर्ष करना किया। और इसके अलावा एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने गीतों को अंजाम दिया। एक गीत आपको हम सुनवाते हैं उन्हीं का लिखा हुआ।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और एक बार फिर हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। एक बात कह दें आपसे आगे बढ़ने से पहले अपने कार्यक्रमों के बारे में, तो भाई ये जो एक हम बात कहना वाले हैं आपसे, वो क्या बात रहेगी? वो बात ये रहेगी कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो है व्हाट्सएप पर आधारित और खतों पर आधारित, वो रहेगा आज से 10 बजे से शुरू, यानी कि 10 से 11 बजे तक इसका वक्त रहेगा, यानी पूरे एक घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा गीत तुम्हारे की हम आपसे बात कर रहे हैं। और अब क्या है कि कुछ सुर्खियों से भी आपको रूबरू करा दें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था लागू की है। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में 50% रियायती किराए पर लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम की पूर्व जानकारी किसानों की आमदनी बढ़ाने, आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि और अग्निवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों अहम सुर्खियां थी हिंदुस्तान से। बात अगर मैं करूं दैनिक जागरण में प्रकाशित होने वाली इन सुर्खियों की, तो परमाणु हथियारों की क्षमता के मामले में भारत ने पाकिस्तान पर बढ़त बना ली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को अब एक साल में सिर्फ और सिर्फ 4 सिलेंडर ही दिए जाएंगे। और अमर उजाला में प्रकाशित होने वाली इन सुर्खी की मैं बात करूं तो दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ दिन अटकने के बाद रफ्तार में है और 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद से अब तक ये 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गया है। अगले 3-4 दिनों के भीतर मानसून के उत्तरी बंगाल तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये अहम सुर्खियां थी और फिल्मी सफर रहा हमारा अभी। तो आइए अब हम आपसे बात करेंगे भारतीय अभिनेत्री और मॉडल के रूप में काम करने वाली अमीषा पटेल की, जिनका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें

आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इनका जन्म 9 जून सन 1976 को मुंबई में हुआ। उनके फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने सन 2000 में आई ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहो ना प्यार है से की थी। यहीं से उन्होंने इस फील्ड में शोहरत हासिल की। उसके बाद सन 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा, जो उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, में अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। उसके बाद क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे, हम राज, वादा, मंगल पांडे, द राइजिंग, तथास्तु, अनकही, भूल भुलैया, ओम शांति ओम, रेस 2 और गदर 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया, और हाल फिलहाल भी वे अनेक फिल्मों में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। एक बार फिर उन्हें उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, और चलते चलते उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और इस गर्मी के मौसम में अपना खास ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का, परिवार के सदस्यों का विशेष ख्याल रखें।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
7: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित

0: करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की।

0: इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर

0: की कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू दिल्ली टुडे। 5-day ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग।

जो हमने संजोया है ना, वो गीतकार असद भोपाली साहब के लिखे हुए कुछ गीतों से सजाया है। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। गीत एक से एक बढ़िया हैं और सुनने में अच्छे लगते हैं। तो कुछ नगमे हमने आपके लिए निकाले हैं उन्हीं के लिखे हुए, क्योंकि आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा उनको श्रद्धांजलि स्वरूप रहेगा। तो शुरुआत करते हैं उन्हीं के लिखे हुए इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर की।

0: रवि के बेहतरीन संगीत निर्देशन में असद भोपाली साहब का लिखा हुआ यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना वंदना फिल्म से। और अब ये संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार असद भोपाली साहब के लिखे हुए कुछ चुनिंदा गीत। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, असद भोपाली साहब का ही लिखा हुआ, और जब हम सुनेंगे ना तो इसमें हमें पता चलेगा कि जुदाई क्या होती है।

असद भोपाली साहब के इन शब्दों को अंजाम दिया मोहम्मद रफी साहब ने। फिल्म का नाम था एक सपेरा एक लुटेरा और इसके संगीतकार थे उषा खन्ना। एक संदेश, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: चंदन का एहसास।
1: गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम असद भोपाली साहब का लिखा हुआ अगला गीत आपको नजर करें, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को जो इस वक्त आकाशवाणी नजीबाबाद का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। तो आज यानी 9 जून 2026 से आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे प्रसारित किया जाएगा सवेरे 10 बजे से, और ये कार्यक्रम पूरा एक घंटे का रहेगा। भाई अभी हाल फिलहाल तक यानी बीते कल तक आप सुनते आ रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में सुहाना सफर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित किया गया और हमारे सभी श्रोताओं ने उसको बहुत पसंद किया। और 90 वर्ष हमारे आकाशवाणी को पूरे हो चुके हैं बीते कल, तो सभी श्रोताओं को मैं इस प्लेटफॉर्म से यानी आकाशवाणी नजीबाबाद के इस स्टूडियो से एक बार फिर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और सिलसिला वही रहेगा गोल्डन हिट्स कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। असद भोपाली साहब के लिखे हुए कुछ गीत हम आपकी नजर करना चाह रहे हैं और कर ही रहे हैं फिलहाल। इस वक्त मैं आपको सुनवा रहा हूं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में असद भोपाली साहब का लिखा हुआ ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा हुआ यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। फिल्म का नाम था रूप तेरा मस्ताना। पेश है गोल्डन हिट्स कार्यक्रम का अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में असद भोपाली के लिखे हुए इस गीत के साथ ही फिल्म का नाम रहा है इसमें पारस मणि। आज का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम जो असद भोपाली साहब पर आधारित था, संपन्न करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, आप सुन रहे थे गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
1: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की

0: मंत्री की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
1: मैं उपभोक्ताओं से ही आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
0: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 143,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहां जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, विधायक माधवेन प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर जीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहां PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और एक महीने पहले लापता हुई उनकी माँ लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिष्टीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रुपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायोमेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्टन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
3: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें एक माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने

0: अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए। प्रभावी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकारी उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास खंडों में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल में आज आपने सुनी हरदोई और ललितपुर जिलों की खबरें।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रेम लता के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

0: प्रेमलता की आवाज़ में आपने ये रुहेल खंडी लोकगीत सुना, और अब हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

प्रेमलता की आवाज में आपने ये रुहेलखंडी लोकगीत सुना। पेश है इन्हीं की आवाज में अगला रुहेलखंडी लोकगीत।

प्रेम लता के गाए इस रुहेलखंडी लोकगीत के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन दिव्यम कंडरवाल और इशिका कौशिक का।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम खंडवार।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: आज सुबह मैंने देखा कि एक ऑटो वाला भाई मोबाइल पर अपनी फोटो एडिट कर रहा था। पास ही खड़े कुछ कॉलेज के छात्र किसी एआई चैटबॉट पर अपने कॉलेज

0: की चर्चा कर रहे थे।
1: यही तो बात है दिव्यम, हम अक्सर सोचते हैं कि तकनीक सिर्फ दिल्ली, नोएडा या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन आज हमारा नशीबाबाद भी उस तकनीक की गाड़ी पर सवार है जिसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कहती है।
0: लेकिन श्रोताओं, सवाल यह है कि आखिर यह तकनीक है क्या? अगर हम आसान शब्दों में कहें तो AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की वो काबिलियत है जिसमें वो इंसानों की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और फैसले ले सकता है।
1: बिल्कुल, जैसे हमारा दिमाग अनुभव से सीखता है, वैसे ही AI डेटा से सीखकर हमारे काम को आसान बना देता है।
0: जी हाँ, और इसलिए आज के इस खास अंक में हम यह जानेंगे कि क्या हमारा क्षेत्र सिर्फ AI का इस्तेमाल कर रहा है अथवा इसे समझ भी रहा है। नजीबात के छात्र, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट और हमारे श्रोता इसे अपनी और शहर की तरक्की का जरिया भी बना रहे हैं।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं एक जागरूक युवा साथी से।
2: मेरा नाम अमन भास्कर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन का मिमिक है, एक मेथड है मशीन को ट्रेन करने का, जिसमें हम डाटा के थ्रू मशीन को और स्मार्ट बनाते हैं ताकि हम मशीन से इंसाइटफुल प्रेडिक्शंस कर सकें और जो ह्यूमन टास्क हैं उनमें ह्यूमंस और हेल्प ले सके AI मॉडल्स के थ्रू। डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हो गया है AI, क्योंकि ये हमारे स्टडीज में और अदर थिंग्स में बहुत यूजफुल है। और आज के टाइम पे AI जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसमें वॉइस असिस्टेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल वॉइस असिस्टेंट, जिसमें आप केवल अपने क्वेश्चन बोल सकते हैं और वो आपका रिजल्ट तुरंत दे देता है, वो कुछ राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यूट्यूब पर AI रिकमेंडेशन सिस्टम, लाइक स्टडी के लिए आप कोई वीडियो ओपन करते हो तो जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो अदर वीडियोस भी रिकमेंड करने लगता है। और यही अमेजोन और फ्लिपकार्ट अदर प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशन पर यूजफुल भी है।
1: AI सीखने के बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है?
2: कि मैं नजीबाबाद से ही किसी अच्छी MNC में रिमोट वर्क करके AI में और आगे बढ़ सकता हूँ। और ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती है अपनी सोसाइटी या कॉलोनी में, मैं उसे टैकल करने के लिए AI का यूज कर सकता हूँ। कि AI टूल्स ने स्टार्टअप स्टार्ट करना इतना इजी कर दिया है कि हम इजीली एक पर्सन भी स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते। अगर मुझे कभी नजीबाबाद के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो मैं जरूर करूंगा।
0: शिक्षा के बाद बात आती है हुनर की। हमारे साथ हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट जिशान अंसारी। आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि उनके लिए AI को सीखना क्यों जरूरी है और वो किस तरह से अपने करियर को आसान बना सकते हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, AI सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसके तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहले, अगर आप AI टूल्स या डेटा मैनेजमेंट जानते हैं तो आप नजीबाद में बैठ बड़ी कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं। AI आपको ग्लोबल वर्कर बनाता है। दूसरा, चाहे आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो या अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, AI आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकता है। और तीसरा पॉइंट मेरा यह है, आने वाले 5 सालों में हर सेक्टर, चाहे वो खेती हो, पढ़ाई हो, दुकानदारी हो, वहाँ AI दखल देगा 100%। जो युवा इसे आज सीखेगा वो कल की भीड़ में सबसे आगे खड़ा होगा। नजीबाबाद और आसपास के जितने भी शहर है, मेरा युवाओं से यही गुजारिश है कि मशीनें हमें रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि वो इंसान हमें रिप्लेस कर देगा जिसे AI का इस्तेमाल करना आता होगा। इसलिए डरिए मत, इसे अपने दोस्त बनाइए और इंटरनेट पर मौजूद फ्री कोर्सेज का फायदा उठाइए। याद रखिए, अब सिर्फ जज्बा नहीं, स्मार्ट जज्बा चाहिए।
1: आइए जानते हैं साहू जैन महाविद्यालय से डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता जी। सर, आप हमें बताइए कि आजकल विद्यार्थी AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है?
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं AI का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन AI के बारे में कहना चाहूंगा कि AI ही सब कुछ नहीं है। AI एक मशीन है, सॉफ्टवेयर है, जो आपको केवल सजेस्ट करता है। आप उसके रिजल्ट्स को कट कॉपी पेस्ट करके अपने असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में यूज ना करें। उन रिजल्ट्स को आप अपना दिमाग लगा के फिल्टर करें। हमारा दिमाग और सॉफ्टवेयर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अपने दिमाग से AI द्वारा दिए गए रिजल्ट्स को आप परिष्कृत करें और उसे अपने काम में लाएं। कुछ विद्यार्थी कट कॉपी पेस्ट करके AI के रिजल्ट्स को अपने कामों में यूज कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों का ही नुकसान है, उनकी रचनात्मक क्षमताएं इससे प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई नई चीज, नए सुझाव सोचने बंद कर दिए हैं और वो केवल कंप्यूटर पर डिपेंड हो गए हैं। ऐसा उनके भावी विकास के लिए नुकसानदायक है।
1: अब हम जानेंगे हमारे ही क्षेत्र से निकले से अनुभवी व्यक्तित्व से, जो आज 7 समंदर पार टेक की दुनिया का हिस्सा हैं।
5: नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन आप

0: AI का ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे गूगल सर्च, व्हाट्सएप, यूट्यूब की रिकमेंडेशन, सब AI ही है, छोटे फॉर्म में AI का ही पार्ट है। अब बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो कुछ कुछ एरियाज में AI का कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में AI टूल्स कोड लिखवा रहे हैं, डॉक्टर्स एक्सरे MRI रिपोर्ट्स AI से चेक करवा रहे हैं। कई बार AI छोटी चीजें भी पकड़ लेता है जो इंसानों की आंखें ना पकड़ पाए। टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ये सब AI का फायदा भरपूर उठा रहे हैं। सवाल ये है कि AI से नौकरी जाएगी या नहीं। सच बात तो ये है, AI थोड़ी नौकरी बदलेगा तो जरूर, जैसे कंप्यूटर आने पे लोगों की नौकरी थोड़ी चेंज हो गई, वो वैसे ही थोड़ी नौकरी का नेचर जो होता है वो थोड़ा चेंज होता है। उसमें एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि हमें सीखते रहना है, नई नई चीजें जो आती हैं उसका फायदा उठाना है।
1: मेरा नाम है मोहम्मद माज खान और मैं अबूधाबी बेस्ड दो स्टार्टअप्स में एज एन AI इंजीनियर काम करता हूँ। अगर आप देखें अभी फिलहाल कॉरपोरेट वर्ल्ड में, फिलहाल तो 2024 और 25 में ट्रेंड्स चल रहे थे कि AI बेसिकली सिर्फ कंटेंट जनरेशन कर रहा था, इमेज जनरेट कर रहा है या आपके लिए ईमेल्स वगैरह लिख रहा है, एसेज लिख रहा है, और जो भी बेसिक टास्क थे वो आपके चलते थे। अभी 2026 में ये काफ़ी अपग्रेड हो गया है, हम एक नया कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं जो कि है AI एजेंट्स। AI एजेंट्स बेसिकली क्या करता है कि आप अपने टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। सो पहले AI सिर्फ ईमेल लिख सकता था, अब इस टाइम उसके पास ये कैपेबिलिटीज आ गई हैं कि आप अपने जीमेल कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया या कोई भी टूल हो गया, आप उसको कनेक्ट करें और उसके बाद वो आपके लिए ना ही सिर्फ ईमेल लिखेगा, वो आपकी ईमेल्स भी पढ़ेगा, वो आपकी गूगल शीट्स भी पढ़ेगा, वो आपकी स्लाइड्स, पावर पॉइंट जो भी हैं वो सब पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद उनको लिखेगा और बाकायदा ईमेल सेंड भी कर सकता है। सो ये टूल एग्जीक्यूशन की जो कैपेबिलिटीज हैं ये आ गई हैं। रही बात फ्यूचर की, सो फ्यूचर में हम इन्हीं ऑटोमेशंस को और एडवांस होता हुआ देखेंगे। अभी फिलहाल जो वर्कफ्लोज हैं वो सिर्फ टूल लिमिटेड हैं कि जीमेल से एक टूल आप कनेक्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट से आप एक टूल कनेक्ट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे फिलहाल मैं डेवलपमेंट साइड में हूँ तो मैं गिटहब यूज करता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, बट हालांकि मेरा भी मोस्टली कोड जो अब लिखा जा रहा है वो AI के थ्रू लिखा जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं जैसे लवेबल हो गया फॉर वेबसाइट बिल्डिंग, या बैकएंड अगर आपको बिल्ड करना है तो क्लाउड कोड एक टूल है। सो अभी ये थोड़े से अलग अलग जगह पर हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये सारे टूल्स जो हैं सिर्फ एक ही चीज से कनेक्टेड हैं। अभी सिर्फ एक क्लीयर से CRM है आपके पास, हायरिंग टूल्स हैं कि आप हायर करते हैं, उसके बाद आप फाइवर पर डालते हैं, आप एड्स लगाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपस में कनेक्ट होंगी।
2: वाकई जब AI के क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस तकनीक की ताकत पर मुहर लगाते हैं तो हमें समझ आता है कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है।
3: तो श्रोताओं, यह तो साफ है कि तकनीक चाहे सात समंदर पार हो या हमारे क्षेत्र की गलियों में, असली ताकत उसे समझने में है।
2: बिल्कुल, जैसा हमने जाना कि भविष्य उन्हीं का है जो समय के साथ अपनी दिशा बदलना जानते हैं। तकनीक से डरे नहीं, इसे अपनी प्रगति का आधार बनाएं।
3: इसी के साथ बात आसपास की के आज के इस अंक में बस इतना ही।
2: कार्यक्रम के समापन से पूर्व एक बार फिर अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आकाशवाणी नजीबाबाद 8 मई को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कर रहा है वॉकेथॉन।
3: जोर शोर से 8 मई को सवेरे 7 बजे हमारे साथ हिस्सा बने 90 वर्षों की गौरवमयी यात्रा का। इसी के साथ मुझे इशिका कौशिक
2: और दिव्यम कंडवाल को दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।
2: नमस्कार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की और आज के इस अंक में वाचन और संकलन रहा है दिव्यम कंडवाल और इशिका कौशिक का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर, 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है पसंदीदा कार्यक्रम हमारे सभी श्रोताओं के लिए, गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी मनोज वर्मा का और मेरे साथ मेरी साथी
5: फरीना का प्यार भरा

0: नमस्कार
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम, वैसे तो मैं कई जगह मैंने अपने श्रोताओं को बोला ही है कि भाई पूरे एक घंटे का रहेगा आज से, यानी कि 9 जून 2026 से। तो वही मुझे एक बार फिर कहना है जो मेरे श्रोता इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं, यानी आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ रहे हैं, कि आज का ये कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा, पूरे एक घंटे का रहेगा। इसमें आप अपने पसंद के गीतों को सुन सकते हैं। करना क्या होगा फरीना, ज़रा बताओ।
0: करना होगा श्रोताओं, आपको मैसेज हमारे नंबर पर, और अपना नंबर हम आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 9457078288।
1: अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो 94-570-78-288 ये हमारा नंबर है, क्यों फरीना?
0: जी हाँ, और मनोज जी, श्रोताओं के स्नेह और विश्वास से सजा ये प्यारा सा सफर, जो पिछले एक साल से आधे घंटे की मुलाकात में सिमटा हुआ था, और आज 9 जून से उनकी भरपूर पसंद और बेपनाह मोहब्बत के साथ गीत तुम्हारे फिर से लौट आया है, पूरे एक घंटे की रौनक लेकर।
1: और फरीना, मैं आपको बता दूं कि भाई ये कारण भी क्यों रहा है कि पूरा हमने एक साल तक, है ना, 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के हमने पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया, जिसका नाम रहा है सुहाना सफर।
0: जी, जी।
1: और इस सुहाने सफर में हमारे सभी श्रोताओं ने हमारा साथ दिया भरपूर, हमने उनका मनोरंजन भी करवाया, और जो जानकारी रही है वो उस दौर की, उसको हमने पूरी पूरी बात की उस कार्यक्रम में। तो भाई वो पूरे 90 साल हमारे आकाशवाणी के कल, यानी बीते कल, पूरे हो चुके, और भाई आज हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपने गीत तुम्हारे कार्यक्रम के आज के अंक को लेकर, जो एक बार फिर मैं बता दूं एक घंटे का रहेगा। और कोशिश करें भाई, बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे भी होते हैं फरीना कि वो SMS कर देते हैं, है ना, कोशिश करें कि जब हम अपना कार्यक्रम शुरू करें तो वो तब ही मैसेज करें, और पूरी कोशिश रहेगी कि भाई आपके खतों को भी शामिल करें और आपके SMS को भी शामिल करें। तो थोड़ी सी भूमिका मैंने बनाई है, ये क्यों फरीना?
0: जी बेशक, वो समय का ख्याल रखेंगे और हम उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे,
1: है ना। और फरीना एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई पूरे एक घंटे का कार्यक्रम है और अधिकतर लोगों को शामिल किया जाएगा, तो भाई जो लोग शामिल हो जाएं कोशिश करें कि दोबारा ना करें।
0: जी जी जी।
1: तो फरीना जरा शुरुआत कर दीजिए आप।
0: जी, कार्यक्रम का ये पहला मैसेज हमें भेज रहे हैं लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से आप हैं। हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी और उनके साथ हैं मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा श्रीमती फुंदी बाई बागरी। ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून। अगला मैसेज आया है मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी हिना कौसर हमें मैसेज करते हैं हलवाईयान मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। ये मैसेज भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा और उनके परिवार के सदस्यों ने। गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से आप हैं जसविंदर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर। और ये मैसेज भेजा है हमें मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत सादिया दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से आपने ये फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है। और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं प्रवीण शिमाली मीना शिमाली जिला खरगोन मध्य प्रदेश से
1: कंवर कॉलोनी बड़वाहा से, अगर हम इनका पूरा पता पड़े। इसके अलावा देखिए भाई, हमारे पास में लगातार मैसेज आ रहे हैं और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना प्रणय और हीरामन शेंडे भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। विलेज और पोस्ट राहुल नंगली से हमारे नियमित श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं आचार्य सत्यवीर चौहान अक्षत चौहान भूमिका चौहान कनिष्का भव्या सीमा रानी राघव चौहान वेदांश चौहान और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से इनके साथ जुड़े हुए हैं इसी SMS में उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक। के अलावा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर।

0: सिंह जौड़ा सिटी दीवाना भी इनके साथ भाई अगले मैसेज में हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे नियमित श्रोता आप भी जुड़ गए, और आप हैं साहब शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी, और साथ में भाई देखिए 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आकाशवाणी की पूरी टीम को ये बहुत धन्यवाद भी आनंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब बहुत आनंद आया हमें और हम इस कार्यक्रम को लगातार सुनते रहे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं सोहन जोशी, पायल जोशी और इनका पूरा परिवार। साथ में ये मैसेज जो मैं ले रहा हूँ दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का, और मैं चाहता हूँ फरीना की कुछ मैसेज और ले लो आप।
1: ये मैसेज हमें भेजा है राधिका अग्रवाल ने मोहल्ला संतो मालन नजीबाबाद जिला बिजनौर से।
0: और फरीना मैं बता दूं हमारे श्रोता बहुत हैं नजीबाबाद में लेकिन हमें मैसेज बहुत कम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, उनके साथ हैं कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े, साईशा सोनवड़े। तो मनोज जी अब गीत भी बता दीजिए
0: मैं
1: कि
0: गीत भी बताऊंगा, उससे पहले कुछ SMS और ले लेता हूँ। हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी, ग्राम जुझेला थाना शिवाला कलां बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमारे श्रोता हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नवीस नफीसा प्रवीण इनके साथ जुड़े। एक SMS और लेते हैं उसके बाद फरीना हम ये फरमाइश पूरी कर देंगे भाई, पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम है ना। तो ये मैसेज मैं ले रहा हूँ कुलम रोड हर गोबिंद नगर नवान शहर से, नवा शहर बिल्कुल इसको हमने अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो नवा शहर है ये। सुरिंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सुनवा देते हैं आपको आप सबकी पसंद का ये गीत।

पलक मुछाल की आवाज में आपने सुना प्रेम रतन धायो पायो फिल्म का ये गीत। जी हाँ, एक संदेश आपको सुनवाते हैं फिर आपसे जुड़ते हैं।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और 10:15 इस समय हो रहे हैं। आज का ये पूरा कार्यक्रम एक घंटे का रहेगा, जिसमें 15 पूरे हो चुके हैं, मात्र 45 और बचे हैं। लगातार हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं फरीना, और मैं एक बार फिर नंबर बता दूं, 94-570-78-288 ये हमारा नंबर है, जिस पर आप हमें SMS कर सकते हैं। और फरीना, हमारे श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं।
2: जी हाँ, और ये मैसेज हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल ने। और अगला मैसेज हमें आया है, आप हैं शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक रामेश और उनके परिवार के सभी सदस्य। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से ये फरमाइशी मैसेज भेजा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और ये मैसेज हमें भेजा है लिसनर ग्रुप मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और उनके परिवार के सदस्य। ये मैसेज हमें भेजा है

0: एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा ने ये भेज रहे हैं गुमला झारखंड से ये मैसेज। अगला फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी नीलमपुरी रमापुरी पालीपुरी सुनील पाठक बीकेपुरी और विनोदपुरी। उनके साथ ही ये मैसेज हमें भेज रहे हैं संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। उसके साथ ही अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो हमें भेजा है पहलगाम कश्मीर से पैरजादा मिराजुद्दीन ने ये मैसेज हमें भेजा है विनय मोहन खार वन मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से आप ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक वंश बत्ता पूरा बत्ता परिवार हमें मैसेज कर रहा है मोहल्ला पटियाला कनेरा मोहल्ला पटियाला से
1: जी।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है धाड़ी नांदुरा महाराज से श्री कृष्ण बाटे संदीप बाटे अमूल्य बाटे ने। अब आप भी पढ़िएगा कुछ मैसेज।
1: बिल्कुल हमारी ही बारी है। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा विशु लाडी विशाल शालिनी टिवांशी और इनका पूरा परिवार के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं और कई श्रोता तो देख रहे हैं हम कि भाई दोबारा भी कर रहे हैं। चलिए खैर मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जिव्यम जैन सरधना मेरठ से आदि जैन अंश जैन भव्य जैन भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं कस्बा भोजपुर मुरादाबाद से नरेश कुमार कश्यप रविंद्र कुमार शिवानी स्वाति मानसी और इनका पूरा कश्यप परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं भाई जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश प्रज्ञेश प्रतेश और इनका पूरा संघई परिवार भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा प्रवीण और जुहानुल हुदा भी इनके साथ जुड़ी हुए हैं। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये मैसेज और पढ़ते हैं उसके बाद फरीना खतों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भागर जी।
0: और पत्रों की परंपरा को जारी रखते हुए हमारे श्रोता हमें जो पत्र भेजते हैं उनमें से कुछ पत्र हमने लिए हैं। ये पसंद करता है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत समरीन परवीन मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ये पत्र हमें भेजा है। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकार नर्मदा पोहारकार अनिल पोहारकर महेंद्र पोहारकर सुनील पोहारकर साहिल पोहारकर सुजाता पोहारकर पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ मोहम्मद शादाब खत्री एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से ये पत्र भेजा है। कुमारी वंदना मराठा कुमारी देवी का चौधरी गणेश दादा मराठा कार्तिक भाऊ मराठा परी संजना मराठा मालती चौधरी स्वाति प्रयाग चौधरी ललिता नारायण खर्चे बक्सर बिहार से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी उनके साथ हैं डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा दानिश अंसारी और इन्हीं के साथ जुड़े हैं सारीरामपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी आसमा खातून अंसारी जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ये पत्र भेजा है हमें। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार मुस्कान मालाकार जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका बलविंदर ब्रग जैतेक ब्रग मीका ब्रग।
1: और फरीना कुछ SMS लेना चाह रहे हैं हम जो हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं ना और इस वक्त सभी को पता चल चुका है कि भाई 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और 10:22 होने वाले हैं। फिलहाल ये मैसेज मैं ले रहा हूँ मोहल्ला धर्म

नजीब आबाद का मैसेज है ये, और हमारे श्रोता हैं गुलाम हसन, निशात बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे नियमित श्रोता हैं कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से, फारूक अली खां, फैज़ी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। ये हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं अब्दुल खालिक, अब्दुल मलिक, अब्दुल तालिब, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आफिफ, पत्थर वाली मस्जिद से। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई एक SMS और लूंगा और उसके बाद में गीत सुनवाएंगे हम। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव जानवी और दर्श राजपूत। लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का अगला गीत।

0: नीति मोहन, विशाल मिश्रा और अन्य कलाकारों के साथ आपने सुना गदर टू फिल्म का ये गीत। और गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और फरीना एकदम SMS पढ़ने के लिए तैयार हैं।
1: जी हाँ, और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए ये मैसेज हमें भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश शाहू ने। डुमराव बिहार से आप हैं दानिश अंसारी, सोनम अदीबा, और गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभनंद आर्य और परमानंद आर्य। इन्हीं के साथ मैसेज कर रहे हैं सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी और आसमा खातून। और ये मैसेज हमें भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोराड़ा, सुदामा नगर खंडवा से उनके साथ हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और चकताप। कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, तुषार कारांगले। ये मैसेज भेजा है परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से पसंद कर रहे हैं अगले गीत को, आफरीन खान, जमीर खान, छत्रपति संभाजी नगर, पार्थ रेडियो क्लब के सदस्य राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश भी अपना मैसेज हमें भेज रहे हैं। ये मैसेज भेजा है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से उनके साथ हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और कार्यक्रम का अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें भेजा है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक और समझ डागला परिवार। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशव, रसीद, वारसी। और ये मैसेज हमें भेजा है मुंदीक चंद भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी ने।
0: और फरीना हमारे हाथ में कुछ खत हैं तो खतों को पढ़ते हैं।
1: जी हाँ,
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और इनके

0: परिवार के सभी सदस्य, कस्बा मीरगंज बरेली से भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार भी इस वक्त हमें सुन रहा है। और कुलदीप माहेश्वरी, मंजुला माहेश्वरी, दीपांशु माहेश्वरी, पलक माहेश्वरी, चिराग माहेश्वरी और रुद्र माहेश्वरी, मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद से, सब्जी मंडी नजीबाबाद से, ये एसएमएस के जरिए जुड़े हैं। विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, निकित अग्रवाल, सोनी अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल, ये खत मेरे हाथ में है। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और शीतल कश्यप का, हमारे नियमित श्रोता जो जुड़े हैं एसएमएस के जरिए। मोहल्ला अफगानान, शेरकोट, बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा खत मेरे हाथ में है सहारनपुर दाऊद सराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी, दूल्हापुर मुरादाबाद से हमारे नियमित श्रोता महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और परिवार के सभी सदस्य, ये खत मेरे हाथ में है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक। ग्राम लुहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, आराधना, अरविंद और इनका पूरा परिवार। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। इसके अलावा ये मैसेज मैं लेना चाह रहा हूँ और मैसेज ये लगातार मैसेज मुझे मिल रहे हैं। बोरखेड़ा पितरामल, जिला उज्जैन से, मध्य प्रदेश से अगर मैं बात करूँ राज्य की, विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतन नाहटा के साथ में, दीक्षा और कुश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा के अलावा।
1: ये मैसेज हमें कर रहे हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निषाद वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। ये मैसेज भेजा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट काशगंज से असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, आबाद खान। ये मैसेज हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्ना मालाकार सुरलकर। आयशताओं इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म में अलका याग्निक और सोनू निगम को।
0: लीजिएगा

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में आपने सुना तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का ये गीत और फरीना एसएमएस।
1: SMS से पहले हम आपको बता दें श्रोताओं कि कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में और फिल्म का नाम है नगीना। इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा। और ये मैसेज हमें भेजा है बुल्डाना वनशिंगी महाराज से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। उनके साथ ही हैं बुल्डाना इस्लामपुर महाराज से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार। उत्तम नगर दिल्ली से हैं गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, बोधराज खोरवाल, कमला रानी। इसी गीत को पसंद किया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने। यही गीत सुनना चाहा है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुसत जहां नाज, शाजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज ने। अगले फरमाइश करता है शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन, सब्जी मंडी बुल्डाना से। ये हमारे श्रोता हैं दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि शर्मा वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, अनोखे लाल वर्मा। अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। और कार्यक्रम का अगला मैसेज जो हम शामिल कर रहे हैं ये मैसेज हमें भेजा है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। इसी गीत को सुनना चाहा है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, गांधी बाग अंकोला से आप मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। ये मैसेज

0: भेजा है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब्स गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबू राम जयपाल और उन्हीं के साथ हैं खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा।
1: इसके अलावा देखिए लगातार फरीना हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे और ये मैसेज मुझे मिल रहा है, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने का ख्वाहिशमंद भाई देखिए भी हैं। हाँ ये मैसेज मैं लेना चाह रहा हूँ, पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मैं खुश दिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार। कहाँ से है ये? चकला बाजार समाना शहर पंजाब के हमारे श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी हमसे। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई ये हमारे श्रोता भी हैं। और भाई कोशिश तो कर रहे हैं पूरी पूरी हम लेने की कि SMS आपके ले लें, लेकिन जैसे ही हम खोलते हैं ना तो तुरंत वो हमारा रिपीटेड रूट में आ जाता है, मायने की वो तुरंत हमें दिखाई पड़ जाता है कि भाई हम इसको बोल चुके हैं। फिलहाल हमारे श्रोता तो अपना काम कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। और ये मैसेज मुझे मिल रहा है कुहाका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, गांव सिरसा हरियाणा के यानी गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा के हमारे श्रोता हैं, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, अर्जुन, नव्या और इनका पूरा परिवार के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और इनका पूरा परिवार के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे नियमित श्रोता हैं ये बड़े वरिष्ठ, ग्राम गधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी, बिमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधुगिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी और रमन गिरी, दिव्य गिरी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप और आरजू जाजौरिया के साथ, गुड्डू भी इनके साथ। इसके अलावा हमारे नियमित श्रोता बहुत पुराने हैं, ये देखिए भाई हैं कौन कौन, ये शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा और फरीना भी तैयार है पढ़ने के लिए।
0: जी हाँ, कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हमें भेजा है सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग, सुरेश नारंग ने ये मैसेज हमें भेज रहे हैं, मनमोहन सिंह नहटौर बिजनौर से। अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, अहमदपुर खेंगाव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली।
1: लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: और हम बता दें वो गीत कौन सी फिल्म का है, उमराव जान फिल्म का है वो, और आशा भोसले की उसमें आवाज है। और फरीना,
1: इस गीत को सुनना चाहा है बता देते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आप हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। ये मैसेज हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा ने। ये मैसेज हमें भेजने वाले श्रोता हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब। ये मैसेज भेजा है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, आप भेज रहे हैं ये मैसेज दतरेंगी से। इस मैसेज को भेजा है रेलवे रोड गंजुंडवारा से मोहम्मद कलीम बख्शी, जख्मी भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नजमा बेगम, नाज और सरिता बेगम। अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बीड नहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुल थे। ये मैसेज हमें भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड, अंकित कांगड़ा ने। अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं श्रोता है हमारे रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। ये मैसेज हमें भेजा है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेत दले, जीविका दले ने। सप्तरंग श्रोता परिवार संघ से आप हैं और कुंभार गली श्रीरामपुर से ये मैसेज भेजा है आपके साथ हैं पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुल नाज हाशमी, सलमा असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी।
0: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं और ये श्रोता हमारे साथ हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से, भाई ये तो पढ़ चुके हम। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हाँ हमारे नियमित श्रोता हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोरी धान और इनका पूरा परिवार। और भाई देखिए ये हमारे श्रोता बोल रहे हैं कि साहब हम भी नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल साहब हमारे सभी श्रोता नियमित हैं लेकिन हमें चलना तो वक्त के हिसाब से ही होता है, कोशिश हमारी पूरी रहती है कि भाई मैक्सिमम पढ़ के चले जाएं। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति भी इनके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नभाणकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे श्रोता आप भी हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई ये भी हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय के अलावा भाई हमारे श्रोता ये भी हैं। गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और उनका पोता गुरशबद भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। सुनवाते हैं आपको ये अंतिम गीत।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे आप भी श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं भाई। नगीना से अनिल विनोचा, शम्य विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा और इनका पूरा परिवार इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से सुवर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज और शुभदीप सिंह भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि साहब हम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आपको। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र और सूरज के साथ कुशल वर्मा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। इसके अलावा करूला मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया, शुएब खां, सिंधौली, मीरगंज बरेली से हमारे श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल इनके साथ, जीशान वारसी। और भाई इसी गीत के साथ जो इस वक्त आप सुन रहे हैं उमराव जान का मुझे यानी मनोज वर्मा को, आज के कार्यक्रमों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार, यहां से आपके साथ निभाएंगी फरीना।

अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं। पेश है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। समय दिन के 11 बज रहे हैं और हमारी प्रथम सभा के द्वितीय भाग में हम फिर से एक बार आपके साथ हो चुके हैं और दिल से आपका स्वागत करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि आपके आज के दिन का सफर बेहद ही हसीन और यादगार होगा। आज के इन लम्हों को और हसीन बनाने के लिए हमने चित्रपट संगीत को सजाया है 9 जून से जुड़ी उन फिल्मी हस्तियों से जिनका आज के दिन से गहरा जुड़ाव है। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको 9 जून 1912 में संगीत की दुनिया की शाहकार हस्ती वसंत देसाई थे, जिनकी रची धुनें उनके नाम की तरह ही हमारी यादों में बसती हैं और हमारे दिल में छिरकती हैं।

वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में फिल्म गुड्डी में आप सुन रहे थे वाणी जयराम को, और इस गीत को लिखा था गुलजार ने। श्रोताओं, वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में गुड्डी फिल्म का ये गीत और

और ऐसी ऐसी धुनें रच डाली जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा अमर और यादगार बनती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 दिसंबर 1975 का वो दिन जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ गए, उस दिन पूरा दिन आपने अपना संगीत कार्यक्रम को समर्पित किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश लिफ्ट की खराबी के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई। आइए उनकी संगीत सुर साधना को सलाम करते हुए सुनते हैं फिल्म गूंज उठे शहनाई में लता मंगेशकर को, जिसको लिखा है भरत व्यास ने और सुर रचना है वसंत देसाई की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ।

उनकी धमाकेदार एंट्री को भला कौन भूल सकता है। अपनी पहली ही फिल्म से अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली अमीषा पटेल आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके किरदार और अभिनय को देखकर लोगों ने यही कहा

श्रोताओं, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का ये शीर्षक गीत आपने सुना अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। इब्राहिम अश्क देवकोली के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता इतनी ज़्यादा थी कि वो फिल्म उस साल की शीर्ष फिल्मों में रही, जहां दर्शकों ने मासूम सी सोनिया सक्सेना को अपने दिल में जगह दी, तो अमीषा ने भी अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए साल 2001 में आई फिल्म गदर से हर तरफ सफलता का गदर ही मचा दिया। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं गदर फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसमें अमीषा पटेल ने सकीना का किरदार निभाया था।

श्रोताओं, जहां आज वसंत देसाई अमीषा पटेल का जन्मदिन है, वहीं एक और कलाकार है जिनका आज जन्मदिन है। श्रोताओं, आपको बता दें कि कपूर खानदान का बॉलीवुड से रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। इस फैमिली के लिए फिल्मी करियर बड़ा सुहाना रहा है। 9 जून से जुड़े इस खानदान के सितारे को आप जानते होंगे ज़रूर। चलिए आपको बता देते हैं, वो है अभिनेता अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर।

सोनम कपूर के अभिनय से सजी नीरजा फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाज थी नताशा सुनिधि चौहान की। प्रसून जोशी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था विशाल खुराना ने। 1995 में 9 जून को जन्मी सोनम ने अपने करियर में सांवरिया, दिल्ली सिक्स, रांझणा, प्रेम रतन धनपायो, नीरजा जैसी अलग अलग फिल्मों में तरह तरह की भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अभिनय के साथ साथ सोनम कपूर अपने विशिष्ट फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। तो आइए कार्यक्रम में एक और गीत की बहार उन्हीं के अभिनय से सजी फिल्म आई हेट लव स्टोरी की ले लेते हैं।

श्रोताओं, आज 9 जून को बसंत देसाई की अमर संगीत साधना को नमन करते हुए अमीषा पटेल और सोनम कपूर के जन्मदिन पर हम उनकी सफलता की कामना करते हुए यही चाहते हैं कि आज का दिन खुशियों भरा हो और सफलता के क्षेत्र में उनकी जिंदगी नए नए आयाम छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ करते हैं आपसे फिर मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक निभाते रहिएगा हमारा यूं ही साथ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य।

0: है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है। बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर यह चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई

0: सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
1: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
2: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
3: आ गए भैया।
2: हाँ।
3: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
2: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की

0: गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
1: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
2: अच्छा,
0: चलता हूँ।
3: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ

0: कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: गोबिन क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिन ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिन के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
0: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, पैन लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
0: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: शाबाश, अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो।
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोविंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोविंद भाई, तुम
1: मैं अब हमने ठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना?
0: नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
1: बड़ी माँ,
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: ज्वाइन टुगेदर इन द जनजातीय गरिमा उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड, एस्पिरेशन एंड द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ट्राइबल कम्युनिटीज मूव फॉरवर्ड विथ होप, डिग्निटी एंड डिटर्मिनेशन। सेलिब्रेटिंग जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert.

आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण का लखनऊ से रिले समय रहेगा रात 10 बजे। आपकी फरमाइश, आपके पत्र और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 9:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम मुलाकात का, जिसमें डॉक्टर पीके सिंह से बातचीत करेंगे शोभित शर्मा।

संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आनंद लीजिए का जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलों का कार्यक्रम विविधा में भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा विषय पर रचना देवी की पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुनेंगे 6:45 पर। युवा साथियों के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में आज की सौगातें होंगी बूझो तो जाने, कुछ खास है आज दिल से दिल तक, लव स्टोरी और बूस्टर्स। कार्यक्रम का समय वही 5:15 पर।

संध्या 6:05 पर किसान भाइयों के लोकप्रिय कार्यक्रम में बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में वैज्ञानिक BEDF डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा से सुवेंद्र सिंह की बासमती में रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा। साथ ही सुनिएगा खीरा ककड़ी तरबूज की फसलों में सामयिक कार्य विषयों पर चर्चा। समय आपको फिर एक बार बता देते हैं, संध्या 6:05 पर मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शाम 5 बजे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। संध्या 5:00

हमारी इसी सभा के अंत में यानी दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा, अभिनेता जीवन पर। दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा केशव अनुरागी के स्वर में कुछ गढ़वाली लोकगीतों का। महिला जगत कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा आधी आबादी से और कहानी पाठ का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कहानीकार दीपा शर्मा की कहानी मौन प्रेम की ताकत। साथ ही चर्चा होगी जीवन में परिवर्तन को ले सकारात्मक। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब सुनिएगा सैनिक भाई बहनों का फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाई बहनों, जय हिंद। आपके साहस से महकता है ये चमन सारा, आपके साहस से महकता ये चमन सारा, आपकी वीरता से हमारे देश की शान बढ़ती है, आपके बलिदानों की खुशबू अपने आंचल में भरती है, आपके बलिदानों की खुशबू अपने आंचल में भरती है, ऐसी ही तो इस दुनिया में सबसे प्यारी मेरे देश की धरती है।

श्रोताओं, सच में हमारे देश के सैनिक जो हमारे देश की धरती पर जन्मे हैं, सरहदों पर डटे रहते हैं, उन वीरों की आंखों में बस एक ही सपना रहता है कि उनके देश का हर कोना कोना महके, हर चेहरा मुस्कुराता रहे, उनकी हिफाजत में पला बड़ा ये प्यारा वतन बस हर वक्त खुशहाल रहे। आइए उसी खूबसूरत भारत की तस्वीर को देखते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया है फिल्म मेरे देश की धरती से, जिसको आवाज दी थी सुखविंदर ने। विक्रम के संगीतबद्ध किए इस गीत को लिखा था अजीम ने। तो चलिए आनंद लेते हैं अपने देश की खूबसूरती को बयां करते इस खूबसूरत गीत का।

जयदीप साहनी के लिखे गीत प्रीतम के संगीत में आप सुन रहे थे दिल बोले हड़िप्पा फिल्म में उदित नारायण और अलका याग्निक को। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं उदित नारायण अलका याग्निक को फिल्म शीन में, जिसको संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और गीत रचना है समीर की। श्रोताओं, चाहे कन्याकुमारी हो या कश्मीर, हमारे ये प्रहरी, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के हर चप्पे चप्पे के पहरेदार हैं, या यूं कह सकते हैं कि हर पर्वत, हर वादी, हर सागर उनसे ही आबाद है, हर सागर उनकी वीरता से लहराता है और हर पर्वत उन्हीं की वीरता को देखकर मुस्कुराता है। तो चलिए चलते हैं कश्मीर की उन फिजाओं में, जहां हमारे सैनिकों की वीरता जन्नते कश्मीर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है।

हर वक्त कंधों पर वतन की हिफाजत का भार उठाए रहते हैं, हर मौसम हर मुश्किल में डटकर खड़े रहते हैं, और हम उन्हीं की वजह से बेफिक्र होकर जीते हैं अपनी जिंदगियां। क्योंकि सरहद पर खड़ा हर वीर सैनिक हमसे यही कह रहा होता है कि तुम्हें डरना किस बात का, हर वक्त तुम्हारे साथ, पूरे देश के साथ मैं हूं ना।

श्रेया घोषाल, सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म मैं हूं ना का ये शीर्षक गीत आपने सुना। संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और गीतकार थे जावेद अख्तर। आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं मनोज मुंतशिर के लिखे गीत तनिष्क बागची के संगीत में बी पराग को फिल्म योद्धा में। श्रोताओ, हमारे देश के वीर सैनिक न थकते हैं, न झुकते हैं, न मुश्किलों से घबराते हैं। वतन की खातिर अपना हर फर्ज मुस्कुरा कर निभाते हैं। भारत माता के इन वीर सपूतों को शत शत नमन, जिनके साहस से हर वक्त बुलंद और ऊंचा रहता है और लहराता रहता है हमारा ये तिरंगा।

हमारे सैनिक के जज्बों और हिम्मत समर्पण को सलाम करते हुए आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाई बहनों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन के 12:30 हुए हैं, अब सुनिएगा फिल्म संगीत का हमारा अगला कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। स्वागत अभिनंदन सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। और श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हमने कुछ खास बनाया है। हमने याद किया है ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी अद्भुत और अलग पहचान बनाई, और आज ही के दिन यानी 9 जून को हम सब की आंखों को नम कर गए। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं 9 जून 1990 को प्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली, जो इस दुनिया से विदा हुए थे। उनकी हिंदी फिल्म संगीत को उन्होंने अपने अनेक लोकगीत दिए। लोकप्रिय गीतों में उनके लिस्ट की अगर बात करें तो उनके गीतों की संख्या बेशुमार है। फिल्म दादा, बिन फिरे हम थेरे, लड़ाकू, मैंने प्यार किया, पुलिस पब्लिक, सुपरमैन, बदनाम, दो खिलाड़ी, गुमराह, न जाने ऐसी कितनी फिल्म है जिनके गीतों की रचना आपके संगीत निर्देशन में हुई। सरल, मधुर और दिल को छू लेने वाले बोलों के लिए मशहूर असद भोपाली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पेश है उन्हीं की कलम से निकला एक यादगार नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म आग से।

असद भोपाली के लिखे गीत और उषा खन्ना के संगीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर को। फिल्म का नाम था आग। श्रोताओं, असद भोपाली जो बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसको आज तक कोई भी भुला नहीं पाया है। आपको बता दें कि उनका जन्म 10 जुलाई 1921 को हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अहमद खान था। भोपाल में जन्मे असद भोपाली गीत संगीत की दुनिया से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने जब अपने गीत रचे तो उनके गीतों का अफसाना सा बनता चला गया। अपने समय के प्रमुख संगीत निर्देशक जैसे श्याम सुंदरदास, खयाम, धनीराम, मानस मुखर्जी, कल्याण जी, आनंद जी, हेमंत मुखर्जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे धुरंधरों के साथ आपने काम किया। 1990 में आई उनकी फिल्म मैंने प्यार किया और उसके गीतों को भला कौन भूल सकता है। इसका गीत हम आपको सुबह कार्यक्रम में सुनवा चुके हैं। चलिए अब उनके गीत की एक और मधुर पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरदार से, और जिसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और गीत रचना असद भोपाली की है। तो चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के अगले गीत का।

0: फिल्म आया तूफान में भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। श्रोताओं, आते हैं ब्रेक के बाद और फिर सुनवाते हैं आपको और गीत।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।
2: पहले सत नहीं था।
1: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी में। और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है उन महान हस्तियों पर जो हमारे लिए याद बनकर रह गए और हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। श्रोताओं, जहां हमने अभी बात की असद भोपाली की, वहीं आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक राज खोसला की भी पुण्यतिथि है। अभिनेता गुरुदत्त के सहायक के रूप में शुरुआत करने वाले राज खोसला ने रहस्य, रोमांच और पारिवारिक फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी। वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते, मैं तुलसी, तेरे आंगन की जैसी कालजयी फिल्में उनकी प्रतिभा की साक्षी हैं। आइए उन्हीं को याद करते हुए और उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ही खूबसूरत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का ये गीत सुनते हैं, जिसको आवाज़ दी है लक्ष्मी लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत रचा है आनंद बख्शी ने।

चाहे महिला प्रधान फिल्में हों, रहस्यमय हों, या संगीत को खूबसूरती से पर्दे पर उतारने वाली फिल्में हों, राज खोसला का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी ही फिल्मों को देने में दर्ज है। उनकी फिल्मों के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने दौर में थे। तो आइए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए सुनते हैं उन्हीं की खूबसूरत फिल्म दो बदन का ये गीत, जिसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शकील बदायूनी की शब्द रचना में इसको संगीतबद्ध किया है रवि ने।

श्रोताओं, आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं नम आंखों से संवेदनशील और यथार्थवादी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध निर्देशक सत्येन बोस को। बांग्ला और हिंदी सिनेमा दोनों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सत्येन बोस 9 जून 1993 को हमारा साथ छोड़ गए। उनकी फिल्मों में मानवीय रिश्तों और सामाजिक सरोकारों की खूबसूरत झलक दिखाई पड़ती है। आइए उन्हीं को याद करते हुए उनकी सबसे खूबसूरत फिल्म दोस्ती का ये गीत सुनवाते हैं आपको। और आपको बता दें कि इस फिल्म ने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई थी। तो सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म दोस्ती में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

की फिल्मों से खूबसूरत दोस्ती और उनका प्यार कौन भुला सकता है। चाहे उनकी फिल्म दोस्ती की दोस्ती हो या जागृति फिल्म की लोगों को जागृत करने वाली जागृति, सभी फिल्में ऐसी हैं जो मनोरंजन के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी हमारे सामने लेकर आती हैं। उनकी कृतियां आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। आइए उनको विनम्र श्रद्धांजलि के साथ देते हुए सुनते हैं उन्हीं की बनाई फिल्म वापस का ये गीत, जिसको आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं, राज खोसला, सत्येन बोस और असद भोपाली को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आज की मिड डे मेलोडी की ये प्रस्तुति अब यहीं पर संपन्न होती है। हम कामना करते हैं कि उनकी यादें और उनकी अमूल्य कृतियां हमेशा हमारे बीच यूं ही जीवित रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts

0: नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
1: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे अव्वल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियसना वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमात मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी जिला में बनाए गए इम्तिहान मराकज पर सीसीटीवी की निगरानी में यह इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की थी। इम्तिहान के लिए पूरी रियासत में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी कयादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले जिक्र तरक्की हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमात के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
2: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे

0: मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
1: वजीर बनाए सेहत और कुंभ बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके माँ और बच्चे की शरह अमवात को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी एनटीए ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फेहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासिर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत। और कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त मीनाक्षी अग्रवाल। बहनों, कैसी हैं आप सब? आशा है कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और उत्साह से भरपूर होंगी। कार्यक्रम के इस विशेष अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहनों, रेडियो की यह दुनिया हमें परिवर्तन का एक सुंदर संदेश देती है। कल आपके इस कार्यक्रम में कोई और प्रस्तोता थी, आज मैं आपके साथ हूं और आने वाले समय में शायद कोई और आपसे रूबरू होगा। यही तो परिवर्तन है और यही संसार का नियम भी है। और कहा भी गया है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, जो इसके साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। जीवन भी एक बहती नदी की तरह ही है, जो कभी नहीं रुकती। कभी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी जिम्मेदारियां, और कभी हमारे सामने नए अवसर आ खड़े होते हैं। बहनों, ऐसे में हमें परिवर्तन से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस परिवर्तन को पॉजिटिवली स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो ना बहनों, जब हम जीवन में बीज डालते हैं, जमीन में बीज डालते हैं, तो उसका विशाल वृक्ष बनता है। नदी कहीं ना कहीं रास्ते बदलते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। प्रकृति का हर रूप हमें सिखाता है कि परिवर्तन रुकावट नहीं बल्कि विकास का रास्ता है। हम अपने ही जीवन को देखें तो महिलाओं के जीवन से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। सबसे पहले बेटी, फिर बहन, बहन से पत्नी और फिर मां बनने तक जीवन के हर मोड़ पर महिलाएं नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करती हैं और हर बदलाव को अपनी ताकत बना लेती हैं। इसलिए बहनों, जब भी जीवन में कोई नया मोड़ आए, उससे घबराना नहीं है।

0: बल्कि हमें उसका स्वागत करना है, क्योंकि अक्सर यही परिवर्तन हमें नई मंजिलों और नई संभावनाओं तक लेकर आता है। सोच सकारात्मक हो तो हर परिवर्तन एक नई संभावना बन जाता है। बहनों, कई बार जीवन में आने वाले बदलाव हमें असहज कर देते हैं। बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी, स्वास्थ्य या फिर बदलती सामाजिक परिस्थितियां, सब कुछ एक साथ बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर बदलाव अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। अवसर सीखने का, स्वयं को निखारने का और पहले से मजबूत बनने का। तो बहनों, ऐसा ही अवसर, ऐसी ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया है हमारी आज की आधी आबादी की नायिका ने, जिनका नाम है मिनी अग्रवाल। तो बहनों, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आधी आबादी की ओर, जानते हैं मिनी ने किन किन मुश्किलों का सामना किया और उन मुश्किलों पर जीत कैसे उनकी हुई, आइए सुनते हैं। मुश्किलों से डरकर अगर रुक जाएं तो सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो हिम्मत से आगे बढ़े वही लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना जाते हैं। जीवन में कई बार परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती हैं। कुछ लोग उन कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से उन चुनौतियों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। मिनी अग्रवाल उन्हीं महिलाओं में से एक हैं। मिनी अग्रवाल का जीवन संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की एक प्रेरणादायक कहानी है। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने बचपन का लंबा समय बिस्तर पर और एक कमरे तक सीमित रहकर बिताया।
1: मैं बचपन के कुछ किस्से आपको बताऊंगी। बचपन में जब मैं स्कूल जाती तो मेरे बैचमेट्स, मेरे स्कूलमेट्स मुझे नहीं देखते थे, वो मेरी चाल को देखते थे और फुसफुसाते थे। पहले तो मैंने ये नोट नहीं किया, लेकिन बाद में जब वो मुझ पर हंसने लगे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई विदूषक हूँ या कोई जोकर हूँ। मैं बाहर से तो मुस्कुरा देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रोती थी। बचपन में जब हमारे घर में मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाते थे कि मुझे लगता था जैसे उन्होंने कुछ गलत कहा है या मेरा मजाक बनाया है। एक बार हमारे घर में मेहमान आए, उन्होंने कहा बेटा चल कर दिखाओ। जब मैंने चल कर दिखाया तो उन्होंने जो कट्टु हंसी व्यक्त की वो तो चले गए, लेकिन छोड़ गए मेरे अंदर गहरी रिक्तता और खालीपन का भाव। मेरे पैर टेढ़े थे और जिस तरीके से मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वजन बढ़ रहा था, मेरे पैरों का टेढ़ापन और बढ़ता जा रहा था। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, मेरे पैर ऐसे में बढ़ रहे थे। तो मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि शायद एक सर्जरी से मेरी जिंदगी सामान्य हो सकती है। सर्जरी हमेशा डर को जन्म देती है और मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं ये मान चुकी थी और जान चुकी थी कि जिस तरीके से आग में जलकर सोना कुंदन बनता है, उसी तरीके से मुझे भी जलना ही था।
0: 11 साल की छोटी सी उम्र में उनको एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जिसने उनको काफी तकलीफ दी।
1: जब मैं 10 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मेरे पैर में 5 किलो के रिंग लग चुके थे, मेरे पैर में पिने घुसी हुई थी, दर्द बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पैर को हिला भी नहीं पा रही हूँ। खैर, इस ऑपरेशन के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये सुकून लगता था कि मेरा जीवन सामान्य हो सकता था, लेकिन मेरा ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ और ये बात अपने आप में बहुत दर्द देती थी। 24 अगस्त 2000 को हुआ मेरा ऑपरेशन और उसके 10 साल तक मैं पलंग पे ही मेरा जीवन सिमट गया। अगले 10 सालों में मेरे 4 कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुए, 10-10, 11-11 घंटे के, और हर बार मुझे लगता था कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने में कई साल लग गए।
0: लंबे समय तक इलाज चलने के बाद भी मिनी अग्रवाल को कोई रिलीफ नहीं मिला। साथ ही आसपास के लोग और उनके रिश्तेदार भी उनके घर वालों को मिनी से छुटकारा पाने की सलाह देने लगे।
1: मुझे याद है एक बार मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा था कि ऐसे बच्चों को तो सड़क पे छोड़ दिया जाता है,

0: भीख मांगने के लिए हम लोग पाल रहे हैं। मैंने दर्द को सिर्फ सहा नहीं था, मैं दर्द को जी रही थी। दोनों पैर और लेफ्ट हैंड मेरे निष्क्रिय हो चुके थे। रात को जब सब लोग सो जाते थे तब भी मेरा दर्द जागता रहता था। कई बार ऐसा होता था जब मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था लोग मुझ पर दया दिखाएं। मैं अपने परिवार को भी कभी अपने आंसू नहीं दिखाती थी।
1: लेकिन जहाँ कई लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, वहीं मिनी ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया।
0: बचपन से मैं हमेशा मदर टेरेसा को एडमायर करती थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आता था। बस इसी सम्मान की तलाश में, लोगों के मन में मैं अपने लिए सम्मान देखना चाहती थी, इसी सम्मान की तलाश में मैंने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। सिविल सर्विसेज का रास्ता कब मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई बन गया पता ही नहीं चला।
1: उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पढ़ाई के प्रति लगन के बल पर उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल की। उन्होंने अत्यंत कठिन परीक्षा को पास किया।
0: 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली थी। सफल हुई, सफलता मिली, मेरे सपनों को नए पंख मिले। पहले सब रजिस्ट्रार के रूप में मैं चयनित हुई, फिर लेबर ऑफिसर उसी दौरान मैं बन गई, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर को पद को ज्वाइन किया था। मैं 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर रही और उसके बाद मेरा सिलेक्शन चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के रूप में हुआ और वर्तमान में मैं चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ। मेरी सफलता के पीछे सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मेरे माता पिता की तपस्या, मेरे बहनों का विश्वास और मेरी दोस्तों की दुआओं की जीत है।
1: उनकी इस उपलब्धि ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे वे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में पहचानी जाने लगी और विभिन्न मंचों पर लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगी।
0: आज मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा मजाक बनाया, क्योंकि यदि वो लोग मेरा मजाक नहीं बनाते तो शायद आज मैं इतनी मजबूत नहीं बनती। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी आपको कभी भी कितना भी तोड़ दे, लेकिन अपने सपनों का हाथ कभी मत छोड़िए। सपनों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि सपने पैरों से नहीं चलते, सपने इरादों से चला करते हैं।
1: सपने पैरों से नहीं, इरादों से चलते हैं। मिनी अग्रवाल जी का जीवन हमें यही सिखाता है, अगर आत्मविश्वास मजबूत हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। आज जरूरत है कि हर महिला खुद पर विश्वास करे, अपनी प्रतिभा को पहचाने और कभी भी परिस्थितियों से हार न माने। याद रखिए, महिला अगर ठान ले तो मुश्किलें भी उसके आगे झुक जाती हैं। बहनों, ये थी आदियाबादी से मिनी अग्रवाल और कार्यक्रम में है अभी बहुत कुछ, तो बहनों कार्यक्रम में हमारे साथ आप बनी रहिए। आपसे मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: एहसास। हमारी
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: इस ब्रेक के बाद बहनों फिर से आप सभी का स्वागत है। बहनों, जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी संघर्ष के रूप में, कभी अनुभव के रूप में और कभी प्रेरणा के रूप में। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं आज। कहानी का शीर्षक है मौन प्रेम की ताकत और कहानीकार हैं दीपा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
3: मेरी कहानी का शीर्षक है मौन प्रेम की ताकत। शहर की शाम धीरे धीरे धुंधलके में डूब रही थी। आसमान पर फैले बादलों के बीच डूबता सूरज ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आग की लाल चादर टांग दी हो। खिड़की के पास बैठी नेहा खाली आंखों से बाहर देख रही थी। सड़क पर भागती भीड़ में हर किसी के पास लौटने के लिए कोई ना कोई ठिकाना था, मगर उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी कहीं पीछे छूट गई हो। कमरे में बिखरी किताबें

0: दवाइयों की पर्चियां, भाइयों की फीस, सब उसकी जिम्मेदारियों की कहानियां कह रही थी। नेहा ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि जिंदगी इच्छाओं से नहीं जिम्मेदारियों से चलती है। माता पिता की चिंता, भाइयों की पढ़ाई और घर का खर्च, इन सब के बीच उसने खुद को कब खो दिया उसे पता ही नहीं चला। और फिर उसके जीवन में आया शिवम। शिवम उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह भविष्य था जिसे सोचकर वह हर दिन संघर्ष करती थी। उसने अपने सपनों में खुद को शिवम की दुल्हन के रूप में देखा था। उसे विश्वास था कि कितनी भी कठिनाइयां आए, शिवम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसने पिता से हिम्मत करके कहा था, पापा मैं शिवम से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूंगी। पिता ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन शिवम शादी के लिए तैयार नहीं है नेहा, वो मान जाएगा पापा। प्यार अगर सच्चा हो तो साथ भी निभाना चाहिए। पिता चुप हो गए। वो जानते थे प्रेम में डूबे इंसान को समझाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नेहा का भ्रम टूट गया। उस रात शिवम का फोन आया था, नेहा मैं अभी शादी नहीं कर सकता। नेहा कब तक इंतजार करूं, नेहा की आवाज भर्रा गई। तुम हर समय यही सब बातें करती हो, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैंने सिर्फ अपना अधिकार मांगा है शिवम। अधिकार? शिवम हंसा, इतना ड्रामा मत करो, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये शब्द नेहा के दिल में तीर की तरह उतर गए। तो इतने सालों से रिश्ता क्या था, उसने कांपते हुए पूछा। गलती थी और अब मुझे आगे बढ़ना है। फोन कट गया। नेहा देर रात तक स्क्रीन को देखती रही। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही संदेश, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। कुछ देर बाद उसने देखा शिवम ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उस रात उसके भीतर सब कुछ टूट गया था। कमरे में सन्नाटा था, मेज पर रखी नींद की गोलियों की शीशी उसकी आंखों के सामने थी। उसे लग रहा था अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, कमल सर। नेहा ने भारी मन से फोन उठाया। क्या हुआ, आवाज इतनी बुझी हुई क्यों लग रही है? नेहा खुद को रोक नहीं पाई, वह रो पड़ी, सब खत्म हो गया। फोन की दूसरी तरफ कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर कमल बाबू गंभीर आवाज में बोले, एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती नेहा, अब मुझ में ताकत नहीं बची सर। ताकत खत्म नहीं हुई, सिर्फ भरोसा टूटा है। और याद रखो, जो तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता उसके लिए खुद को खत्म करना सबसे बड़ी मूर्खता है। नेहा चुप रही। कमल बाबू आगे बोले, तुम्हारे जाने से उसका क्या बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता टूट जाएंगे। खुद के लिए ना सही, उनके लिए जियो। उनकी आवाज में अजीब सा धैर्य था, ऐसा धैर्य जो बिखरे हुए इंसान को भी संभाल ले। उस रात नेहा ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो बिना स्वार्थ के उसकी बात सुनता है। धीरे धीरे कमल बाबू उसके जीवन का सबसे भरोसेमंद नाम बन गए। कमल बाबू इलाके के बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। गोरा चिट्टा रंग, लंबा कद, सलीके से पहना हुआ सफेद कुर्ता पायजामा और चेहरे पे अद्भुत शांति और तेज। उनके भीतर छिपे एक अच्छे व्यक्ति की छवि का चमकता चेहरा खुद प्रकट करता था। जब वे सड़क से गुजरते तो लोग आदर से उनको प्रणाम करते थे। उनकी आंखों में गहराई थी और व्यक्तित्व में ऐसा कि सामने वाला अनायास प्रभावित हो जाए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी संवेदनशीलता। नेहा जब भी किसी परेशानी में होती तो सबसे पहले उन्हें फोन करती, कमल सर भाई की फीस की तारीख आ गई है, व्यवस्था हो जाएगी। कमल सर घर में फिर तनाव हो गया है, शांत रहो, हर समस्या का हल निकलता है। वो हर बार उसे टूटने से बचा लेते। नेहा धीरे धीरे समझने लगी थी कि दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थ से नहीं जुड़ा होता, लेकिन मन तो मन है। एक रात छत पर बैठी नेहा सोच रही थी, ये इंसान मेरे लिए इतना क्यों करता है? उसके भीतर अचानक सवाल उठा, कहीं इन्हें मुझसे प्रेम तो नहीं? अगले ही पर उसने खुद को टोका, नहीं ये गलत सोच है, वे शादीशुदा हैं, अपने परिवार से बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन सवाल फिर भी बना रहा, तो आखिर हमारा रिश्ता क्या है? वह देर तक सोचती रही, शायद एक सच्चा दोस्त। फिर अचानक उसके भीतर दूसरी आवाज उठी, यह कहीं मुझे उनसे लगाव तो नहीं हो गया? नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसे डर लगने लगा था अपने विचारों से। सुबह दरवाजे के बाहर स्कूटी की आवाज आई। नेहा बाहर निकली। सामने कमल बाबू खड़े थे, सफेद कुर्ते पैजामे में, हमेशा की तरह बेहद आकर्षक और सुलझे हुए। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा और फाइल थी। लगता था सर को कोई अच्छी खबर देनी है। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कमल बाबू ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। आज से तुम एक एनजीओ चलाओगी। नेहा चौंक गई। मैं? हाँ तुम। जिन संघर्षों से तुम गुजरी हो वही दूसरों का दर्द समझने लायक बनाते हैं। नेहा ने कांपते हाथों से कागज देखे। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उसकी आंखें भर आई। लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? कमल बाबू मुस्कुराए। जिस लड़की ने जिंदगी में इतनी मुश्किलें लड़ाइयां अकेले लड़ी हो उसके लिए ये काम मुश्किल नहीं है। उस दिन के बाद नेहा की जिंदगी बदल गई। वह जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों की मदद करने लगी। किसी की पढ़ाई रुकती, कहीं घरेलू हिंसा होती तो कानूनी मदद दिलाती। धीरे धीरे उसका काम लोगों तक पहुंचने लगा। सरकार की ओर से भी उसके एनजीओ को सहायता मिलने लगी। कई बड़ी कंपनियों ने भी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया। नेहा का छोटा सा प्रयास अब एक बड़े अभियान में बदलने लगा था। समाचार पत्रों में उसके काम की चर्चा होने लगी। एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए नेहा ने कहा, जिस इंसान ने जीवन में दर्द देखा हो वह दूसरों के आंसू सही मायनों में समझ सकता है। सामने पहली पंक्ति में बैठे कमल बाबू शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नेहा उनके पास आई। अगर उस दिन आपका फोन नहीं आया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती सर। कमल बाबू कुछ क्षण में उसे देखते हुए बोले, जीवन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रुकता नेहा, तुम्हें शायद एक बड़े उद्देश्य के लिए बचाया गया था। कुछ देर बाद दोनों चुप रहे। नेहा के मन में वर्षों से दबा प्रश्न जाग उठा। उसने धीरे से पूछा, कभी कभी लगता है आप मेरे जीवन में बहुत खास हो, शायद इतना खास कि जितना होना चाहिए या उससे भी ज्यादा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हर रिश्ता नाम पर जाए ये जरूरी तो नहीं होता। कुछ रिश्ते बस इंसान को संभालने के लिए आते हैं। नेहा की आंखें नम हो गई। कमल बाबू आगे बोले, शादी विवाह परिवार ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लोग समाज के लिए जी पाते हैं। तुम वही करो। उस दिन नेहा ने मन ही मन एक निर्णय लिया। वह कभी उस भावना को शब्द नहीं देगी जो कभी गहराइयों में कमल बाबू के लिए जन्म ले चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनकी पवित्रता में होती है, उन्हें पाने में नहीं। समय बीतता गया। अब शिवम उसकी यादों में धुंधला पड़ चुका था। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब दर्द उसकी ताकत बन गया था। नेहा समाज में पूरी तरह जुट गई और जब भी जिंदगी थकाने लगती उसे सफेद कुर्ता पाजामे में मुस्कुराता हुआ एक चेहरा याद आता, जिसने उसे सिखाया सच्चा प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी किसी को टूटने से बचा लेना भी प्रेम की सबसे बड़ी ऊंची मर्यादा होती है। नेहा समझ गई थी कमल बाबू उसके जीवन का एक मौन संबंध है जो कभी प्राप्त तो नहीं है मगर उससे दूर भी नहीं रहेंगे। उनके इस खामोशी भरे प्रेम ने नेहा को वहां पहुंचा दिया जहां की वह असली हकदार थी।
1: अभी हमने दीपा शर्मा जी से कहानी सुनी जिसका शीर्षक था मौन प्रेम की ताकत, और आशा है कि इस कहानी का संदेश आपके मन को छू गया होगा और आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा लेकर आएगा। कहानी बहनों भले ही समाप्त हो गई हो लेकिन उसकी सीख हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। तो आइए इसी विचार के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद बहनों चलते चलते आइए लेते एक छोटी सी सीख। बहनों एक गिलास में आधा पानी है, अगर आप देखेंगे कि गिलास आधा खाली है तो निराश डरा थका महसूस करेंगे। अब अगर आप देखेंगे कि आधा भरा गिलास है तो खुश आशावाद ताकतवर महसूस करेंगे। गिलास वही है, पानी भी उतना ही है, पर आपकी सोच अलग है। जीवन में भी बहनों परिस्थितियां वही होती हैं, पर उनको देखने का नजरिया अगर हम बदल लें तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हम अगर कुछ पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में करें तो और अच्छा होगा। रोजाना सुबह उठकर बोले कि मैं सफल हो जाऊंगी, मैं खुश रहूंगी। अगर कोई समस्या है तो हमें ये सोचना है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। और रात को सोने से पहले एक अच्छी बात याद करें कि आज पूरे दिन में आपने क्या अच्छा किया। बहनों आप निराश नहीं आशावान बने, आप हार नहीं जीत की ओर बढ़ें, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा होगा। पॉजिटिव सोच रखिए और आगे बढ़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये जरूर बताइए बहनों। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 1:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, हम आ गए हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम लोकधारा। और लोकधारा कार्यक्रम को आज हमने सजाया है गढ़वाली लोकगीतों से, जिसको आवाज दे रहे हैं केशव अनुरागी। तो आइए गढ़वाली लोकगीत यानी पहाड़ी लोक संस्कृति को महसूस करते हैं इन लोकगीतों में।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं केशव अनुरागी के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। श्रोताओं, गढ़वाली लोकगीत हमारी देश की परंपराओं और संस्कृति को जीवंत रखते हैं, जो हमारी पहाड़ी परंपराएं हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अंतिम लोकगीत की तरफ।

देरियाला बाजा दे दुका बीच मा पूजिया बाजा जोते दुकी लुई पीना बाजा जब तुम का बीच मा स्वाभिन बनदा अरे दे तू मारी मारी की उनकी चोरी छीन लियो इला अरे

0: IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series and Ambula, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान कैंपेन ऑफ मिलिट्री पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
3: ब्लेमिंग नेबर्स फॉर हिज ओन फेलियर्स इज एन ओल्ड पाकिस्तानी हैं।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

0: ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के

0: हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही कलाकार में।
2: नारायण नारायण कल्याण।
1: श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये आवाज सुनते ही एक चेहरा हमारी यादों में उभर कर सामने आता है। और आप जानते हैं वो चेहरा किसका है? एक ऐसे कलाकार का जिन्होंने 5 दशकों तक रुपहले पर्दे पर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा। खलनायक, चरित्र अभिनेता और नारद मुनि के रूप में दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले इस अभिनेता का नाम है जीवन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन फिल्म अभिनेता नहीं बल्कि कैमरामैन बनना चाहते थे? और फिल्मों में उन्हें पहला मौका एक ऐसी घटना के कारण मिला जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ये कहानी हम आपको सुनवाएंगे उन्हीं की जबानी, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं उन्हीं के अभिनय से सजा फिल्म दिल ने फिर याद किया का ये खूबसूरत गीत, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। सोनिक ओमी के संगीत दिए इस गीत को लिखा है जी.एल. रवाल ने।

0: खाली।
1: श्रोताओं, अभिनेता जीवन अपनी चाल चल रहे थे और उनकी किस्मत अपनी चाल। 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर में जन्मे ओमकार नारधर यानी जीवन का बचपन बस यही चाहता था कि उन्हें कैमरों और फिल्मों की दुनिया में मिले, यानी उनका लगाव कैमरे और फिल्मों के प्रति एक अलग ही था। और अपने सपनों के साथ पॉकेट में 26 रुपए के ये 18 साल की उम्र में मुंबई पहुंच गए। बतौर रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में वहां पर काम करना शुरू किया। और एक दिन उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी जो उन्होंने एक बार विविध भारती के हुए साक्षात्कार में कही थी।
2: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगाशो साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे भिन हवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे, क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर
1: निर्देशक ने उन्हें फिल्म में मौका दिया और यहीं से उन्हें मिली सफलता की पहली सीढ़ी। तो आइए चलते हैं उनके अभिनय से सजी फिल्म के गीत की तरफ, जिसको हमने लिया है फिल्म लुटेरा से। आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।
3: दिल खरोश, हमले की तैयारी करो,
4: जल्दी करो।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में बहुत से कलाकार आए और गए, लेकिन नारद मुनि के रूप में जो लोकप्रियता जीवन को जीवन भर मिली, वो शायद ही किसी और को मिली हो। कहा जाता है कि उस दौर में यदि किसी फिल्म में नारद का रोल होता तो निर्माताओं की पहली पसंद बस जीवन ही हुआ करते थे। आपने लगभग 60 फिल्मों में नारद की भूमिका अदा की। उनकी आवाज में नारायण नारायण इतना लोकप्रिय हुआ कि दर्शक उन्हें देखते ही ये संबोधन याद रखा करते थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसी ही फिल्म का गीत जिसमें उन्होंने नारद की भूमिका अदा की थी और

फिल्म है कैलाशपति, जिसको ओ जो हमने गीत लिया है इस फिल्म का, उसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साथियों ने। अविनाश व्यास की संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है मदन ने।

बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में, मणिमाल के बदले गले में।

0: बाती बात के आए बराती ले लेके उपहार शिव का छोटा संसार बसाने को
1: शिव का छोटा संसार बसाने को।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग। आप

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर फिल्म अभिनेता खलनायक जीवन पर। श्रोताओं, जीवन उन कलाकारों में से थे जिनको भूमिका की लंबाई नहीं बल्कि गहराई पर विश्वास था। नायकों के बीच रहकर भी आपने अपनी चमक को जीवंत रखा, चाहे नया दौर हो, नागिन हो, कानून हो, जॉनी मेरा नाम दिल ने फिर याद किया, धर्मवीर या फिर अमर अकबर एंथनी। हर फिल्म में उनका किरदार और अंदाज सबसे अलग, सबसे जुदा।

0: श्रोताओं, अभिनेता जीवन की आवाज और उनका अभिनय भला कौन भूल सकता है। कल 10 जून है और साल 1987 को 10 जून ही वो यादगार दिन था जब आप इस बॉलीवुड और इस दुनिया को सूना कर गए। आइए कार्यक्रम में उनके एक डायलॉग जॉनी मेरा नाम को हम लेते हैं।
1: पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
2: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
1: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
2: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
1: क्या तकते हो?
2: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवाला तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
0: श्रोता, उनकी आवाज को अभी आपने फिल्म जॉनी मेरा नाम में सुना। और जब बात जॉनी मेरा नाम फिल्म की हो रही है तो आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना के स्वर में इसी फिल्म का ये गीत, जिसकी शब्द रचना की है इंदिवर ने और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: श्रोताओं, अभिनेता जीवन का कहना था अपने किरदारों के बारे में कि वो हकीकत में खलनायक नहीं थे। चलिए उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं उनकी ये बात।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, ऐन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
0: श्रोताओं, जीवन हकीकत में एक नेक इंसान थे। हम कहेंगे कि जीवन की जीवन यात्रा हमें यही संदेश देती है कि आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने में वक्त लग सकता है, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत कभी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। जीवन की जिंदगी हमारे लिए एक ऐसी ही यादगार और सम्मानीय मिसाल है। आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमने उनको श्रद्धा सुमन, उनकी आवाज़ सुनवाई और उनके गीत आपके सामने प्रस्तुत किए। उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। एक ही कलाकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे अपनी संध्याकालीन सभा में आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा।

रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। श्रोताओं, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आर्थिक अभाव के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। श्रोताओं, अक्सर जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। श्रोताओं, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आर्थिक अभाव के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। श्रोताओं, अक्सर

अंतर्गत जन्मजात विकारों, विभिन्न बीमारियों, कुपोषण और पोषण संबंधी कमियों के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास में होने वाली देरी या दिव्यांगता की पहचान की जाती है। श्रोताओं, इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती अवस्था में

तो श्रोताओं, मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज हमने बात की आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के विषय में। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर से प्राप्त गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। मनीषा पत्नी गोलू कुमार निवासी ग्राम गंगोडा जट थाना हल्दौर, जो कि 25 अप्रैल 2026 से लापता है। मनीषा की उम्र 28 वर्ष, आंख नाक कान औसत, लंबा चेहरा, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा है। लापता के समय काला कुर्ता पैजामा पहने थी। मनीषा के विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर मोबाइल नंबर 9454403129 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9454403129 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बेबी अंसारी पत्नी दानिश निवासी मोहल्ला बंदुकचियान धामपुर जिला बिजनौर से 19 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, इकहरा शरीर, जो कि लापता के समय काले रंग का सूट और पैरों में अंगूठे वाली चप्पल पहने थी। इनके विषय में जानकारी मिलने पर आप मोबाइल नंबर 9454402128 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार पुनः नोट करें, 9454403128। एक और सूचना सुनिए। रणजीत सिंह पुत्र बंजार सिंह निवासी ग्राम वीर भानवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर से 27 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 70 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फीट, आंख कान नाक औसत, इकहरा जिस्म, सफेद दाढ़ी है, जो कि लापता के समय क्रीम कलर का कुर्ता और सफेद रंग का पैजामा पहने हैं। इनके विषय में जानकारी मिलने पर आप संपर्क कर सकते हैं 9454403126 पर। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9454403126।

यहाँ समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण में आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति होगी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पी के सिंह से शोभित शर्मा की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे। सुगम संगीत के अंतर्गत संध्या 7:32 पर जगजीत सिंह की गायी गजलों का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं। विविधा के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर रचना देवी की वार्ता का विषय होगा भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा। समय याद रखिएगा संध्या 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का एपिसोड 5 प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसके अंतर्गत किसान श्रोता सुनेंगे डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा, वैज्ञानिक बीईडीएफ से सुवेंद्र सिंह की बातचीत, और बातचीत का विषय होगा बासमती में रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां। अपने कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरितमानस गान प्रातः 6:30 पर। 6:40 पर चिंतन हमारे श्रोता सुनेंगे। काव्यधारा में कल प्रातः 6:45 पर मनोज अबोद का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकते हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय होगा गुणों से भरपूर खीरा और ककड़ी। खेती की बातें क्रम में कल प्रातः 7:10 पर फार्मर रजिस्ट्री का महत्व विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। कल प्रातः 7:31 पर जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम होगा सूरज के साथ साथ। ब्रह्मदेव आर्य की गायी रागनी का आनंद लीजिएगा धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर। बात आसपास की कार्यक्रम का समय रहेगा कल प्रातः 9:50 पर। और घर संसार कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर क्रम रहेगा थारा स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत डॉक्टर पूनम सोनी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद से अंजना की बातचीत का विषय रहेगा लू लगने के कारण और उपचार। विविध कलाकारों के गाये राजस्थानी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। संध्या 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में हस्तशिल्प और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और मेगा क्लस्टर योजना के विषय में जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: Good evening listeners,
1: स्वागत है दोस्तों आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी में।
0: मैं हूँ आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी, और मेरे साथ हैं वो साथी जो है

0: करते हैं आपके दिल के जज्बात।
1: और आज के दिल से दिल तक की थीम रहेगी शायद, तो आप शेयर कीजिए अपने शायद वाली कहानियाँ।
0: शेयर कीजिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर।
1: वैसे नंदनी, नंबर की बात पर मुझे एक बात याद आ गई।
0: अरे नहीं नहीं भाई, हमारा नंबर वैलिड है।
1: अरे माहेश्वरी एक्सप्रेस, बात पूरी तो सुनो।
0: चलो ठीक है, कह लो।
1: नंबर का भी क्या अजब खेल है, किसी को स्टार और किसी को फ्लॉप बना देता है।
0: हाँ, बात तो पते की है तुमने।
1: चलो तुम इसी बात पर किसी का पता पूछते हैं, यानी बूझो तो जाने का सवाल पूछते हैं।
0: चलो ठीक है। तो दोस्तों, आज का बूझो तो जाने के अंतर्गत हमारा आपसे सवाल रहेगा, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी के पास है।
1: तो दोस्तों आप बताइए हमारे सवाल का जवाब, अपने खिलाड़ी का पता हमारे फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजीबाबाद पर जाकर।
0: तब तक आपको कुछ शहद के शायद से शहद में डुबोते हैं इस गीत के साथ।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
6: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
8: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
9: ऑर्डर ऑर्डर।
10: ओए सन।
9: हुँ?
10: तुझे पता है मुझे नौकरी मिल गई चिड़ियाघर में।
9: ओ बेटे, जानवरों के साथ रहेगा एक नया जानवर।
10: चल हट, जा रहा हूँ मैं, देर हो रही है, पहला ही दिन है।
9: आज तुम्हारा पहला दिन है ना?
10: जी सर।
9: दिल लगा कर काम करना, ठीक है?
10: हाँ हाँ हाँ, दिल लगा के काम करूंगा।
9: जाओ। ये क्या किया है कमकल?
10: मैंने तो कुछ नहीं किया।
9: यही तो बात है, तुमने शेर के पिंजरे का ताला क्यों नहीं लगाया?
10: दिमाग, मैंने पता क्या सोचा, इतने खतरनाक जानवर को कौन ही चुराएगा, इसलिए नहीं लगाया।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
11: मजा तो आपको आ रहा होगा, इसी मजे को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ खास से आज की ओर।
12: बिल्कुल दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि फोकस फ्यूचर पर होना चाहिए, ना कि फेयर पर। दोस्तों ये टॉपिक हमारे भविष्य से, हमारे फ्यूचर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है,
11: क्योंकि दोस्तों हम ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और हम डरते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और सोचते सोचते बस इसी डर में रह जाते हैं।
12: बिल्कुल दोस्तों, सोचना हमें ये चाहिए कि हो जाएगा, पॉसिबिलिटी तो है, होप तो है ही ना, और अगर उम्मीद है, होप है आपको, तो सपने पूरे ज़रूर हो जाएंगे।
11: जी, अक्सर अब भविष्य का नाम आता है तो लोग सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सच तो ये है कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आप रोज बैठकर सोचे हो क्या करें हम।
12: अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि क्यों भाई, क्यों नहीं है फ्यूचर कोई चीज? अरे है दोस्तों, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको करनी होगी बहुत सारी मेहनत। तो आप मेहनत पर फोकस करिए, ना कि आप ये सोचिए कि कल आखिर होगा क्या। नंदनी, इसी बात पर मुझे कुछ लाइन्स याद आ रही है, तुम कहो तो सुनाओ।
11: अरे तुम फ्यूचर पे लाइन मार रही हो?
12: हाँ लाइन मार रही हूँ, ताकि हमारे दोस्त फ्लैट हो जाए।
11: चलो ठीक है।
12: मंजिलों की फिक्र में क्यों रास्ता छोड़ देते हैं? मंजिल की फिक्र में क्यों रास्ता छोड़ देते हो? कल की चिंता में क्यों आज को तोड़ देते हो? जो सपने दिल में है उन्हें उड़ान देते चलो, भविष्य खुद चमकेगा, बस उम्मीदों को जोड़ते चलो।
11: क्या बात है राशि, फ्यूचर तुम पे फ्लैट हो जाएगा, तुम्हारा तो ब्राइट है। तो दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आज जो चीजें सामान्य लगती हैं, कभी किसी का सपना होती थी, जैसे मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन, ऑनलाइन स्टडी, अंतरिक्ष यात्रा, सब किसी ना किसी का कभी ना कभी सपना होगा। तो हर छोटी छोटी चीजों को काउंट कीजिए।
12: और आने वाले समय में भी बहुत से ऐसे नए अवसर हमें देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है आज कोई स्टूडेंट अपने रूम में बैठकर दुनिया बदलने का कोई ऐसा विचार सोच रहा हो जिससे हमारा कल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कोई कलाकार, कोई युवा कुछ ऐसा नया सोच रहा है जिससे फ्यूचर पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा।
11: और अगर वो भी फ्यूचर पर काम करना छोड़कर ये डर जाए और कोई नया आविष्कार ना करे, तो शायद दोस्तों भविष्य कभी खूबसूरत होगा ही नहीं, उसमें हमेशा डर रहेगा।
12: बिल्कुल। और दोस्तों सबसे खूबसूरत बात भविष्य की ये होती है कि उसमें कोई होप होती है। दोस्तों अगर फ्यूचर बेहतर

0: बनाना है तो फोकस करिए, डरने का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज का छोटा सा बीज कल एक बड़ा वृक्ष बनकर आपको, हमें और पूरी दुनिया को छाया दे सकता है।
1: और फ्यूचर जादू से नहीं, मेहनत से बनता है, रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने से बनता है, जो कि डिसिप्लिन के रूप में आपको दिखाई देते हैं। और फोकस से बदलेगा, फोकस कीजिए ढेर सारा। इसीलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को खुलकर जीने की तैयारी कीजिए।
0: और हमें पता है हमारे दोस्त तैयार हैं मेहनत करने के लिए, और आज के हमारे सेगमेंट दिल से दिल तक के अगले सॉन्ग को एंजॉय करने के लिए भी।
1: देखो राशि, हम सॉन्ग से एंजॉय तो करा रहे हैं, लेकिन हमारे मैसेजेस भी हम चाहते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो दिल से हमें देख रहे हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो हमें मैसेज करें। तो एक बार नंबर हम बता देते हैं, 9457078288, और हमारी थीम है शायद।
0: बिल्कुल दोस्तों, शायद से जुड़े हुए आपके कोई भी ऐसा किस्सा है जो आपकी कहानी को बहुत आगे तक लेके आया है, या कहानी वहीं छोटी सी होकर
1: पीछे भी रह गई हो तो
0: पीछे भी रहे,
1: शायद हो गया।
0: बिल्कुल। तो आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी पल है, कोई ऐसा मोमेंट है, तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं आपको दिल से दिल तक के अगले गीत की ओर।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक

0: तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
3: जी, सुनते हैं आप सेगमेंट लव स्टोरीज। और महीने में हम अलग अलग बाइफिकेशंस करते हैं, एक बार कहानी जाती है तो एक बार लव स्टोरी। तो इस हफ्ते की पेशकश है लव स्टोरी, जो कि रुमान परवीन प्रेजेंट करेंगी और उस कहानी का शीर्षक है उसी मोड़ पर, जिसका आज एपिसोड 2 आप सुनेंगे।
4: दोस्तों, पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे एक साधारण सी मुलाकात ने आरिफ और माहिरा के दिलों में एक अनजाना एहसास जगा दिया था। लाइब्रेरी में गिरती हुई किताबें और उन्हें उठाने वाला एक अजनबी। कभी कभी मोहब्बत की शुरुआत इतनी खामोशी से होती है कि दिल को भी उसकी आहट तेज से सुनाई देती है। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक ही मेज पर बैठे नजर आते थे। कभी किसी किताब पर बहस करते तो कभी जिंदगी के बारे में बातें। आरिफ को माहिरा की बातें सुनना इतना अच्छा लगता था कि बस पूछो ही मत। वो लड़की सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी सोच में गहराई थी। एक दिन कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए माहिरा ने पूछा, आरिफ, अगर तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आरिफ मुस्कुराया, शायद किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां लोग मेरे नाम और दौलत से नहीं, मुझे मेरे दिल से पहचाने। माहिरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, लोग दौलत पाने के सपने देखते हैं और तुम उससे दूर जाना चाहते हो? तुम्हें तो मिली हुई दौलत है, तुम फिर उसे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? दोनों हंस पड़े। दिन बीतते गए और अब उनकी दोस्ती कॉलेज में मिसाल बनने लगी थी। मगर ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, शायद दोनों को खुद भी पता नहीं चला। एक शाम कॉलेज का वार्षिक मुशायरा था। माहिरा मंच पर खड़ी थी। उसने पढ़ा, मोहब्बत नाम है उस रोशनी का जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन आरिफ के दिल में कुछ और ही गूंज रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वो माहिरा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। कार्यक्रम के बाद उसने माहिरा को कॉलेज की छत पर बुलाया। रात चांदनी में धुली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे, फिर आरिफ ने कहा, माहिरा, मैं नहीं जानता मोहब्बत कैसी होती है, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरी हर खुशी में तुम शामिल हो और हर ख्वाब में भी। माहिरा की आंखें झुक गईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और शायद उसी मुस्कान में उसका जवाब भी था। उस रात दो दोस्तों ने अपने दिल की बात कह दी थी और उनकी दुनिया पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो गई। लेकिन मोहब्बत का सफर हमेशा फूलों से नहीं सजा होता। कभी कभी रास्ते में कांटे भी आते हैं और उन कांटों से उनका सामना बहुत जल्द होने वाला था। के लिए आपको सुनना होगा कहानी का अगला पार्ट। आज के लिए यहीं तक।

0: जी हाजिर है सेगमेंट दिल से दिल तक, जिसमें हमारी थीम बड़ी प्यारी सी है। एक अजीब सा अधूरापन जो होता है वो कई बार अच्छा होता है, क्यों राशि?
1: बिल्कुल, कि जो हमारी लाइफ में शायद आ जाता है ना, कि शायद ये होता तो ये होता, तो वो थोड़ा अलग लगता है।
0: और वही आई थिंक वो अधूरापन जो होता है वही एक्साइटमेंट होती है लाइफ की। आप कोई स्टोरी देखें या लाइफ की कोई भी एक सिचुएशन कि शायद ऐसा होता, वो रहता है ना कि एक बार और मुलाकात की वो गुंजाइश रह जाती है उसमें।
1: और ये थोड़ा एक डायलॉग भी है ना, कि वो होती तो ये होता, वो होती तो ये होता, तो जो शायद हमारी लाइफ में आ जाता है, हमें लगता है कि वो शायद, कि ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन
0: कहीं
1: अगर वो हो जाता ना नंदनी,
0: ना
1: तो भी ऐसा ही लगता कि ये होता तो ज्यादा अच्छा
0: ये ना
1: होता।
0: होता तो एक होप रहती है ना।
1: तो नंदनी, हमारे बहुत सारे मैसेज भी हमारे दोस्तों के हमें आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने मैसेज किए। तो चलो नंदनी, जोड़ लेते हैं पहले नाम को, किसका मैसेज हमारे पास आया है।
0: पहला नाम देखो, मैं मैसेज पढ़ रही हूँ और ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है हमारी थीम को। हम अभी तुम बोल रही थी ना, वो होती तो ये होता, वो उस टाइप का ही एक मैसेज है।
1: ओ, प्यार भरा टाइप यानी का
0: जी जी
1: मतलब।
0: जी तो हमें मैसेज आया है सहारनपुर से, भेजने वाली हैं गुलनाज, आयजा, ईमान, आयत, आहिल। ये कह रही हैं कि मुझे प्यार हुआ था, वो तो हम समझ गए आपके मैसेज की वाइब से। और वो बोल रही हैं कि 10th स्टैंडर्ड में एक बड़ा क्यूट सा लड़का मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन और कंट्रोवर्सी ये थी कि मैंने उस समय स्कूल शिफ्ट किया था, मतलब 10th स्टैंडर्ड में मुझे कोई पसंद आया था, और उस दौरान जब मैंने 11th के आसपास शिफ्टिंग की तो उसका पता चला कि उसने कहीं और शिफ्ट कर लिया है। फिर बात नहीं हुई, बस एक उसकी रह रह के मुझे वो ग्लिम्स याद आती है, और जैसे आपने शायद गाना चलाया था तो उससे भी मुझे बहुत याद आया वो। तो बस यही शेयर करना चाहूंगी कि हाँ, एक याद आता है मुझे, एक बड़ा प्यारा सा इंसान।
1: लेकिन नंदनी, इस मैसेज में मैं एक बात में बड़ी कंफ्यूज हूँ। इतने सारे मैसेज, इतने सारे नाम इस मैसेज में जुड़े हुए हैं, आखिर ये किस्सा किसका है? तो शायद ये किसकी बात है?
0: ये इन्होंने मिक्स भेजा है हमारे लिए भी, शायद छोड़ दिया, शायद इसका, शायद इसका।
1: हाँ, मतलब इन्होंने पूरी थीम को अप्लाई किया है, हमारे लिए भी शायद रखा है।
0: टेक्निकली भी है और थ्योरेटिकली भी है।
1: माइंड ब्लोइंग। तो चलिए दोस्तों, अगले मैसेज को भी
0: माइंड ब्लो करते हैं अगले मैसेज से, है ना?
1: बिल्कुल, मतलब नंदनी, कुछ किस्से हमारे शायद से लेके बहुत सीरियस वाले होते हैं, कुछ प्यार भरे होते हैं, लेकिन कुछ तो बेहद फनी होते हैं। तो ये फनी सा किस्सा हमें आया है शाहजहांपुर से, और भेजने वाले हैं जन्नत, माहिला, आद्या और शिमरा। तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हो सकता है मैसेज के एंड तक हमें पता चल जाए आखिर ये किस्सा है किसका। तो ये बता रही हैं कि एक बार मेरे पापा के पास एक फोन आता है, और वो कहते हैं, मेरे पापा भी थोड़े फनी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उधर से फोन आया, और वे कह रहे हैं कि हेलो, हाँ जी, शर्मा जी। तो मेरे पापा ने कहा, नहीं, मैं तो शर्मा जी नहीं बोल रहा हूँ, तो आपने कहाँ फोन लगाया था? कि नहीं जी, हमें तो तुम शर्मा जी से ही लग रहे हो। अरे, मैं शर्मा जी हूँ ही नहीं, मैं तो वर्मा जी हूँ। अच्छा जी, तो शर्मा जी वर्मा जी कहाँ है? अरे, मैं वर्मा जी हूँ। बड़ा कंफ्यूजन है भाई माहिला, सीरियसली। तो दूसरे वाले कहते हैं, नहीं, मैं वर्मा जी हूँ, मैं शर्मा जी हूँ, और मेरे पापा आज तक सोच रहे हैं कि आखिर वो फोन किसी रिलेटिव का था। पक्का मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो किसी रिलेटिव का था, लेकिन आज तक ये शायद सिमटा नहीं है, और आज तक मेरे पापा और हमारी पूरी फैमिली शायद में कि पापा, वो आखिर फोन था किसका। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप लोग भी शायद में ही है, मतलब दोनों तरफ से जो शायद है वो बरकरार है।
0: तो ऐसा कर सकते हैं ना कि एक प्रैंक कॉल आप कर लिया कीजिए हर हफ्ते किसी रिलेटिव को, और कोई ना कोई जब बात करेगा तो पहचान में आ जाएगी कि हाँ, ये वही था शर्मा वर्मा वाला।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आपका इस तरह से हमारे दिल से दिल तक सेगमेंट को स्पेशल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और स्वागत भी है साथ साथ आपका दिल से दिल तक सेगमेंट में मैसेज के जरिए अपना नाम शामिल करने का।
0: और एक मैसेज हमारे पास आया है नजीबाबाद से, भेजने वाले हैं विशाल, अभिषेक, उज्जवल, दीपिका। ये कहते हैं विशाल जी कि मेरी मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम थी कुछ सालों पहले, और उनका इलाज भी हो रहा था, लेकिन उस दौरान लगा था उनको कि गैस है या कुछ है, तो थोड़ी ढिलाई हो गई, और उस ढिलाई के चक्कर में उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनको अटैक्स आ चुके थे हार्ट के 3, तो और उनको बचा नहीं पाए। तो ये खलेश हमेशा रहती है मुझे कि शायद मैंने कुछ कर लिया होता, शायद मैं थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा होता तो मेरी मम्मी आज मेरे साथ होती। चलिए कोई बात नहीं, ये बात तो चलती रहती है, आना जाना तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हाँ, आप ये शायद से ध्यान रखिए कि जब आपकी मम्मी जहाँ भी होगी, आई एम श्योर आपको बहुत प्यार करती होंगी, आपको बहुत सारी दुआएं देती होंगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों अपनों को खोने का डर और जो दुख है वो तो हम कभी उसकी भरपाई कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये दुख किसी के जीवन में ना आए, लेकिन ये जीवन की सच्चाई भी है कि कहीं ना कहीं हमको दुख होता है कि जब हमारे अपने हमारे इस धरती को छोड़कर, हमारे साथ को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस बात के हमें बेहद दुख है कि आपके साथ इस तरह की जो घटना है वो बीती। तो चलिए अगला मैसेज।
0: अगला मैसेज अभी लेंगे राशि, अभी क्योंकि हमारा सेगमेंट म्यूजिकल है तो इसको शायद में रहने दो कि शायद हमारा मैसेज इस मिनट पे पढ़ा जाए या इस मिनट पे पढ़ा जाए, और सुनवाते ही गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे आज हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: ऑर्डर ऑर्डर। पापा पापा, कुछ आवाज आ रही है, शायद शेर है यहाँ पे।
5: हाँ सही कह रहा। अब देख, तुझे बुद्धि से काम लेना है।
4: कैसे पापा?
5: चुपचाप जमीन पर लेटते हैं दोनों और सांस जो है रोक लेंगे। ठीक, रोक लिए तू भी?
4: ठीक है पापा, चलो चलो लेटते हैं।
6: देख, ना होशियार बन रहा, अभी बताता हूँ इसे। व्रत है मेरा बेटे, न तेरी तो मैं सारी होशियारी खींच लेता अभी। चल भागे से।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: आपको मजा आ रहा है और हमारे पास आ रहे हैं आपके मैसेज, और फटाफट से हम मैसेज पढ़ देते हैं। ये आया है नगीना से, अनिल विनोचा जी का। ये कहते हैं, कुछ लिख रहा हूँ, शायद शब्द अनिष्टता का प्रतीक है, जीवन से निकाल दे तो ही अच्छा हो। ओहो, कंट्रोवर्सी। चलो ये भी अच्छी बात है, ये शायरों की प्रॉपर्टी है। जीवन में भी ऐसा होता है, शायद मैंने ये ना किया होता, मतलब डिसीजन का प्रतिफल शायद होता, काश मैंने समय रहते ये कर लिया होता तो आज ये ना होता। मगर शायद सब शब्द बस एक सहारा है, मंजिल नहीं। और दो लाइन उन्होंने साथ में लिखी है, मेरा कातिल आज भी मुझे याद आता है, शायद कोई सजा बाकी है, याद दिलाता है।
7: जैसे नंदिनी, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद ये होता तो ज्यादा बेटर होता, ये होता तो ज्यादा बेटर होता। तो वही वाली बात अनिल विनोचा जी ने लिखी है कि मतलब हम हमेशा लाइफ में शायद के जरिए ही जीते हैं। अगला मैसेज हमें आया है राहु नांगली से, आचार्य सतवीर सिंह, अलका चौधरी, अक्षित चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का, भव्या, सीमा रानी, राघव चौहान, प्रिंस राजपूत, कशिश चौहान। ये हमें लिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारे शायद हैं, उनमें से मैं एक के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं दूध पीकर अपने घर से निकला, तो मैं घोड़ा बुग्गी से जा रहा था, तो मैं उस घोड़ा बुग्गी से गिर गया गड्ढे में। तो मुझे तभी से ऐसा महसूस होता है कि मेरी माता जी ने मुझसे कहा था कि दूध पीकर घर से बाहर नहीं निकलते, तो शायद मैं नहीं निकलता तो आज मेरे ये चोट नहीं लगती या ये इस तरह की घटना नहीं होती, तो शायद मेरे लाइफ से कभी जाएगा नहीं।
4: वो बात तो ठीक है कि मम्मी की बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसे अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये सोच लेना चाहिए, तो 5 मिनट रुक जाते तो चले जाते। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें ख़त के ज़रिए बता सकते हैं। जैसे कि आपने आज मैसेजेस किए हैं, आप हमें ख़त भी भेज सकते हैं। कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763, ये हमारा पता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
7: और दोस्तों, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स आप यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
4: और इस अंतिम गीत के साथ दीजिए अपनी साथी नंदिनी
7: और राशि त्यागी को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और प्रमोद भैया क्या हो रहा है?
1: भैया सब ठीक ठाक है, गर्मी हो रही है आजकल तो।
0: अच्छा भाई, देखो गर्मी की बात जहां तक है ना,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: आने वाले कई दिन हल्की हो जाएगी
1: अच्छा,
0: गर्मी।
1: मतलब थारे पास मौसम की चिट्ठी आ गई तो मैं पता।
0: बिल्कुल भैया, देखो मौसम मिजाज बदलेगा अपना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये बताओ भाई, आजकल आपने थोड़ा जो धान है ना, उसकी नर्सरी वर्सरी तो लगा दी होगी?
1: बिल्कुल लगा दी भैया, धान की नर्सरी तो लगा दी,
0: हाँ।
1: और भैया 10-12 दिन की हो गई।
0: अच्छा भाई, देखो अगर 21 से 25 दिन की नर्सरी हो जा तो भैया हमें उसे लगा देना चाहिए।
1: ठीक।
0: तो उससे पहले लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया नर्सरी में जो है कोई भी रोग ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे नुकसान अगर आने वाली फसल को हो, और भैया वो किसी भी तरीके से जो है खेत सूखा ना रह जा, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए।
1: बात तो थारी एकदम ठीक है भैया, देखो हर बात का ध्यान रख रहे हैं। और भैया हमने तो जो हम धान का बीज लेकर आए थे उसे भी भैया उपचारित करके बोया, बस वजह तो यही थी कि भैया कई बार बीज से भी रोग लग जाए वो ना लगे, इसलिए भैया हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, पानी भी टाइम पे लगा रहे हैं, और भैया खरपतवारों को भी समय समय पर निकाल रहे हैं उसमें से।
0: मतलब कहने का यह है कि आपने नर्सरी बिल्कुल चकाचक कर रखी है।
1: बहुत बढ़िया कर रखी है भैया, बस जैसे ही वो 21-22 दिन की हो जाएगी उसे लगाना शुरू कर देंगे।
0: बिल्कुल, लेकिन भैया लगाओगे तो जब पहले खेत की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी।
1: वो तो
0: ठीक,
1: जरूरी है ही भैया, देखो खेतों की तैयारी तो करनी करनी है।
0: तो भाई देखो खेत की तैयारी की बात ही हो, अगर आपके खेत में भैया हरी खाद में ढैचा है, सनई है, लोबिया है, और चीज खड़ी हो, तो उसकी जुताई भैया कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि भैया देखिए उसे सड़ने में भी कई दिन लग जाते हैं, उसकी बढ़िया से जो है हैरो से जुताई कर दो, और
1: हाँ
0: आजकल तो भैया रोटावेटर चल रहे हैं, उसे जो है मिट्टी में मिला दो
1: बिल्कुल
0: और पानी भर के छोड़ दो,
1: जी जी जी
0: तो भैया उससे होगा यो कि जो है वो 8-10 दिन में,
1: गल
0: ग्यारह
1: जाएगी
0: बारह दिन में गल के बढ़िया हो जाएगी,
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद खेत की तैयारी कर लो।
1: सही कह रहे हो भैया। देखो ये काम तो करने ही चाहिए, क्योंकि भैया खेत की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ानी है तो ये काम करने चाहिए। बाद में तो भैया हम देखो उसमें तमाम तरह के रासायनिक उर्वरक डालते रहे, फिर वो मजा ना आए करता है जो भैया हम खेत की तैयारी के समय करते हैं।
0: बिल्कुल, और भाई देखो एक बात आप शायद भूल रहे हैं
1: क्या
0: कि
1: भैया?
0: आज मंगलवार है, और
1: हाँ
0: भैया प्रत्येक मंगलवार को भैया बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे यहाँ क्या होता वाला?
1: बिल्कुल भैया, इसकी पाठशाला चल रही है, हम अपने किसान भाइयों को ये पाठशाला सुनवा रहे हैं, और आज भी ये पाठ लेकर आए हम।
0: बिल्कुल, तो भैया बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का आज है पांचवा पाठ, तो भैया अपने और श्रोताओं के बीच में से फासला थोड़ा कम करते हैं और सुनवाते हैं भैया उन्हें आज का यो पाठ।
1: ठीक है भैया।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
0: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है,
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
4: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में, और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
1: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
2: तो मैं देखो प्रत्येक मंगलवार की तरह भैया आज भी हम यो धान की पाठशाला लेकर हाजिर हो गए हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, और देखो किसान भाई आज सोच रहे हैं कि भैया हमने धान की रोपाई के संबंध में जानकारी ले ली, नर्सरी के संबंध में जानकारी ले ली।

0: खेत की तैयारी के संबंध में जानकारी ले ली। भला आज कौन सी जानकारी इस पाठशाला में मिलने वाली है, यू सोच रहे हैं।
1: भाई देखो, बासमती धान की रेडियो कृषि पाठशाला, इसका हर पाठ एक नई जानकारी लेकर आता है भैया।
0: बिल्कुल, और जानकारी विशेष जानकारी होती है जिससे किसान भाई लाभान्वित भी होते हैं।
1: अब देखो भैया, हम अपनी बासमती धान से भैया उत्तम उत्पादन लेना है,
0: बिल्कुल लेना,
1: बढ़िया उत्पादन लेना है, और साथ ही भैया रसायन मुक्त उत्पादन लेना है।
0: ठीक कह रहे हो। और भैया देखो, रसायन मुक्त उत्पादन लेने के लिए हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
1: भाई देखो, हम रोग व कीट नियंत्रण के लिए भाई एक तो जैविक उपाय अपनाने पड़ेंगे, साथ ही भैया अगर हम ये रसायनों का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है
0: जी,
1: तो भैया हम संतुलित मात्रा में, और जो भैया हमारे संतुलित रसायन है केवल उन्हीं का उपयोग करना है।
0: सही कह रहे हो। और भैया देखो, तुमने इशारा तो कर ही दिया, आज की जो जानकारी है उसका विषय भी कुछ ऐसा ही है।
1: बिल्कुल भाई, देखो आज का विषय है बासमती में रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां।
0: तो भाई, इस संबंध में जानकारी देने के लिए डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में भैया कार्यक्रम में आ गए।
1: बिल्कुल भैया आ गए हैं,
0: और थारी बगल में को बैठ गए।
1: भाई देखो, हम थारा इशारा समझ रहे हैं। भाई देखो, डॉक्टर नेत्रपाल जी हमारी बगल में बैठे हैं, हमारे साथ में बैठे हैं, तो भैया बातचीत उनसे हम ही कर ले।
0: जी जी जी,
1: है ना भैया, यू तो
0: बिल्कुल भैया बातचीत करनी शुरू करो।
1: तो भाई आओ शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला।
0: ठीक है भाई।
1: किसान भाइयों, बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और किसान भाइयों, बासमती धान से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हमें बासमती धान में जो कीट और बीमारियां लगती हैं उनके नियंत्रण के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना होता है। और इन रसायनों का इस्तेमाल हम किस तरीके से करें, कौन कौन सी सावधानी बरतें, और संतुलित मात्रा में किस तरीके से हम रसायनों का प्रयोग करें जिससे कि हम विदेशों में उनकी अच्छे तरीके से बेच कर सकें, तो इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा, जो कि वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सुविंद्र जी, आकाशवाणी नजीबाबाद के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हम बासमती के किसानों के लिए आपके द्वारा आवाज अपनी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बासमती धान में पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है
1: जी,
2: उसमें किसान भाइयों को सावधानी बहुत जरूरी है, सही समय सही मात्रा और सही दवा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके द्वारा जो हम एपिसोड चला रहे हैं उनके द्वारा भी हम उनको बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या सावधानी बासमती धान में करनी है
1: जी। देखिए, रसायन मुक्त बासमती धान उत्पादन का हमारा लक्ष्य है और उद्देश्य है, तो रसायन मुक्त बासमती धान हम ले सकें और संतुलित मात्रा में अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो रसायनों का प्रयोग हम करते हैं, तो किस तरीके से हमें ये प्रयोग करना है और कौन सी सावधानी हमारे किसान भाइयों को इनके प्रयोग में बरतनी है डॉक्टर साहब?
2: सबसे पहले हमें अपने धान में
1: जी
2: बीमारी और कीट की पहचान करना जरूरी है, जिससे हम उसके लिए वही दवा प्रयोग कर पाएं जो उसके लिए जरूरी है।
1: अच्छा,
2: किसानों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत कम परसेंटेज में ऐसा पता है कि कौन सा तो बीमारी है और कौन सा कीड़ा है, जिसकी वजह से किसान भाई कीड़े को बीमारी बताकर दुकानदार से दवाई मांगते हैं और बीमारी को कीड़ा बताकर दवाई मांगते हैं, जिसकी वजह से दो दवाइयां उनको लगानी पड़ रही हैं
1: जी।
2: तो हम यही अनुरोध करते हैं कि हम बासमती धान की बीमारियों को, 3 से 4 मुख्य बीमारी हैं और 3 से 4 मुख्य कीट हैं जिनकी वजह से उन्हें पेस्टिसाइड्स का दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है।
1: अच्छा,
2: उनमें सावधानी बरतने के लिए सबसे पहले पहचान करना बहुत जरूरी है। यदि किसान भाइयों को पहचान करने में कोई समस्या आती है तो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ आपके माध्यम से हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने किसान भाइयों को दे रखा है, और यदि आप चाहेंगे तो हम उसको अभी बता सकते हैं, जो भी किसान भाई जब आपके एपिसोड को सुनेंगे तो वो आप उस पर हमें फोटो भेजकर फोन करके ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये हमारे खेत में कौन सी बीमारी है जिसको हम बता सकें कि क्या है और इसके लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करना है
1: जी।
2: हमारा नंबर है 8630 64 17 98 8630 64 17 98
1: जी।
2: इस पर किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अभी बासमती धान की खेती की तैयारी शुरू हो रही है, नर्सरी डाल रहे हैं, इससे लेकर के हमें कटाई तक जो समस्याएं, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, और यदि कोई चाहेंगे तो हम सॉफ्ट

0: उनको अपनी बुकलेट भी दे सकते हैं। और हमारे द्वारा एक चैनल सर ने बनाया हुआ डॉक्टर रितेश शर्मा बासमती यूट्यूब पर, वो अपने खेत में उसके माध्यम से भी अपनी बीमारियों के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे किसान भाई BEDF मेरठ से जुड़ सकते हैं और फोटो भेजकर वो अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। अब देखिए, बात ये आती है डॉक्टर साहब, देखिए जैसे कि हमारी बासमती धान की रोपाई होगी और हम उसकी देखभाल होती है, तो कौन कौन से ऐसे मुख्य बीमारियां हैं जो कि हमारे खेत में लगती हैं, बासमती में लगती हैं, और कौन कौन से ऐसे मुख्य कीट हैं जो कि नुकसान हमारी बासमती धान में पहुंचाते हैं?
0: मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि नर्सरी मैनेज से ही कीट का और बीमारी का प्रकोप शुरू हो जाता है बासमती में।
1: जी
0: जैसे हमने अगर अच्छा बीज नहीं लिया है, बीज को उपचारित करके नहीं बोया है, तो शुरू में नर्सरी में बासमती की कुछ वैरायटीज में बकानी जैसी बीमारी की समस्या आती है।
1: अच्छा।
0: वो हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है। उसके लिए अभी जो किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं, सबसे पहले अच्छा बीज प्राप्त करें, दूसरा बीज को उपचारित अवश्य करें, बीज के साथ साथ अपना जिस एरिया में नर्सरी डाल रहे हैं उस नर्सरी एरिया को भी उपचारित करें,
1: अच्छा।
0: फील्ड को उपचारित करें। उसमें ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट रिजल्ट है। ट्राइकोडर्मा को गली हुई गोबर की खाद में

0: जिसके लिए किसानों के कंधों से स्प्रे मशीन नहीं उतरती है,
1: जी,
0: अनावश्यक ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिनकी वजह से हमारी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान और हमारा पेस्टिसाइड्स हमारे चावल में आ रहा है, उसके लिए प्रबंधन करना है कि वो फेरोमोन ट्रैप लगा दें,
1: जी,
0: क्योंकि उसका जो एडल्ट है नर्सरी एरिया में ही पत्ती पर ऊपर एग दे जाता है।
1: अच्छा,
0: उसके लिए किसान भाई यदि फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो वहीं पर उसका प्रबंधन हो जाएगा, पता चल जाएगा। दूसरा, नर्सरी जब हमारी 18 दिन की हो जाए तो किसान भाई उसमें हल्का कम दवाई का प्रयोग होगा, क्लोरेंट्रोप्रिल का एक स्प्रे कर सकते हैं या दूसरा आता है एक केमिकल उसका फ्लुवेंडामाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या कम मात्रा में उनकी काफी बचत हो सकती है और वह दवा 15 से 20 दिन उनके फील्ड में बचाएगी। फेरोमोन ट्रैप का करेंगे तो एडल्ट कैच हो जाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। दूसरा करना है कि नर्सरी लगाते समय किसानों को अपनी नर्सरी की ऊपर से 2 से 3 इंच की टिप तोड़ करके मिट्टी में दबा देनी चाहिए, तो ये हमारे इंसेक्ट के लिए, हमारे जो तना छेदक स्टेम बोरर से जो नुकसान हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड दवाइयों का प्रयोग किसानों को करना पड़ता है, उससे काफी हद तक उनको फायदा मिलेगा। ये इस तरह से दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, कम दवा लगानी पड़ेगी और फायदा अधिक होगा।
1: बिल्कुल, तो एक डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से हम इसकी देखभाल कर सकते हैं और बिना रसायन का इस्तेमाल किए हम जो है इसका प्रबंधन कर सकते हैं, तनाछेदक कीट का प्रबंधन कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से। अब बात यह आती है डॉक्टर साहब, मान लीजिए हमें किसी वजह से रसायन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हम छिड़काव करते हैं, बुरकाव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को दवाई का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या सावधानी बरतनी है?
0: किसान भाइयों को सबसे जरूरी जो मैंने पहले बताया कि उनको ये पता होना चाहिए कि हम किसके लिए दवाई लगा रहे हैं।
1: जी,
0: यदि कौन सा कीट है उसके लिए सेलेक्टिव दवाई लेनी है, जो हमारी बासमती में रिकमेंडेड दवाइयां हैं, जो हमारे बासमती चावल में प्रतिबंधित दवाइयां उनको नहीं लेना है।
1: अच्छा,
0: रिकमेंडेड हैं उनको लगाना है, जिस कीट के लिए लगाना है उसके लिए हम दवाई बताते हैं और उन दवाइयों का प्रयोग करने से बचाव होता है। अधिकतर किसान ऐसी दवाई लगा देते हैं जिनका लगाने से जो सेलेक्टिव दवाई है उनको फिर बाद में लगाते हैं वो काम नहीं करती हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने आपको बताया आप बकानी के लिए उपचारित करेंगे, हमारी मिट्टी को फील्ड को उपचारित करेंगे, इनसे बचाव हो जाएगा
1: जी,
0: टाइकोडर्मा से हो जाएगा, कार्बन डाइजिम से हम लोग सीड को ट्रीट करके उससे हमारा सीड उपचारित हो जाएगा, तो ये बीमारियों का शुरू में हमारा बचाव करेंगे। दूसरा, हमारे जो कीट हैं जो सबसे ज्यादा मेजर नुकसान कर रहा है धान में, वो सिर्फ स्टेम बोरर कर रहा है, तना छेदक
1: जी,
0: उसके लिए क्लोरेंट्रोप्रिल या फ्लुवेंडामाइड
1: जी,
0: तो इनके लिए ये शुरू में कर सकते हैं, कारटाप शुरू की अवस्था में डाल सकते हैं स्टेम बोरर के लिए
1: जी,
0: ये इंसेक्ट के लिए आप प्रयोग करा सकते हैं किसानों को। दूसरा, प्रबंधन में फेरोमोन ट्रैप, जो जैविक तरीके से फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो इंसेक्ट हमारा कैच हो जाएगा
1: जी,
0: ये जरूरी है जो किसान भाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को इसका इस्तेमाल करना है और जो स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक कीट हमारे खेत में लगता है, हमारी बासमती धान में लगता है, तो इसका प्रबंधन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और देखिए डॉक्टर साहब, बात यह आती है कि सही समय पर अगर हम काम करें तो वो उसका सही रिजल्ट मिलता है, सही लाभ मिलता है, तो अगर हमारे किसान भाई रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा समय बिल्कुल सही रहता है, किस समय हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करें?
0: ये बहुत जरूरी है किसान भाइयों के लिए, जो दवाई का प्रयोग करना है
1: जी
0: वो दोपहर के बाद करना है, स्प्रे का समय दोपहर के बाद रखना है, सुबह के समय ना करें, दोपहर में ना करें
1: जी,
0: क्योंकि इस समय कोई किसान भाई पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करता है तो सबसे पहले तो जो करने वाला है उसको ही नुकसान होगा और फिर हमारी फसल को भी नुकसान होगा
1: जी,
0: तो दोपहर के बाद करें इस समय पेस्टिसाइड्स का जो भी प्रयोग करना है, केमिकल्स इंसेक्टिसाइड का भी करना है, तो 2 बजे के बाद में करें, ये किसान भाइयों के लिए सलाह है हमारी। और सही दवा का, सही मात्रा का, सही समय पर प्रयोग करेंगे और सही पानी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित उनको लाभ मिलेगा। और साथ अनुरोध ये भी है कि यदि जानकारी लेकर के करते हैं तो निश्चित है कि उनका एक तो सबसे पहले आर्थिक लाभ होगा, जब आर्थिक लाभ होगा तो निश्चित है उनको उसका फायदा मिलेगा। और किसान भाई अगर ये बताएंगे कि मेरे खेत में ये बीमारी है और जब दुकानदार से कहेंगे तो वो उसको फिर वही दवाई देगा
1: जी,
0: कि जिसकी उसके लिए आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप किस तरह से प्रयोग करना है ये भी एक सबसे जरूरी है किसान भाइयों के लिए। हम अनुरोध करते हैं किसान भाई सबसे पहले मास्क लगाकर जरूर दवाइयों का प्रयोग करें, बिना मास्क के दवाइयों का प्रयोग ना करें, अपना

0: चश्मा लगा लें या जो भी सेफ्टी के लिए उनके लिए उपलब्ध हैं, हेलमेट से भी करते हैं बहुत, क्योंकि जो अधिकतर टैंकर से स्प्रे करते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है उसके लिए,
1: जी
0: उनको लगता है कि अभी हमें कोई इसका नुकसान हो रहा है, हैबिट्स में आ जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आगे चल के बहुत उनके स्वास्थ्य पर पड़ते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, आपने साइड इफेक्ट की बात कही है, तो देखिए जब हम रसायन का इस्तेमाल करते हैं खेत में, तो कई बार हमारी आंखों में खुजली सी होने लगती है, और कई बार हमें जो हमारे शरीर है उन पर, हाथों पर, पैरों पर खुजली सी होती है, आंखों में जलन होती है। तो अगर ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तो इस दशा में हमारे भाई क्या करें?
0: उनको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए, पानी का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कोई भी कोताही ना बरतें किसी के कहने में नहीं, क्योंकि वो जब हम किसी कीट को मारने के लिए जहर का प्रयोग करते हैं तो हमारे ही शरीर पर उसका दुष्प्रभाव निश्चित है,
1: जी
0: इसीलिए सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, और अगर हम सावधानी के साथ में रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो सही रिजल्ट मिलेगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी। तो चल चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे भाइयों को क्या संदेश, क्या राय मशवरा देना चाहेंगे रसायनों के बारे में?
0: हम सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सबसे पहले फसल में बीमारी और कीट की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, उनको पहचान कर लें, और उसके बाद उस कीट या उस बीमारी के लिए सही दवाई का प्रयोग जानकारी के अनुसार करें। अगर उन्हें कोई भी परेशानी पहचान करने में आ रही है या कोई दवाई उनके लिए गलत देने का प्रयास कर रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और नियर उनके कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ से उनका कोई लालच नहीं है। दवाई कंपनियों के माध्यम से हमारे जनमानस के लिए ऐसी दवाइयों का प्रयोग ज्यादा हो गया है, अधिक मात्रा में प्रयोग हो गया है, जो हमारे पूरे एग्रीकल्चर की वजह से मेडिकल इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिल गया है।
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को सावधानी के साथ में सही रसायन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमें बिना किसी नुकसान के सही रिजल्ट

0: जांच होती है।
1: जी
0: तो भैया अगर रसायनों के ज्यादा अंश उसमें पाए जाते हैं, उसकी मात्रा पाई जाती है, तो भैया हमारा ऑर्डर फेल हो जाता है, नमूना फेल हो जाता है।
1: बिल्कुल सही बात आपकी, हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। भाई देखो, अगर हम निर्यात योग्य खेती कर रहे हैं तो भैया हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो उत्पाद है, बासमती का जो हमारा चावल है,
0: जी
1: वो जहां हम भेज रहे हैं, जिस भी देश में उसको भेजना है, वहां भैया वो पास होना चाहिए और बासमती की खुशबू देश विदेश में फैलनी चाहिए।
0: तो मैं देखो, हम सावधानी के साथ में एक तो रसायनों का इस्तेमाल करना है,
1: बिल्कुल
0: है ना भैया, शाम के समय रसायन डाल रहे हैं, साथ ही भैया दस्तानों का इस्तेमाल करना है, आंखों में चश्मे का इस्तेमाल करना
1: है, जी जी,
0: और प्रयोग के बाद भैया हम अच्छे तरीके से हाथ पैर धुलने हैं, स्नान करना है, और जो भैया कपड़े हमने पहन रखे थे वो कपड़े हम भैया बदलने हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सबसे भैया महत्वपूर्ण बात यह हो कि भैया हम संतुलित मात्रा में और जो हमारे सुझाए गए रसायन है केवल उन्हीं का इस्तेमाल करना भैया।
1: और भैया अपने स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना, दोपहर में जितनी गर्मी पड़ रही ना भैया, इस गर्मी के मौसम में भी हमें छिड़काव नहीं करना।
0: बिल्कुल भैया। तो देखो अगर हमारे किसान भाई जैसे भैया लाइट ट्रैप है, या भैया दूसरे हमारे और भी जैविक उपाय हैं, अगर उनको अपनाते हैं,
1: जी
0: जैसे फेरोमाइन ट्रैप है भैया, या भैया एक वो हमारा जैविक कार्ड होता है उसे लगाते हैं, तो भाई इस तरीके से भैया हम रसायनों का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं और रसायन मुक्त बासमती धान का उत्पादन कर सकते हैं भैया।
1: बिल्कुल आपने ठीक कहा भैया। और देखो किसान भाई सोच रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस पाठशाला से हमें मिल रही है, तो देखो अब तो हम एक ही बात कहेंगे अपने किसान भाइयों से।
0: वो क्या भैया?
1: अरे वो ये है कि किसान भाई अगर अधिक जानकारी बासमती के संबंध में लेना चाह रहे हैं तो भैया प्रत्येक मंगलवार को हमारे इस कार्यक्रम में जानकारी ले सकते हैं और सुन सकते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम
2: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
3: अरे मास्टर जी।
4: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
4: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है,
4: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
1: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
7: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
7: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ। तो किसान भाइयों ने भैया अभी बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का आज का पांचवा पाठ सुना।
1: बिल्कुल, और भैया देखो आज के पाठ में किसान भाइयों ने जाना कि बासमती की फसल में रसायनों का जो हमें इस्तेमाल करना, तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी।
7: बिल्कुल, देखो भाई एक बात मैं आपको बताऊं प्रमोद भैया, देखो हमें ऊपर वाले ने कितनी बढ़िया जगह पैदा करा।
1: हाँ,
7: कि देखो बासमती का जो चावल है
1: जी,
7: उसे पूरी दुनिया खाती और इसे पैदा करने वाले केवल हम और जरा सा हिस्सा पाकिस्तान का।
1: बिल्कुल भैया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव वाली बात है, और इसमें हम सब किसान भाइयों को देखो भैया गौरवान्वित होना चाहिए। और जब ऐसी बात है तो बासमती धान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए और खेती भी अच्छी करनी चाहिए।
7: बिल्कुल, तो भैया देखो यही कारण है कि हमें जो है कृषि की अगर हम बात करें तो उसके निर्यात से यानी कि उसके बेचने से विदेशों में देने से जो पैसा मिलता है
1: जी,
7: उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है बासमती धान की रहती है, और बासमती के चावल को हम अच्छे कीमत पर बाहर बेचते हैं, और भाई विदेशी धन हमारे यहाँ आता है
1: जी,
7: और भारत की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में भूमिका निभाते हैं।
1: और देखो भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छी किस्म का बासमती पैदा करने के लिए खेत की तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए।
7: बिल्कुल,
1: साथ ही साथ अच्छी वैरायटी के साथ भाई हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए और रसायनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए।
7: भाई देखो, हम अगर इस बात को समझ जाएं कि भैया हम ही हैं, दूसरा आदमी चाह कभी पैदा नहीं कर सकता
1: जी जी जी,
7: तो भैया उसे पैदा करने में क्या जा रहा, और भाई तुम्हें तो अच्छे पैसे मिलेंगे।
1: हाँ,
7: तो आजकल विदेश में भेजने की भैया तरकीब भी बहुत हो गई, एफपीओ बना लो।
1: बिल्कुल,
7: और अपने माल को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दो
1: जी जी जी,
7: और अच्छी कीमत भी ले लो, बस आपको करना ही है।

0: है कि रसायन मुक्त बासमती उगानी है।
1: और देखो, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का बासमती का चावल पैदा कर दिया तो भैया देखो, वो खाने में भी स्वादिष्ट होगा, उसकी खुशबू हम जहां अपने आसपास में फैला सकते हैं, वहीं भैया देश विदेश में भी उसकी खुशबू को फैला के हम नाम रोशन कर सके हैं।
0: बिल्कुल, देखो भैया, हमने जो है पिछले साल जो बासमती के जनक कहलाते हैं वीपी सिंह जी, उनको बुलवाया था, और भाई हमने जब बातों बातों में उनसे जाना था कि भाई ये कैसे दिमाग में आई आपके कि भाई इतना बढ़िया चावल होना चाहिए जो मुलायम भी हो और भैया जैसी दाढ़ के नीचे रखें एकदम आराम से खाया भी जावे और खाने के बाद पेट में भी आराम देवे, स्वाद भी बढ़िया हो, महक भी हो, मतलब जितने भी गुण चावल में होने चाहिए सारे हों
1: जी,
0: और वो बासमती मिल रहे हैं।
1: और भैया वो उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद में सारी गुणवत्ता उसके अंदर डाली, और उसकी तैयारी करने के बाद में जब उसका उन्होंने उसको तैयार करा तो देखो भैया आज वो फली फूल रहा।
0: बिल्कुल, देखो उन्होंने एक बात बताई थी कि भैया बस एक इत्तफाक सी हो गया कि भैया हमारे फूफा जी आए हुए थे, और जब आपको पता ही है कि जब फूफा जी हमें तो वो थोड़ी फूफांसी कर रहे हैं, खास बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई तुम वैज्ञानिक तो हो, ऐसा चावल पैदा करो जिसकी खुशबू भी बढ़िया हो, लंबा भी हो, और भाई गल भी जा आसानी से, खाने में भी स्वाद हो। तो मैंने सोचा भाई बात तो ये कायदे की कह रहे हैं, क्यों ना इसे जो है भैया अप्लाई कर लिया जाए।
1: बिल्कुल,
0: और उन्होंने भैया प्रयोगशाला में उसे अप्लाई करा, और आज उसी की देन है, वो नो फूफा जी का आपने धन्यवाद करना चाहिए कि पूरी दुनिया को वो चावल खाने को मिल गया।
1: तो देखो भाई, बासमती की बात तो हमने कर ली, पर भैया तुम आजकल मौसम को देखो।
0: हाँ।
1: मौसम हो रहा है गर्मी का,
0: ठीक,
1: और इस गर्मी के मौसम में भाई देखो, चावल तो हर मौसम में खावे,
0: ठीक,
1: पर गर्मी के मौसम में अगर हम फलों की बात करें या भैया सब्जियों की बात करें तो खीरा ककड़ी तरबूज यो तो भैया बिल्कुल भूल नहीं सकते ना
0: भाई। आजकल खीरा ककड़ी और तरबूज का आनंद लेना भी चाहिए, और भाई ये आनंद जब लिया जाएगा, विशेष रूप से देखो भाई, देखो ऊपर वाली की बात है, ये भी वहाँ पैदा होता है जैसे गंगा के किनारे का रेत का क्षेत्र
1: जी, जी, जी,
0: है ना, और भैया जो मुलायम ऐसी धरती है, जो रेतीली जमीन जिसे कहते हैं, वहाँ होता है, और हमारे किसान भाई भैया इसकी फसल लेते भी हैं।
1: जी, ले भी रहे हैं।
0: हाँ, देखो एक तरबूज की बेल पर भैया कई कई कुंटल तरबूज आ जाते हैं, लेकिन भैया वो जब आते हैं जब उनकी निराई गुड़ाई बढ़िया हो, उनमें सामायिक कार्य बढ़िया हो, उनकी रोगों से रक्षा हो जा, और भैया अच्छी देखभाल हो।
1: देखो भाई, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, तो गर्मी के इस मौसम में तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपनी इन तरबूज की बेलों से, या जो हम खीरा ककड़ी की बात कर रहे हैं उस बेल से अच्छी फलत लेने के लिए भाई, एक तो हमें खेत में नमी बनाकर रखनी
0: बिल्कुल
1: पड़ेगी। उसके बाद भैया जो खरपतवार वगैरह उग आए हैं उसको भी हम नियमित रूप से निकालते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: ठीक।
1: और एक बात और है भाई, अगर तरबूज को देख लें तो तरबूज में क्या है कि वो जब जमीन के संपर्क में आवे है भाई, उसका भारी फल रहे तो उस फल को नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहे, उसमें चाहे वो रोग लग जाए, कीट लग जाए, उससे वो खराब हो सके।
0: ठीक ठीक ठीक।
1: इसलिए ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि उस फल के नीचे तो पुराल रख दें या भैया घास रख दें तो वो फल सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर सामान्य खेत की तरह से सिंचाई कर देंगे, आपको मान लो पानी भी देना है और पानी के संपर्क में आ गया फल
1: जी,
0: तो भैया उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: हाँ।
0: तो हमारे किसान भाई बड़े बड़े तेज हो भैया, उसकी भी तोड़ ढूंढ ली।
1: हाँ।
0: और तोड़ ये कि उन्होंने प्लास्टिक का एक पाइप ले लिया।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: और पाइप को भैया जो जड़ है ना
1: जी,
0: उसके आसपास थोड़ा सा रेतीली जमीन में गाड़ा और ऊपर से भैया पानी से भर दिया, तो धीरे धीरे धीरे धीरे करके जड़ के चारों तरफ फैल जा, और जो फल लगा वो दूर लगा, तो जड़ को पानी भी मिल गया और भैया फल को हमारे गिल्लापन भी नहीं मिला,
1: बिल्कुल फल भी हमारा बढ़िया हो गया।
0: हाँ।
1: तो देखो किसान भाई तो बहुत समझदार हैं, और भाई कहा भी जावे है कि काम कोई भी कर लो, करने से उसको बहुत ज्यादा सीखा भी जावे है, करते करते सीख ही जा। तो किसान भाई भी भैया देखो उनका अनुभव है और वो काम को करते चले आ रहे हैं, हम तो बस इतना कहेंगे कि भाई जो भी काम करें वो समय के हिसाब से करें, और अपनी इन बेलदार सब्जियों की या भैया जो हमारी ये फल हैं इनकी सही तरीके से देखभाल करके अच्छा उत्पादन लें।
0: बिल्कुल, तो भाई देखो बातें तो बतेरी हो गई, अब कहो तो कुछ और सुन ले।
1: अरे भैया संदेश भी तो सुन ले।
0: ठीक है भैया।
2: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व

0: जाए, मिट्टी को स्वस्थ बनाए।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
0: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: तो गंगाराम भैया, देखो ये संदेश हमने सुन लिए।
9: बिल्कुल।
8: अब भैया कुछ और भी सुनाओगे एक ना?
9: मैं देखो, अब बातें बतेरी हो गई, अब थोड़ा सा मनोरंजन की बात होनी चाहिए।
8: हाँ, वही तो बात है भैया। तो फिर आज तो कोई रागनी वागनी सुनवा रहे हो ना?
9: बिल्कुल। तो भैया सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी।
8: ठीक है भैया।
10: और ये पे मेरा

0: हे बेबे मेरा उद्धम सिंह भाई, देशभक्ति की ओर रागनी मैनपाल और साथी की आवाज में हमने भी सुनी, हमारे भाइयों ने भी सुनी और गंगाराम भैया रागनी सुनकर आनंद आ गया।
1: बिल्कुल भाई, देखो देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है
0: जी
1: जो भैया हर व्यक्ति के अंदर ना एक विशेष प्रकार की ताकत ला देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भाई देखो, अब चलते चलते कुछ मौसम संबंधी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देना चाह रहे हैं।
0: हाँ भैया, यो मौसम की जानकारी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
1: ठीक,
0: और भैया 14 जून तक के मौसम के बारे में इन्होंने बताया है कि आंधी बिजली और तूफानी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।
1: बिल्कुल
0: और भाई देखो, ये कह रहे हैं कि इस मौसम में, मतलब कि 14 जून तक के मौसम के बारे में जो बताया है
1: ठीक।
0: कि गरज और बिजली, तेज हवा, धूल भरी आंधी चल सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है, इसलिए किसान भाई सिंचाई और रासायनिक स्प्रे से बचें।
1: बिल्कुल, तो कुल मिला के ये है कि भैया 13-14 तारीख के आसपास बारिश होने की संभावना है। ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेती किसानी के काम करें। और भाई देखो, आपकी कोई खेती किसानी, पशुपालन, बागवानी आदि संबंधी समस्या है तो भैया आप हमें खत जरूर लिख दें। खत लिखने के लिए भैया पता बता दो।
0: हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467।
1: बिल्कुल, इसके अलावा भैया आप जो है हमें फोन भी कर सकते हैं और माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को भैया हम आपके जो फोन संबंधित समस्या होती है उनका जवाब देते हैं। पहले शुक्रवार को हेलो किसान होता है और भैया तीसरे शुक्रवार को हेलो गन्ना किसान होता है।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: भैया उसके लिए फोन नंबर बता दो।
0: नंबर है 94-570-78-288। और भाई इस नंबर पर किसान भाई हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसके अलावा भैया हमें जो है आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। और भाई अब धीरे धीरे समय जो है वो समाप्ति की तरफ है।
0: बिल्कुल। तो भाई अब कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं और दोनों भैया कर लेते हैं
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: किसान श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए रचना देवी की वार्ता। विषय है भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा।
1: वह शास्त्र जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए विचारों की उचित योजना का निरूपण होता है न्यायशास्त्र कहलाता है। न्याय 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। विचारों की उस प्रणाली का नाम न्याय है जिसमें वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए सभी प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र भाष्य में महर्षि वात्स्यायन कहते हैं, प्रमाणैरर्थं परीक्षणं न्यायः। आचार्यों ने विद्या के 4 विभाग बताए हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। प्रत्यक्ष दृष्ट तथा शास्त्र श्रुत विषयों के तात्विक रूप को अवगत कराने वाली विद्या का नाम आन्वीक्षिकी है। इसी विद्या को न्यायशास्त्र अथवा न्याय विद्या कहा जाता है। जैसा कि महर्षि वात्स्यायन ने कहा है, प्रत्यक्षागमाभ्याम इच्छितस्य अर्थस्य आन्वीक्षणम् अन्वीक्षा तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकी न्याय विद्या न्यायशास्त्रम्। अन्वीक्षिकी में स्वयं न्याय तथा न्याय प्रणाली से अन्य विषयों का अध्ययन होने के कारण उसे न्याय विद्या या न्यायशास्त्र कहा जाता है। अन्वीक्षिकी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वात्स्यायन ने चाणक्य के कथन को उद्धृत कर अन्वीक्षिकी को समस्त विद्याओं का प्रकाशक, संपूर्ण कर्मों का साधक और समग्र धर्मों का आधार बताया है। प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रयः सर्व धर्माणाम, विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। सबसे प्राचीन एवं न्यायशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। गौतम ऋषि द्वारा प्रवर्तित न्याय दर्शन एक महत्वपूर्ण दार्शनिक धारा है जो तर्कशास्त्र ज्ञान मीमांसा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें ध्यान आत्मा से संपर्क पर भी बल दिया जाता है। गौतम के न्याय सूत्र को इस दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इन सूत्रों पर महर्षि वात्स्यायन का भाष्य है, जिन साधनों से हमें गे तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि नियते विवक्षितार्था अनेन इति न्यायः, अर्थात जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित तत्व के पास पहुँचते हैं उसे जान पाते हैं वही साधन न्याय है। दूसरे शब्दों में जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं, अथवा प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। ये मुख्य रूप से तर्कशास्त्र की ज्ञान मीमांसा है। इसे ही तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या तथा आन्वीक्षिकी कहा जाता है। न्यायशास्त्र के विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, आद्य काल, मध्य काल तथा अंत्यकाल। 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय आद्यकाल कहलाता है। इसी काल को प्राचीन न्याय भी कहा जाता है। मध्यकाल का न्याय सांप्रदायिक न्याय के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन न्याय की उत्तर शाखा है। अंत्यकाल के न्याय को नव्य न्याय कहा जाता है। प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में न्याय को धर्म से भिन्न नहीं माना जाता था, अपितु न्याय को धर्म के समतुल्य माना जाता था। धर्म का पालन करने का उद्देश्य न्याय को बनाए रखना तथा वैदिक युग में वरुण को प्रशासन और न्याय का अधिष्ठात्री देवता माना गया है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में राजा इस लोक में राज्य करता है, जो पापियों को दंड देता है और सज्जनों की रक्षा करता है। महावीर चरित नाटक में स्पष्ट है कि जो व्यक्ति प्रजाजनों के विरुद्ध अनुचित आचरण, जानबूझकर किया जाने वाला पाप और अपराध करता है, राजा उसको अवश्य ही दंड देता है। प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था आप्तवाक्यों के रूप में श्रुति साहित्य, वेदों, ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों में दी गई थी। आगे चलकर जिनका स्पष्टीकरण नियमों तथा उपनियमों के रूप में स्मृतियों, धर्म सूत्रों तथा वेदांगों आदि में किया गया था। न्याय के स्रोत के लिए हमें मनु को

0: आधार मानना होगा, क्योंकि मनु ने दंड को ईश्वर की देह से उत्पन्न पुत्र कहा है, जिससे राजा की अपेक्षा दंड का अधिक महत्व सिद्ध होता है, क्योंकि राजा दंड व्यवस्था में बंधा है तथा मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। मनुस्मृति के अनुसार न्याय की अवधारणा राजा को न्याय का मुख्य प्रवर्तक और अंतिम प्राधिकारी माना जाता है, जिसके लिए हमें ब्राह्मणों और अनुभवी सलाहकारों का सहयोग प्राप्त होता है। मनुस्मृति में धर्म निरपेक्ष और धार्मिक कानून के बीच कोई भेद नहीं माना गया तथा राजा को धर्म का रक्षक और दंड नीति का धारक माना गया है। राजा न्याय शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो कानूनों विवादों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी था। राजा को न्याय करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि स्नान और ध्यान के पश्चात ही न्याय का कार्य करना चाहिए। यदि राजा किसी कारणवश न्याय नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में किसी विद्वान नीति निपुण ब्राह्मण को नियुक्त कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि यदा स्वयं न कुर्यात तु नृपति कार्य दर्शनम तदा नियुज्यात विद्वांसम ब्राह्मणम कार्य दर्शने। भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा गहरी और बहुआयामी है, जो नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और निष्पक्ष दंड पर आधारित है। जहाँ राजा का कर्तव्य न्याय स्थापित करना और धर्म का पालन सुनिश्चित माना जाता था, यह केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने का एक माध्यम था। प्राचीन भारत में न्याय प्रशासन में धार्मिक सिद्धांतों, प्रथागत कानूनों और शाही फरमानों का मिश्रण था, जिसमें न्यायाधीशों की निष्पक्षता और ज्ञान पर जोर दिया जाता था। न्यायशास्त्र का विकास मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों पर आधारित था। कौटिल्य ने कानून के चार अंग बताए हैं, धर्म, चरित्र, व्यवहार और राजशासन। समकालीन स्मृतियों से पता चलता है कि गुप्त काल में प्रथम बार दीवानी व फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की व्यवस्था की गई। सम्राट न्याय के सर्वोच्च अदालत था। सम्राट के अतिरिक्त एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालयों में प्रमाण भी लिए जाते थे। अग्नि, जल, विष, तुला आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। रामचरितमानस में राम राज्य की धारणा एक आदर्श न्याय व्यवस्था का प्रतीक है, जहां न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है। भगवान राम एक आदर्श शासक के रूप में चित्रित हैं, जो कानून का पालन करते हैं, सलाहकारों से परामर्श लेते हैं और निष्पक्ष निर्णय करते हैं। राम का शासन इस सिद्धांत पर आधारित था कि प्रजा के हित में राजा का हित निहित है। राम राज्य में अधर्म को निषिद्ध माना जाता था। शास्त्रों के मतानुसार न्यायाधीश को कहा गया है कि न्यायाधीश जो भी न्याय करे वह अपने विवेकानुसार प्रस्तुत करे, न कि मंत्री आदि के लोलुपता अथवा किसी भी भय के कारण दिया गया निर्णय हो। तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस, राजधर्म तन तीन कर होय बेगे नास। अर्थात सचिव, वैद्य, गुरु, ये तीनों राजा के भय से सत्य ना बोलकर झूठा और प्रिय बोलने लगे तो शीघ्र ही राज्य का, शरीर का और धर्म का नाश हो जाता है। रामचरितमानस में वर्णित राम राज्य की अवधारणा का वर्णन है, जिसे एक आदर्श शासन प्रणाली माना जाता है, जहाँ धर्म और न्याय का शासन होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम, सीता, लक्ष्मण आदि के चरित्र के माध्यम से जीवन कौशल जैसे पारिवारिक व्यवहार, साहस, धैर्य और समर्पण का चित्रण किया गया है। ये गुण आधुनिक समाज में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में संकट समाधान और नैतिक मार्गदर्शन के सूत्र भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आज भी लोग प्रेरणा और शांति के लिए करते हैं। इस प्रकार हमारे पुरातन ग्रंथों में न्याय की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसे सम्यक पढ़ने से, समझने से अथवा उनका अनुसरण करने से व्यक्ति, समाज तथा प्रत्येक वर्ग का सर्वहित कल्याण संभव है।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे रचना देवी की वार्ता। विषय था भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम

0: छाया गीत कार्यक्रम की पहली पेशकश हमने ली थी फिल्म परिचय से। आवाज थी किशोर कुमार की, संगीत आरडी बर्मन का था और शब्द रचना थी गुलजार की।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ कफील अजहर का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी कर्तव्य। श्रोतावली जी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। शब्द रचना हसरा जयपुरी की, संगीत एस डी बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म छलिया का गीत। गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का छाया गीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए देशगान।

आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें।

आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण में आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति होगी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पी के सिंह से शोभित शर्मा की बातचीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। समय याद रखिएगा, आज रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत संध्या 7:32 पर जगजीत सिंह की गायी चंद गजलों का आनंद हमारे श्रोता लेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं गीत संध्या कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर क्रम रहेगा एक ही फिल्म से, और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा। आपकी फरमाइश

युवाणी कार्यक्रम में कल संध्या 5:15 पर कल का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट लव स्टोरीज और सुनिएगा फिल्म संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर डॉक्टर फूलचंद जाट प्रधान वैज्ञानिक

भाई निर्मल सिंह खालसा के गाए शब्द हमारे श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल संध्या 7:45 पर। चर्चा का विषय है कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और कल संध्या 7:32 पर कानून की बात कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार

0: सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब हुए हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
3: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
4: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त

0: चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आती है, अब रखिए हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की गायी चंदा गजलें।

0: हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गायी चंदा गजलें।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे हैं उनकी गाई चंदा गजलें। कार्यक्रम की अगली गजल सुनने से पहले ये संदेश।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे जगजीत सिंह की गाई चंद गजलों का। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.67 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में।

लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ में आपने सुना फिल्म आईना का गीत। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था दिलीप सेन, समीर सेन ने। आगाज हो चुका है कार्यक्रम गीत संध्या का, जिसे आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में फिल्म थी आग और शोला।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कुरुक्षेत्र फिल्म का गीत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। स्वर्थल कयाग्निक और कुमार सानू का हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था। लिखा था इसे देव कोहली ने। और अब लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दरिया दिल से। आवाज नितिन मुकेश की है, शब्द रचना बिट्ठल भाई बिट्ठल की और संगीत राजेश रोशन का।

नितिन मुकेश के गाए फिल्म दरिया दिल के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना के कुछ गीत। श्रोताओं 1969 में बनी ये फिल्म भारतीय हिंदी संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंता ने किया और इसमें शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना ने अभिनय किया। श्रोताओं इसने 17वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और शर्मिला टैगोर ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से श्रोताओं इस फिल्म में एक किरदार किया था और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। तो आइए इस फिल्म के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन सुनवा दें पहले आपको किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आराधना का ये गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म आराधना का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था एस डी वर्मन ने। एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना के कुछ गीत। श्रोताओं, फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात स्टार बना दिया और ये राजेश खन्ना के 1969 से 1971 के बीच की 17 लगातार हिट फिल्मों में गिनी जाती हैं। ये फिल्म भारत और सोवियत संघ में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साथ ही श्रोताओं, इस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली ये फिल्म रही। तो लीजिए, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आराधना से ही, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना आनंद बख्शी का और संगीत एस जी बर्मन का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं साल 1969 में बनाई फिल्म आराधना, और इस फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत एसडी बर्मन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज में।

0: एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज आपने सुने फिल्म आराधना के कुछ गीत, और अब इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर

0: सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
1: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अलसभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच

0: कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका

0: के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes

0: By Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमद और रफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इक्तसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज़ भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी

0: लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निजाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के कयाम को मंजूरी दे दी है। यह निजाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। यह अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तावुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनेकाद के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के निफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूदात पर वसीतर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तिहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तिहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाद हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफ अफ्रीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही।

0: हाँ बोला, तो उसके बाद उन्होंने फैसिलिटेटर डेवलपमेंट वर्कशॉप एक होती है, उसमें मेरी स्किल्स जो है एक्सटेंशन की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, वो लेटेस्ट जो ट्रेनिंग होती है वो उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को सबसे पहला जो दायित्व दिया वो उत्तर प्रदेश का ही दिया, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, और उस समय जो हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट था वो भी यूपी में ही आता था, तो ये तीन जनपद में मेरे को कार्य करने का मौका मिला। और उस समय जो यूपी डास्क का प्रोजेक्ट था उसके तहत एक हर जनपद की योजना बनाई जाती थी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान, कि किसी भी जनपद के लिए क्या रणनीति हो सकती है शोध और प्रसार की, ताकि जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो इन तीन जनपदों में मुझे कार्य करने का अनुभव मिला, और उसके बाद मेरे को देश के बहुत सारे जगह पे कार्य करने का मौका मिला, जिसमें मुख्य रूप से मैं कहूँ बिहार में मैंने काम किया, इसके अलावा मैंने राजस्थान में काफी दिन काम किया एज ए कंसल्टेंट, और छत्तीसगढ़ में काम किया, उसके अलावा मैं तमिलनाडु भी गया। तो इस तरह से मेरे को राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे असाइनमेंट एज ए नेशनल कंसल्टेंट या नेशनल रिसोर्स पर्सन मैनेज की तरफ से जाने का अवसर मिला। इसी के तहत जो मेरी कृषि विज्ञान केंद्र की जो अपनी जर्नी है, उसमें 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनाउंस किया कि हम जोनल लेवल पे, जो हमारे पूरा जो कंट्री है आज की डेट में अगर हम कहें 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो ये 11 अटारी जोन में बटा हुआ है। तो उन्होंने ये मतलब एक पुरस्कार अनाउंस किया कि जो बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर जोन के, हम उनको अवार्ड देंगे। तो 2011 में मैं जब सहारनपुर में एज ए केवी के हेड था, तो वहां पर मेरे को बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड मिला
1: जी।
0: और ये किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र को मिलने वाला ये उत्तर प्रदेश का पहला अवार्ड था। उससे पहले जो ये अवार्ड था वो सिर्फ आईसीआर के संस्थान जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है उनके केवीके को मिला था। तो एसएयू या जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं चार प्रदेश में, उसमें सबसे पहला जो पुरस्कार मिला वो हमें यहाँ पर मिला, सहारनपुर केवीके को। उसके बाद फिर मेरे को कार्य करने का मौका मिला मुजफ्फरनगर जनपद में, फिर मुजफ्फरनगर जनपद में भी सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड मिला, और उसके अलावा फिर मेरे को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया। इसके अलावा मुझे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें मुख्य रूप से अभी मेरे को लेटेस्ट यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बेस्ट एक्सटेंशन साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से प्रसार में मेरी रुचि रही हमेशा, और मैंने दिन रात किसानों के लिए ही कार्य किया, और मेरा ये पैशन है कुल मिला के। आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों का एक्सटेंशन पैशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत टफ जॉब है, क्योंकि इसमें आपको धूप भी लगेगी, आपको ठंड भी लगेगी, बरसात भी झेलना है। अच्छा, इसमें मेरे को सबसे जो मेरी अच्छा पीरियड रहा वो तब रहा कि एक दौर आया 2010 के बाद कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए पुरस्कार अनाउंस किए गए। अब किसानों को वो पुरस्कार अगर मिलना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन उनका करना, वो करके, और जगजीवन राम बेस्ट फार्मर अवार्ड मिलता था उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका रिकमेंडेशन करना। तो मुझे लगता है कि मेरे अपने व्यक्तिगत प्रयास से हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, उनके डॉक्यूमेंटेशन हमने किए, रिकमेंडेशन किया। एनजी रंगा बेस्ट फार्मर अवार्ड है वो मिला हमारे सहारनपुर के फार्मर सेठपाल जी को। और एक अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूपी से हमारे दो किसान ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिला
1: जी,
0: एक सेठपाल सिंह जी हैं सहारनपुर से, और एक है भारत भूषण त्यागी जी बुलंदशहर से। तो कहीं ना कहीं सेठपाल सिंह जी का जो पुरस्कार मिला उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से ही गुजरता है
1: जी।
0: और ये कई मंचों पर सेठपाल सिंह जी इस बात को कह चुके हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र ने ही उनको ये रास्ता दिखाया जो उनको आज ये राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान मिली है। तो देखिए, प्रसार की सफलता ये है कि जब हमारे किसान जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो सफल हों, क्योंकि हमारी सफलता तो उन्हीं की सफलता में है,
1: उन्हीं की सफलता से,
0: बिल्कुल उन्हीं की सफलता से। तो ऐसे बहुत सारे जो किसान हैं जब वो सम्मानित होते हैं राष्ट्रीय मंचों पर, तो हमें एक गर्व होता है कि हमने इन किसान भाइयों के साथ काम किया, और कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा स्रोत भी बनता है बाकी लोगों को देख करके कि हम भी ऐसा प्रयास करें। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे किसान मेरे पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स वेस्टर्न यूपी के आते हैं जो मेरठ हमारे जनपद के नहीं है, अन्य जनपदों से आते हैं कि हमें भी पद्मश्री के लिए अप्लाई करना है, कैसे करना चाहिए।

0: कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए
1: जी.
0: तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बताएं, उनको सही रास्ता दिखाएं. और आप देखिए, बहुत सारे हमारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनको हमने एज ए एम्बेसडर यूज किया है, क्योंकि जब आप फार्मर को यूज करते हैं तो जो एक
1: सक्सेस स्टोरी जो
0: होती है, एक सक्सेस स्टोरी होती है, उसको लोग बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं.
1: ग्रहण करते हैं बिल्कुल.
0: तो हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि एज ए मास्टर ट्रेनर हमने उनको डेवलप किया
1: जी.
0: तो वो बहुत सारी जो ट्रेनिंग है उसमें भी जाते हैं. खासकर आजकल आप देखें नेचुरल फार्मिंग की बहुत बात हो रही है, प्राकृतिक खेती. तो प्राकृतिक खेती में हमारे पास कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल इतना अच्छा किया है और डिमोंस्ट्रेट किया है उसको, तो हम उनको भी कई बार जो वैज्ञानिक लोगों के भी प्रशिक्षण होते हैं उनको भी ऐसे ट्रेनर बुलाते हैं. क्योंकि देखिए, उनसे बड़ा वैज्ञानिक किसानों से बड़ा कोई नहीं है,
1: कोई नहीं.
0: क्योंकि 24 घंटा वो उसमें लगे रहते हैं.
1: इसके साथ रहते हैं.
0: तो अब कुल मिला के मैं ये कहूँ कि प्रसार की मेरी जो जर्नी है अब तक की, मैं इसे अपना मतलब सौभाग्य मानता हूं कि मैं इस तरह के फील्ड में हूं और कुछ किसान भाइयों के लिए डायरेक्ट उनके साथ जुड़ करके उनके लिए कुछ कर पाए हम. और इसका आप अगर देखना चाहें कि क्या मतलब प्रभाव रहा है, तो मेरा कार्यक्षेत्र 2 जनपदों तक था. अब तो खैर, मैं जब से निदेशक प्रसार के पद पर लगभग 4 वर्ष पहले मेरा चयन हुआ
1: जी.
0: तो आप ये देखें कि मेरी जर्नी जो सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर हुई थी, जो जिसको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, और इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा पद है वो निदेशक प्रसार का है, जिस पर मुझे लगता है कि कार्य करने के कारण ही मेरे विश्वविद्यालय ने मेरे को ये दायित्व सौंपा है. और आज मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो 18 जनपद है, जिसमें 20 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं. तो उन 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से लेकर के नोएडा तक हम लोग लगातार किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष करने में लगे हुए हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो किसी न किसी तरह से अपना तो रोजगार करें ही, हमारा एक आज बहुत बड़ा दायित्व है कि हम किसी तरह से जो हमारा नवयुवा है गांव से उसका पलायन जो शहर की तरफ हो रहा है उसको रोकें. नहीं तो अगर आप देखें, अगर हम इसको नहीं चेक कर पाए तो ये बड़ी भयावह स्थिति होगी आने वाले समय में. तो उसकी दिशा में भी हम लोग कार्य करते हुए, मैं ये बोलूं कि जो FPOs हैं, कृषक उत्पादक संगठन, उनके साथ हम लगातार कार्य कर रहे हैं. गांव के स्तर पर ही उनका हम उद्यमिता विकास डेवलप करने के लिए उनको तरह तरह की जो इतनी भी योजनाएं हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना कि कैसे आपको ऋण मिलेगा, कैसे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, उसमें भी हम लगातार लगे हुए हैं. तो ये एक ऐसी जर्नी है कि जब आप इसमें काम करते हैं तो आपको मतलब इतना बढ़िया लगता है कि मैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो किसान भाइयों के साथ काम करने का मौका मिला तो ये लगता है कि कहाँ किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको दूसरे जनपद का फार्मर कैसे एडॉप्ट कर सके. तो इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं
1: ट्रांसफर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस.
0: जी.
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने इस जर्नी के बारे में हमें बताया. हम आपसे एक कदम पीछे आपको लेकर जाएंगे. आप एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं. कब आपने ये सोचा, जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी, हम बात कर रहे हैं 10th की 12th की या इवन उससे भी पहले 8th क्लास में, तो क्या आप हमेशा से सोचते थे कि आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है और इस तरीके का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना है, इस तरीके से एक्सटेंशन के क्षेत्र में ये नए कीर्तिमान स्थापित करना है, ये आपने कब सोचा या आपकी जो शुरुआती शिक्षा थी उसमें किस तरीके से आप सोचते थे?
0: जी बिल्कुल, ऐसा है, मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही पूर्वांचल के बस्ती जनपद से आता हूँ
1: जी,
0: और गांव है मेरा. और जब हम गर्मी की छुट्टियां होती थी तो गांव में जाते थे 1 महीने के लिए फादर के साथ. तो वहां पर ट्यूबवेल में नहाना, देखना, खेती करते हुए, धान लगाते हुए, ये सब देखना. तो पता नहीं कहां से मेरे को वो एक मोटिवेशन रहा कि ये मतलब काम है, इसमें कुछ किया जा सकता है
1: जी.
0: तो फिर जब BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन हुआ, फिर MSc एग्रोनॉमी हुआ, PhD एग्रोनॉमी हुआ, तो उसके बाद आप मेरा सौभाग्य कहिए कि मेरे को जो पहली पोस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम में हुई वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट KVK सिस्टम में हुई, जो कि एक्सटेंशन का था
1: जी.
0: और जब एक बार पोस्टिंग होने के बाद काम करना शुरू किया, गांव में जब जाना शुरू किया, सहारनपुर में पोस्टिंग थी, तो पता नहीं क्यों वो इंटरेस्ट वो बढ़ता गया
1: जी.
0: दिन रात बढ़ता गया कि किसानों के साथ ही कुछ काम करना है, क्योंकि मेरे को मोटिवेट किस चीज ने किया कि मेरे को इसी में रहना है, क्योंकि वो तो पहली जॉब थी, तो पहली जॉब तो जहां लगेगी आप जाएंगे
1: जी, जी।
0: लेकिन फिर आपको लगता है कि मुझे यहाँ रुकना है या मेरे को ये छोड़ करके कहीं जाना है। तो मैं खासकर हमारा एक मैंडेट होता है डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रदर्शन का। तो जब मैं पहली बार गया हूँ फरवरी के महीने में गया, तो सहारनपुर में उस समय सूरजमुखी की खेती होती थी पैचेस में
1: जी। ये 95 की बात है,
0: ये मैं 95 की बात बता रहा हूँ। अब आप 96 की बात करने लगी
1: जी,
0: है
1: जी, ठीक,
0: 95 में मैं गया था,
1: ज्वाइन किया
0: उस समय सूरजमुखी की बुआई हो चुकी थी
1: जी।
0: तो फिर जो हमारे सीनियर थे वहाँ, वो डेमोन्स्ट्रेशन जाते थे, हम भी उनके साथ जाते थे। तो उसके बाद वो जब मैंने ज्वाइन कर लिया, तो उसके 2 महीने बाद हमें फील्ड वील्ड दिखा करके फिर वो उनका ट्रांसफर हो गया, तो हम वहां पर रुक गए। तो जब मैं फील्ड पे जाने लगा लगातार और फार्मर से बात करने लगा, तो हम लोग जो इनपुट के रूप में है डेमोन्स्ट्रेशन में, उसमें सीड देते हैं ज्यादातर
1: जी,
0: क्योंकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा रोल है वो सीड का है।
1: अच्छा,
0: अकेले सिर्फ सीड ही आपका, अगर आप सारी प्रैक्टिसेस आपकी अच्छी हो और सीड गड़बड़ हो, तो आपका यील्ड लॉस 30% के आसपास हो जाता है। अब जब हमने वहां पर दिया, तो 96 में वो पूरी जिम्मेदारी डेमोन्स्ट्रेशन की हमारे आ गई, क्योंकि वो जो सीनियर्स थे वो जा चुके थे। हमने सीड ला करके दिया और अपना पूरा जो पढ़ करके आए थे पूरा तकनीकी उनको बताया, लाइन टू लाइन इतना करना है, ऐसे करना, वो करना। वो कटिंग मेरे पास आज भी पेपर की है। सहारनपुर जनपद की जो सूरजमुखी की यील्ड थी वो यूपी में फर्स्ट रही उन डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में जिसपे हमने काम किया, और वो पहली बार मेरा नाम भी अखबार में, मैंने 96 में ही जब हार्वेस्टिंग हो गई इसकी तब देखा, और फार्मर्स का नाम कि कहाँ कहाँ पर ये हुआ, गंगो ब्लॉक के फार्मर हैं वो प्रमोद गोयल जी, मुझे आज भी उनका नाम याद है और आज भी मेरी उनसे मुलाकात होती है। तो उन्होंने बल्कि वो कटिंग मेरे को दिया था, तो वहां से मुझे ये लगा कि जो पहचान आपकी बनती है जब आपके कारण किसी किसान को कभी भी लाभ होगा तो वो आपको भूलता नहीं, और जो वो प्यार मिलता है ना उसके एवज में
1: जी, प्यार अपनापन
0: जो अपनापन मिलता है, और वो फिर 4 लोगों को बताता है कि ये कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मुझे ये बीज दिया, इन्होंने ये बताया, मैंने इतना किया, मेरे को ये लाभ मिला। तो मुझे ये लगा कि इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज कोई हो नहीं सकती कि आप जो काम आप कर रहे हो, देखिए एक होता है हम करते हैं काम नौकरी के लिए
1: जी,
0: ये जो कृषि की नौकरी है ये इसको मैं मतलब इसको ये मानता हूं कि ये आपको 2 गुना रिटर्न देती है, ये आपको सिर्फ तनख्वाह नहीं देती है
1: जी।
0: आप जिनके साथ काम करते हो अगर उनको कोई लाभ हुआ तो जो दुआ आपको मिलती है उसके साथ, और जो आपके बारे में वो समाज में बात जाती है उसका कोई मोल नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो आपकी जो तनख्वाह है उससे भी बड़ा वो है।
1: सही, आप तो जरिया बन रहे हैं किसी की प्रोग्रेस का,
0: किसी की प्रोग्रेस का आप जरिया बन रहे हैं। तो वो चीज जो वहां से मोटिवेशन स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो ये देखते रहे कि दायरा बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया,
1: सूरजमुखी से और फसलों,
0: सूरजमुखी से और भी फसलों में आए, और फसलों में अच्छा काम किया, तो ICR के बड़े बड़े जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ADG, जोनल कोऑर्डिनेटर, ये लोग आने लगे कि भाई यहाँ काम अच्छा हो रहा है सहारनपुर
1: में,
0: हाँ इसके वीके में। धीरे धीरे सहारनपुर के वीके को नेम और फेम मिलना शुरू हो गया, और जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तो उस समय हम एक कमरे में 12-14 लोग बैठते थे, क्योंकि किराए की बिल्डिंग में था
1: जी।
0: तो उस कृषि विज्ञान केंद्र के लिए लैंड ट्रांसफर करना, उसमें भी काफी हमने मशक्कत की, और ये मेरा सौभाग्य है कि उस कृषि विज्ञान केंद्र की जो पहली ईंट है वो मेरे सामने रखी गई,
1: जो अपनी लैंड ली गई,
0: जो लैंड लिया था पहली ईंट भी रखी गई, और उसका उद्घाटन भी जब हुआ तो भी मैं वहां इंचार्ज था। तो एक आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि वो कैंपस, क्योंकि मैं नौकरी कितनी भी करूं कहीं भी करूं लेकिन सहारनपुर की जो जर्नी है वो हम भूल नहीं पाते, क्योंकि वहां हमने 0 से स्टार्ट किया था और उसको उस स्टेज पर ले गए कि उसको अवार्ड मिला,
1: और वो अवार्ड जो अभी आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा
0: पहला ऐसा केवीके था। तो फिर उसका नाम ऐसा होता गया कि ICR के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो भी आते थे कि भाई चलो केवीके चलते हैं। फिर वहां पर एक चीज और हुई जो मैं आपको वर्थ है बताने के लिए, नॉर्थ इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 2010 में मैंने वहां एस्टेब्लिश किया, केवीके सहारनपुर में।
1: अच्छा,
0: पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसकी सराहना भारत सरकार से रिटर्न मिली थी हमको अवार्ड में
1: जी, बेशक बहुत बड़ी बात है
0: कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और उस समय ये एक योजना चलती थी, आज भी चल रही है, वो आत्मा योजना आप जानते होंगे। तो आत्मा योजना में एक इनोवेटिव कंपोनेंट आया कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना करते हैं। तो अब ये कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा गया कि आप करिए, तो मैंने लीड लेकर के पहला जो बजट भी मेरे को ही एलोकेट हुआ मेरे केवीके को, और उसको मैंने एस्टेब्लिश किया और उसको चलाया 2010 में
1: जी।
0: तो वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी वो पहचान बना, मील का पत्थर हुआ उस कृषि विज्ञान केंद्र के लिए,
1: पहला कम्युनिटी रेडियो,
0: नॉर्थ इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए
1: जी।
0: जो आप भी यहाँ कार्यक्रम करते हैं फोन इन के
1: जी, जी, जी।
0: तो हम वहां पर भी फोन इन के करते थे, मतलब हफ्ते में दो दिन डिसाइडेड थे तो हम पहले ही सूचना देते थे कि कल हम बासमती धान के इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो उससे हमने देखा कि जो कनेक्ट फार्मर्स के साथ हुआ वो बड़ा जबरदस्त था, मतलब फिर ये तक डिमांड जनपद से आने लगी, क्योंकि आपको पता ही है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो दायरा है वो बहुत ही सीमित होता है, मुश्किल से क्या कहते हैं 18 से 20 किलोमीटर के रेडियस में,
1: आइडियली वो 8-10-12 किलोमीटर,
0: आइडियली तो वो 10-12 है, लेकिन जिस तरफ थोड़ा सा कोई बस्ती नहीं होती और थोड़ा खाली है तो वो थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है। तो अब आप ये देखिए कि उसका हमको क्या रिवार्ड मिला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लोग गए कि साहब इसका कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का
1: विस्तार
0: जो विस्तार बढ़ाइए, क्योंकि लोग बताते थे कि भाई हमारे यहाँ तो इस तरह का, और उनके लिए कौतूहल का बात थी कि भाई केवीके में एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जहाँ वैज्ञानिकों से सीधे
1: बात होती है,
0: बात
1: वो आपकी समस्याओं का निवारण,
0: करते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हमने ये वहां पर एस्टेब्लिश किया था।
1: डॉक्टर साहब, केवीके सहारनपुर में 95 में आपने ज्वाइन किया, कब तक आपका जो कार्यकाल रहा वहां?
0: मैं वहां 31 मई 2013 तक था।
1: 2013 तकरीबन 18 वर्ष तक आपने,
0: 18 वर्ष तक था, उसमें 2 साल के लिए मैं इथियोपिया में था।
1: इथियोपिया पर हम चलते हैं वापस डॉक्टर साहब, नई जगह आप गए, पूर्वी अफ्रीका का देश है इथियोपिया, कैसे चैलेंजेस आपके सामने आए और आपने कैसे वहां पर टैकल किया?
0: देखिये, जब मैं शुरू में गया तो आप जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि जो पूर्वी अफ्रीकी देश है इथियोपिया, ये बहुत ही गरीब मुल्कों में आता है, और जब मैं गया था तो उस समय उसका जो 84% ऑफ उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट थी वो बाहर से आती थी,
1: इंपोर्ट होती थी,
0: है ना, वो कुल अपना 16% ही पैदा कर पाते थे
1: जी।
0: अगर आप देखें कि वहां भी मेरे को फार्मिंग कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना था, तो जो मैंने अभी पहले जिक्र किया था आपको किसान मित्र
1: जी,
0: जिस प्रोजेक्ट में हम गए थे वहां DA डेवलपमेंट एजेंट कहते थे।
1: अच्छा,
0: तो ग्रेजुएशन लेवल पे उनको डेवलपमेंट एजेंट्स को 3 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके फार्मर्स के लिए यूज करना था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी।
1: अब वो काम आप लोग करा
0: वो काम हम, तो जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम था वो तो इंग्लिश था
1: जी,
0: लेकिन जब हम डील करते थे तो वो जो वहां की लोकल लैंग्वेज है वो भी मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, 2-3 महीने में उतना सीख गए हम
1: कि सुनते सुनते कर
0: कि कम्युनिकेट करते गए, और फिर धीरे धीरे तो फिर कम्युनिकेशन पे कमांड हो गया
1: जी,
0: फिर तो कोई दिक्कत हुई नहीं।
1: हाँ जी।
0: और लोग बहुत कोऑपरेटिव थे वहां पे।
1: अच्छा।
0: और हमें वहां पर गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिला हुआ था
1: जी।
0: तो आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूट के जो टाइमिंग थे उसके बाद भी आकर के उनके अंदर सीखने की ललक होती थी, तो कई बार वो मेरे घर पे भी आ जाते थे। तो धीरे धीरे फिर उनसे बात होती रही, तो मतलब इतना अच्छा लगा। फिर वहां की गवर्नमेंट ने हमारे यूनिवर्सिटी को 2 साल के लिए फिर लिखा कि इनका एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, लेकिन उसी समय यूपी उत्तराखंड का डिवीजन ये सब चल रहा था तो स्टाफ की कमी थी, तो अब अपनी जिम्मेदारी जो है उसको देखते हुए फिर मैं वापस यहीं पर रुक गया। लेकिन ये है कि जिन लोगों के साथ मैंने इथियोपिया में काम किया, मुझे लगता है 10-12-15 साल तक तो उनसे मैं टच में रहा कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आज वो भी काफी डेवलप कर रहा है
1: जी।
0: और जो नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं, रियल नेचुरल फार्मिंग मैंने वहीं देखी, बहुत ज्यादा डेवलप्ड उनका एग्रीकल्चर नहीं था
1: जी, जी।
0: या आप अपने देश का भी ले लीजिए,
1: आपसे पहले का हम देखें जी,
0: आप अपने देश का भी आज भी ले लीजिए, जो जिस एरिया में प्रोडक्टिविटी सबसे कम है वो आज भी नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में आप ऊपर चले जाइए, कौन केमिकल डाल रहा है? कोई नहीं डाल रहा है
1: जी, जी।
0: आप नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में चले जाइए, कितना केमिकल डालते हैं
1: ये। डॉक्टर साहब, एक तरीके का पैराडॉक्स है कि जहां पर हमें यील्ड मिल रहा है, जहां पर हमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वहां पे फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन।
0: आप ये देखिए दो चीजें हैं
1: जी,
0: जैसे अपना हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति में जहां पर भी इरिगेशन फैसिलिटी रही
1: जी,
0: वहीं पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हुआ।
1: करेक्ट।
0: और आज भी हम ये चाहते हैं कि वहां पर ये चीजें रुके, विशेषकर आप देखिए पंजाब।
1: हाँ जी।
0: अभी आप यहीं अपने उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देख लें
1: जी,
0: जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फार्मर्स फर्टिलाइजर डालते हैं,
1: हाँ,
0: उतना हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं डालते
1: जी।
0: और आप उधर चले जाएं तो और कम होता जाएगा। तो ये कुछ जैसे एक तो इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कहीं कहीं कुछ पैचेस में मेरा एक्सपीरियंस 30 साल का यह भी है, कहीं कहीं ये सोशल इशू भी बन गया,
1: सोशल इशू बिल्कुल
0: इशू बन गया है कि भाई आपने 4 कट्टा गन्ने में डाला, खासकर मैं ये वेस्टर्न यूपी
1: पश्चिम उत्तर प्रदेश
0: जो
1: के कुछ
0: गन्ने
1: जिलों
0: की बेल्ट है
1: जी
0: वहां पर देखता हूँ कि साहब इन्होंने इनका गन्ना ज्यादा हरा है,
1: हाँ जी
0: मेरा गन्ना कम हरा है, तो उन्होंने 4 कट्टे डाला तो मेरे 2 ही क्यों, मुझे भी 4 डालना है।
1: और उसके लिए फिर प्रेशराइज किया जाता है,
0: फिर
1: पूरा सिस्टम सब
0: फिर,
1: वर्ड होता
0: फिर
1: है
0: उसके
1: सर।
0: लिए देखिए वो उसमें क्या है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सिर्फ ओवर फर्टिलाइजर इशू नहीं है।
1: हाँ जी
0: आप फर्टिलाइजर ज्यादा डाल रहे हो, एनवायरमेंट पोल्यूशन कितना हो रहा है आप उसको देखिए। इसके अलावा जब आप ओवर करते हो तो वो एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाता है डिजीज और इंसेक्ट के लिए,
1: जी जी बिल्कुल
0: तो इनडायरेक्टली आप वो तो ज्यादा डाल रहे हो, एक तो कॉस्ट आप वैसे भी बढ़ा रहे हो
1: जी
0: और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आप इनडायरेक्टली भी बढ़ा रहे
1: वो
0: हो।
1: भी बढ़ा रहे हैं, आपकी अपनी
0: तो
1: इनकम से
0: जब
1: कम हो रही
0: हाँ, तो
1: है।
0: जब आप इतना करोगे तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत आनी।
1: और डॉक्टर साहब, जो अभी जो करंट नैरेटिव है, जो नया एकदम जो इस समय रिसर्च आ रही है, वो चूंकि अभी कुछ ही समय पहले एक बड़ा फेमस आर्टिकल था, उसमें ये कहा गया कि इट्स वेरी सून दैट इंडिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी कैंसर के केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे देश में, और उसका कहीं ना कहीं और भी रीजन है, जेनेटिक और ये, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि जो फर्टिलाइजर्स का, केमिकल का हम इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, अब वो शायद ये सारी की सारी चीजें मिलकर अल्टीमेटली जो हमारी ओवरऑल वेलबींग है उसको इम्पैक्ट कर रही है।
0: नहीं, अब खासकर आप ये देखिए आजकल जो सब्जियां हैं, सब्जियों में बहुत सारा पेस्टिसाइड है। आप देखें कि जो लोग थोड़ा सा भी एजुकेटेड हो गए हैं, भिंडी
1: जी
0: बैगन अवॉइड करते
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: क्योंकि इसमें हर तीसरे दिन स्प्रेइंग
1: स्प्रेस
0: होती है,
1: जी
0: और अगर आप स्प्रे करते देख लेंगे, एक पहलू ये है। दूसरा, आप कभी मंडियों में सब्जी को धुलते हुए देख लें, कई जगह केमिकल का यूज करते हैं ताकि वो चमकदार रहे,
1: चमकदार रहे, हरी
0: है ना,
1: दिखे।
0: कई जगह ऐसा करते हैं कि वो थोड़ा सा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दें,
1: बड़ा जी
0: कुछ इस तरह के केमिकल डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली अब ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मॉरल्टी से भी जुड़ी हुई हैं
1: बेशक
0: कि आप आखिर किसको दे रहे हैं।
1: जी जी
0: आपने एक चीज कहते हुए सुना होगा, बहुत सारे किसान कई बार इस बात को कह देते हैं तो फिर मैं उनको करेक्ट करता हूँ,
1: जी
0: वो कहते हैं हमने अपने खाने के लिए थोड़ा
1: अलग
0: सा अलग से गेहूं कर लिया।
1: जी
0: तो मैंने कहा कि अपने लिए तो आपने अलग बासमती चावल उगा लिया, और बाकी जो मेजॉरिटी बासमती उगाई वो भी तो आपका कोई भाई खाएगा,
1: सही बात है
0: आखिर किसको दोगे आप,
1: जी
0: कोई विदेश का तो खाने जाएगा नहीं, इसी बाजार में आप बेचोगे,
1: जी
0: हम और आप में से ही कोई खाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि ये परंपरा बंद होनी
1: हो
0: चाहिए
1: सकता है आप ही किसी
0: कि
1: समारोह में जाएं और आपके सामने वो
0: और
1: परोस
0: आपके
1: दिए जाए,
0: सामने ही परोसा
1: जी
0: हो। तो
1: बिल्कुल
0: मैंने कहा ऐसा
1: पूरी
0: नहीं, मैंने कहा
1: प्रोबेबिलिटी।
0: ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो जो फर्टिलाइजर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज है उसकी वजह से हम अपनी जो इनकम है उसे कम कर रहे हैं, और फिर वो जो विशियस साइकिल है वो चलता है
0: वो चलता है,
1: जी,
0: बिल्कुल
1: इस
0: चलता है।
1: क्योंकि उसके बाद हम कहेंगे कि भाई हम अगर स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन कम होता है, यील्ड कम होता है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है,
1: जी।
0: बिल्कुल है।
1: डॉक्टर साहब, आपसे हमारी मुलाकात का वक्त जो है, आपसे बात करते हुए हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत भावुकता के साथ, इमोशंस के साथ आप अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले कुछ समय में आप अपने आप को कहां पर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट्स। लाइक अचीवमेंट्स का हम केवल मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की बात नहीं करते हैं, हम जो आपकी पर्सनल एम्बिशंस होती हैं, इमोशनल लेवल पर जो होते हैं, उसमें आप आने वाले वक्त में अपने आप को कहां पर पाते हैं।
0: देखिए मैं तो अपनी सफलता हमेशा इस चीज़ से आंकता हूँ कि मेरे कारण कितने किसानों को लाभ हुआ, क्योंकि देखिए बाकी पर्सनल अचीवमेंट्स अपनी जगह हैं। जब आप सर्विस से रिटायर हों, और जो हमारी सर्विस है एक्सटेंशन सिस्टम की वो फार्मर्स के साथ है,
1: जी
0: तो मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं इस जॉब से सेवानिवृत्त हूँ और उसके बाद अगर फार्मर ये याद करें कि जब ये यहाँ पर थे इन्होंने हमको ये सिखाया, क्योंकि सिर्फ मैं किसानों को खेती बाड़ी नहीं, मैं अगर उनके साथ बैठता हूँ तो उनके और भी जो बातें हैं, बहुत
1: इश्यूज
0: सारी
1: है
0: बातें हैं,
1: जी।
0: इश्यूज हैं, वो मेरे से शेयर करते हैं।
1: जी
0: आपको शायद ये बात विश्वास नहीं होगी कि सहारनपुर में रहते हुए मेरे को कई बार ऐसा लगा कि दिन में फार्मर्स नहीं मिल पाते हैं तो कुछ रात मैं गाँव में रुका हूँ।
1: अच्छा
0: ये मेरे साथ के जो साथी थे वो बड़े आश्चर्य करते थे कि आप रात में, मैंने कहा नहीं, वो तो रात को खाना खाने के बाद जब बैठते थे
1: उस समय
0: तो उस
1: बना
0: समय जो रात को 12 बजता था, 1 बजता था, मैंने कहा जो इन्फॉर्मेशन वहां से निकल के आई है वो इन्फॉर्मेशन तो हम कभी दिन में घूमेंगे वो
1: मिल ही नहीं
0: निकलेगी ही
1: सकती
0: नहीं,
1: जी, और उस समय जो उनकी सुनने
0: है
1: की
0: ना,
1: कैपेसिटी होती थी वो अच्छे तरीके से ध्यान
0: क्योंकि
1: से
0: उस समय कोई शोर शराबा नहीं, वो भी रिलैक्स, उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं, क्योंकि वैसे आप जाओ किसी को यहां जाना है, किसी को वहां जाना है, कोई ये है कोई वो है। तो मैंने तो ये भी किया। तो जो पर्सनल रैपर्ट है,
1: जी
0: इंटरेक्शन है, वो आप इस लेवल का मेंटेन करिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको
1: आपको याद
0: याद
1: करें
0: रखें
1: जी
0: कि ये थे यहां पर, आज भी सहारनपुर के जो फार्मर्स हैं मेरे पारिवारिक ताल्लुक आते हैं, मेरे घर आते हैं मेरठ में
1: जी।
0: खुशी होती है क्योंकि आपने जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है, तो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है कि मेरे कारण बहुत सारे किसान वेस्टर्न यूपी के, उनको मैं राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा पाया। कई लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बताऊं कि उदयपुर में शायद वो 2010 था, फार्मर भी मुझे याद है, सहारनपुर के जगैता गुजर के फार्मर हैं राजपाल सिंह जी, तो उनको लेकर के मैं उस समय के जो राष्ट्रपति जी हैं, एक कॉन्फ्रेंस था उसमें उनको आना था, उनसे मिलवाने के

0: में लेकर के उनको गया था,
1: बहुत बड़ी बात
0: है
1: है,
0: ना।
1: छोटे से गांव के
0: तो एक
1: किसान
0: फार्मर को
1: भी।
0: लेकर के जाना वहां पर, उनकी पहचान वहां पर कराना। तो जब ये लम्हे होते हैं और लोग आपको याद करते हैं, तो एक इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, मुझे लगता है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
2: मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पी के सिंह से शोभित शर्मा की बातचीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गाँव में कितनी खुशी थी?
2: मतलब छोटी थी जब उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। टूर्नामेंट हुआ था ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, उधर दो टीमें आई हुई थी।

0: और सागर, तो सागर के टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस इसमें गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट, तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया, और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
1: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
0: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे, तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों गोल्ड लिए थे और चारों गोल्डन विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था, तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, कब मुझसे सब लोग मिले, मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो सबको खुशी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची, फिर सबके माहौल देखा, सब सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम पे, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा दी मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को, फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया, सबको पता चल गया, गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे, बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहां पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
1: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
0: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी, पहले तो फॉरेन प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में, तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी, तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे, तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लग के रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे, वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौर के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था, तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ एक मेरी स्टूडेंट खेल रही है, और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
2: बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं, और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है, मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की।

0: है, कॉलेज में तो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले। तो
1: जी
0: एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई, तो अभी लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
0: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साई स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर। तो
1: उस समय आपको लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
0: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या है जो टेक्निकली वो तैयार नहीं थी, और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत, उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी, आपने
0: तो
1: सहयोग
0: उससे,
1: किया।
0: हाँ, तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। फिर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी हाँ,
0: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा, मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है। संघर्ष
1: जी हाँ, उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
0: के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में। ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक, जो बॉलर के स्पाइक होते हैं, तो
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। मतलब ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड, दो चीजें उसकी बहुत अलग है। हट के देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की इसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
1: मतलब
0: बॉल में।
1: एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
0: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
1: तभी इतने आगे
0: बाकी
1: पहुंची हैं।
0: जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए, हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30-11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला।
0: हाँ थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी भी वर्ल्ड कप में जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा,
0: बधाई हो।
1: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं, वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
2: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
1: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
2: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
1: जी,
2: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
1: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
2: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
1: जी
2: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
1: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
2: बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल रहते हैं। अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेला।
1: जैसे हमारी सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
2: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज किए।
1: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
2: अच्छा, के अच्छा। साथ में ही जाते हैं।
1: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
2: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
1: जी,
2: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहले ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
1: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी
2: जो मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
1: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
2: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, चूंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था।
2: जी जी,
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
2: और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
1: जी बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग

0: खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं। और इस विषय में हमने बातचीत करी।
1: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
0: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
1: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
0: अच्छा, बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
1: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे सिखाए हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जो दिखा रही है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
1: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे,
0: ये पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यानचंद स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा उसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
0: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
0: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
1: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी हमारे सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दो, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
0: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
1: इसकी चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रश अच्छा कर रहा है कोई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
0: उसी में ही उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
1: उसको बारीकी बताते हैं।
0: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
1: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी में इन सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
0: परेशानी तो नहीं। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज

0: खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
1: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं।
2: शुक्रिया।
1: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
2: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
1: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
2: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहां पहुंच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
1: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
2: मुझे ऐसे लगता है कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहां से। फिर
1: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति है जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
2: चलिए, मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CSF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो एक बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
1: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
2: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
1: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
2: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकती
1: लेकिन
2: क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं लगी हूँ
1: प्रैक्टिस में। और इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।
0: खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: खेल दर्पण।
4: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब पेश है
4: पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। आपके प्यारे प्यारे फरमाइशी पत्रों और मैसेजेस के साथ हाजिर हैं हम आज कार्यक्रम में। और आज के संगीतमय सफर में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले क्यों ना सबसे पहले अपने व्हाट्सएप नंबर को आप तक साझा कर दें, क्योंकि हमारे जो श्रोता आज पहली बार आकाशवाणी नजीबाबाद को सुन रहे हैं और हमारे साथ मैसेजेस के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हमें मैसेज करना चाहते हैं, तो हम उनको अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। जी हाँ, नंबर नोट कीजिएगा 9457078288। इस नंबर पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो लीजिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है दिल तो पागल है से, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत उत्तम सिंह का। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी श्रोता गंज डंडवारा से शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया झज्जर हरियाणा से, मोहल्ला अफगानन शेरकोट से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन के साथ हैं जन्नत, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी साथी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके सभी साथी, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरानी और हिना कौसर, मोहल्ला हलवायान शीरकोट जिला बिजनौर से। और ये फरमाइश लिखकर भेजी है हमें रिंगनी छत्तीसगढ़ से, हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप सभी सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

आगाज हो चुका है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम का, और आप इस समय हैं रेनु कोटनाला के साथ कार्यक्रम में। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस और पत्र हमारे पास हैं, और ये मैसेज हमें मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मीराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार।

गंज चुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदीप। गांव और डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। ये पत्र हमें मिला है आशुतोष भारद्वाज, वंशिका भारद्वाज, मेधांश भारद्वाज, प्रेरणा जगमग और सत्यम का गुजरात गांधीधाम से। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है योगेंद्र चंद्र शर्मा, संगीता शर्मा, मीनू शर्मा, पवन शर्मा, कविता सोती, नौरिता सोती और राम ने किरतपुर से। ये मैसेज हमें मिला है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसूल कमर राही का गंज द्वारा से। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का गीत फिल्म साथ साथ से। आवाज़ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत कुलदीप सिंह का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म अंजाम से, स्वर अभिजीत का है, शब्द रचना समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी श्रोता। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आदर्श नगर मलोड, पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और सिवान शर्मा। ग्राम नंगला उबन, नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर और इनके परिवार के सभी सदस्य। और गुरुद्वारा नजीबाबाद से अक्रम, इरफान मास्टर और बबलू। कार्यक्रम के इसी गीत के लिए फरमाइश की है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा दतरेंगी से। राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, शायना, महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर, ग्राम झुंझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से। रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद, फिरोज़ा, मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी, मोहल्ला बारादरी, महमूद खां, रामपुर से। मारहरा दरवाज़ा एटा से हमारे श्रोता ने फरमाइश की है, आप हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी ने। हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं आप भी सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और श्रोताओं लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। आवाज आशा भोसले, बप्पी लहरी और साथियों की है, शब्द रचना अनजान की और संगीत बप्पी लहरी का। सुनना चाहा है इस गीत को आप सभी श्रोताओं ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजम बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी, MLB रोड ग्वालियर से, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान, गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, और ये फरमाइश हमें भेजी है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा ने। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, राशिद अंसारी, अफसर अली, नगमा नाज और इनके साथी। मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहान, आरफात अदीब और कादिर चौधरी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित्त

पूजा इसी गीत को सुनना चाहा है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद और इनके सभी साथी। और ये एक और फरमाइश शामिल करते हैं बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके बहुत सारे साथी। तो हमारे इन सभी श्रोताओं के साथ श्रोताओं आप भी सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म नमक हलाल से।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश को अब यही विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है आपकी फरमाइश के गीतों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और आपको आज के गीत जरूर पसंद आए होंगे। और अब आज की मुलाकात बस इतनी ही। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए रेणु कोटनाला को। नमस्कार। आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनपीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
4: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS, Binimay in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said, the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.

0: that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।